सुप्रभात, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 जून सन 2026, प्रातः के 5:58 और 35 सेकंड हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ हो रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क AIR

0: शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथेन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथेन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। तो वंदना कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का आज के इस अंक में स्वागत है। और श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज रविवार का दिन है और ये रविवार का दिन रविदेव को समर्पित होता है। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रविवार रखा गया है। रविदेव यानी सूर्यदेव। रविदेव की बात अगर हम करें तो इनको जगत की आत्मा और ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना गया है। आइए इनकी जय जयकार करें।

श्रोताओं, कान्हा, इनसे हम सब परिचित हैं। कान्हा का जन्म द्वापर युग में मथुरा के कारागार यानी जेल में माता देवकी और पिता वासुदेव के घर हुआ था। और हम सब ये बात भी जानते हैं कि उनके मामा अत्याचारी राजा कंस ने उनके प्राण लेने का प्रयास किया था। कान्हा भगवान विष्णु के आठवें अवतार के रूप में माने जाते हैं और कान्हा शब्द का अर्थ सांवला या कृष्ण का संक्षिप्त और बहुत ही प्यारा नाम है जो उनकी सुंदरता को दर्शाता है।

श्रोताओं, हरि भगवान विष्णु का एक बहुत ही लोकप्रिय नाम है और इसके शब्द की अगर हम बात करें तो ये हरण करने वाला कहा जाता है। हरण यानी कि जो ईश्वर के भक्त हैं उनके पापों को, उनके दुखों को और सांसारिक अज्ञान रूपी अंधकार को जो हर लेता है उसको हरण कहा जाता है। आइए इनके नाम का हम स्मरण करें जो सदा सुखदाई है।

श्रोता हूं। इंसान का जीवन मुख्य रूप से ईश्वर की इबादत करना है, अल्लाह ताला की इबादत करना है, उनकी पूजा पाठ करना है, या ये कहें कि उनका आज्ञाकारी बनकर जीवन जीना है। आइए हम सब भी उनके आज्ञाकारी बने और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें।

श्रोताओं, हिंदू धर्म की अगर बात हम करें तो सूर्य देव को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने वाले एकमात्र देवता माना गया है। इन्हें प्रकाश, ऊर्जा और इस पृथ्वी पर जीवन का मुख्य आधार माना जाता है। वेदों में तो उन्हें जगत की आत्मा और ईश्वर के नेत्र भी कहा गया है। आइए उनकी आरती करें।

इसी के साथ आज का भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान से आज का संगीतमय ये प्रसंग।

माता कैकेयी की कठोरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमाकर उसकी कुबड़

खोर डाली और झूठी पकड़कर उसे घसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी। अग्रज के वनगमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण भी अयोध्या में नहीं रुके।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान से आज का संगीतमय ये प्रसंग। कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर और वाणी जयराम। इस रचना के संगीतकार थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। समय है चिंतन का।
1: एक ज्ञान ऐसा है जो सीखने से मिलता है और एक ज्ञान ऐसा है जो भूलने से मिलता है। एक ज्ञान ऐसा है जो दौड़ने से मिलता है और एक ज्ञान ऐसा भी है जो रुक जाने से मिलता है। एक ज्ञान ऐसा है जिसे पाने के लिए महत यात्रा करनी पड़ती है और एक ज्ञान है जिसे पाने के लिए केवल अपने भीतर झांक कर देखना काफी है। जो ज्ञान श्रम से मिलता है वह बाहर का ज्ञान होगा, आखिरी अर्थों में उसका कोई मूल्य नहीं। अंतिम अर्थों में तो जो अपने भीतर ही पाया है वही बस मूल्यवान होगा, क्योंकि जो ज्ञान हम बाहर से पाते हैं उससे हम स्वयं को नहीं जान सकेंगे और जिस ज्ञान से स्वयं का जानना न हो वह ज्ञान नहीं है, केवल अज्ञान को छिपाने का उपाय है। पांडित्य से प्रभा उभरती है यह धारणा सर्वथा भ्रामक है। पांडित्य से प्रभा उभरती नहीं है, सिर्फ छिप जाती है, ठग जाती है। एक तो ज्ञान है खुले आकाश जैसा, जहाँ एक भी बादल नहीं है, और एक ज्ञान है आकाश बादलों से भरा हो जहाँ सब आच्छादित है। मनुष्य की आत्मा आकाश जैसी है, न कहीं गई न कहीं जाने को कोई जगह है, न कहीं से आई न कहीं जा सकती है, आकाश की तरह है, सदा से थी और सदा होगी, कोई समय का कोई स्थान का सवाल नहीं। तुमने कभी पूछा कि आकाश कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है? आकाश अपनी जगह है, आत्मा भी अपनी जगह है। आत्मा अर्थात भीतर का आकाश, परंतु आकाश में भी बदलियां घिरती हैं। वर्षा के दिन आते हैं, आकाश आच्छादित हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसकी नीलिमा बिल्कुल खो जाती है, उसकी शून्यता का कोई दर्शन नहीं होता, सब तरफ घने बादल घिर जाते हैं। ऐसे ही चेतना के आकाश पर भी बादल घिर जाते हैं, स्मृति के, विचार के, ज्ञान के, जो बाहर से अर्जित किया हो। और जब बादल घिर जाते हैं तो भीतर की नीलिमा का भी कोई पता नहीं चलता, भीतर की शून्यता बिल्कुल खो जाती है, भीतर का विराट शूद्र बदलियों से ढक जाता है। एक तो ज्ञान है बदलियों की भांति, जिसे तुम दूसरों से प्राप्त करोगे, जिसे तुम किसी से सीखोगे, शास्त्र से, समाज से, संस्कार से तुम उसे संग्रहित करोगे। जितना संग्रह बढ़ता जाएगा, जितना पांडित्य घना होगा, उतना ही भीतर का आकाश ढक जाएगा। जितना जानोगे उतना भटकोगे। जानने वाले का अहंकार उस मुक्त आकाश में नहीं ठहर सकता, क्योंकि एक ही पाप है, वह है अपने को भूल जाना। और अपने को भूलने का एक ही ढंग है, दूसरी चीजों को याद करने में लग जाना। फिर जगह ही नहीं बचती अपने को याद करने की, फिर हजार चीजें याद हो जाती हैं, एक चीज भूल जाती है, और हजारों की भीड़ में तुम्हारा कहाँ पता चलता है? बाजार की भीड़ है, आंकड़ों का फैलाव है, जानते तुम बहुत हो लेकिन भीतर तुम अंधेरे बने रहते हो। जिस जानने से स्वयं को न जाना जा सके उसे

पता चलता है, बाजार की भीड़ है, आंकड़ों का फैलाव है, जानते तुम बहुत हो लेकिन भीतर तुम अंधेरे बने रहते हो। जिस जानने से स्वयं को न जाना जा सके उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता, वह ज्ञान भ्रम है, आभास है। इस जगत में या तो तुम

शायरी के हैं कायल सभी यूं मेरी शायरी के। ओ दिखे दर्द औरों का, दिखे दिखे दर्द औरों का जिसको हमेशा, दिखे दर्द औरों का जिसको हमेशा, मोहब्बत तो पलती है दिल में उसी के। मोहब्बत मोहब्बत तो पलती है दिल में उसी के। किसी दिल में छाए, किसी किसी दिल में छाए ना गम का अंधेरा, किसी दिल में छाए ना गम का अंधेरा, सुनाते रहो फिर तो किससे हंसी के। सुनाते रहो फिर तो किससे हंसी के। और शेर सुनिएगा, मिलेगा सुकून, मिलेगा मिलेगा सुकून फिर यकीनन ही दिल को, मिलेगा सुकून फिर यकीनन ही दिल को, भुला दें अगर दोष हम हर किसी के, भुला दें अगर दोष हम हर किसी के। और घरों में वो पहले सी, आज की हकीकत है ये, सुनिएगा, घरों में वो पहले सी रौनक कहाँ है, घरों में वो पहले सी रौनक कहाँ है, नहीं पास अब वक्त है आदमी के, नहीं नहीं पास अब वक्त है आदमी के। और ये गज़ल का आखिरी शेर, मक्ते का शेर, मिलो प्यार से, मिलो मिलो प्यार से और नफ़रत मिटा दो, मिलो प्यार से और नफ़रत मिटा दो, ये रिश्ते तो होते हैं अलका खुशी के, ये रिश्ते तो होते हैं अलका खुशी के। और ये मेरी दूसरी गज़ल है, सुनिएगा, हर एक दिल में, हर एक दिल में, हर एक दिल में मोहब्बत को तुम जगा दोगे, हर एक दिल में मोहब्बत को तुम जगा दोगे, गज़ल हमारी अगरचे यहाँ सुना दोगे। हर एक दिल में मोहब्बत को तुम जगा दोगे, गज़ल हमारी अगरचे यहाँ सुना दोगे। और इसी उम्मीद पे, इसी उम्मीद पे जीती हूँ आज भी हंसकर, इसी उम्मीद पे जीती हूँ आज भी हंसकर, वफा का मेरी यकीनन मुझे सिला दोगे। और मैं वार दूंगी, मैं वार दूंगी, मैं वार दूंगी जमाने की नेमते तुम पर, मैं वार दूंगी जमाने की नेमते तुम पर, चराग खुशियों का दिल में अगर जला दोगे, चराग खुशियों का अगर दिल में जला दोगे। और हयात भर ही, हयात भर, हयात भर ही महकते रहोगे फूलों सा, हयात भर ही महकते रहोगे फूलों सा, किसी गरीब को हक तुम अगर दिला दोगे। गौर करिएगा, हयात भर ही महकते रहोगे फूलों सा, किसी गरीब को हक तुम अगर दिला दोगे। और तमाम उम्र, तमाम उम्र, तमाम उम्र न हम तुमसे दिल लगी करते, तमाम उम्र हम तुमसे दिल लगी करते, तमाम उम्र न हम तुमसे दिल लगी करते, खबर जो होती कि इतनी कड़ी सजा दोगे, खबर जो होती कि इतनी कड़ी सजा दोगे। और हर एक लम्हा, हर एक लम्हा, हर एक लम्हा गुलाबी गुलाबी हो जाए, हर एक लम्हा गुलाबी गुलाबी हो जाए, वफा की राह में गर साथ तुम निभा दोगे। हर एक लम्हा गुलाबी गुलाबी हो जाए, वफा की राह में गर साथ तुम निभा दोगे। और ये मक्ते का शेर, कसम उठा के करो वादा, कसम कसम उठा के करो वादा आज अलका से, कसम उठा के करो वादा आज अलका से, गमों को फिर न कभी मेरा तुम पता दोगे, गमों को फिर न कभी मेरा तुम पता दोगे। एक और गजल सुनिएगा, चाहत की आग जिसके

की आग जिसके दिल में लगी नहीं है, फिर शायरी मुकम्मल उसने कही नहीं है। पूरा न हो सका है कोई

है घेरा उदासियों ने कुछ इस कदर है मुझको, घेरा उदासियों ने कुछ इस कदर है मुझको।

और ये गजल का आखिरी शेर मक्ते का शेर है। जीवन में हर किसी के रहती है कुछ कमी तो, जीवन में हर किसी के रहती है कुछ कमी तो, सारे जहां में हल्का कोई सुखी नहीं है, सारे जहां में हल्का कोई सुखी नहीं है। और एक दूसरी गजल है सुनिएगा। गर्रू परू नहीं तो ख्याल।

रोज मुझसे मुलाकात में रहे। शेर सुनिएगा। जाने लिखा नसीब में मेरे ये क्या खुदा, जाने लिखा नसीब में मेरे ये क्या खुदा।

हम अपने सभी श्रोताओं को बता दें, आज दिन में 10:55 पर कार्यक्रम मन की बात हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समय याद रखिएगा, सवेरे 10:55 से। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 35-तमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयम् हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमन्त्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिन्दी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणम् आकाशवाण्या क्षेत्रीय भाषासु अपि भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सहयोगस्य पूर्णव्याप्तेः समीक्षां करिष्यतः तथा च परस्परस्य क्षेत्रीयान्तराष्ट्रिय विषयेषु मतानाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। अद्य प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रिय सभां सम्बोधयिष्यति। भारतीय प्रवासी सदस्यैः सह संवादमपि विधास्यति। पश्चात् प्रधानमन्त्री रोश कैमन इत्यत्र राष्ट्रिय दिवस समारोहे भागं भजिष्यति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकेन दलेन सह भारतीय नौसेनायाः 2 नौकाभ्यां सह श्रीमोदी उत्सवे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी ह्यः सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां विक्टोरिया नगरं सम्प्राप्तवान्। विमानस्थानके सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः भारतीय समवाय विशेषान् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धेः CETA इत्यस्यान्तर्गतम् उदयोन्मुखावसरान् सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य समकक्षैः सह सम्पर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत्। लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदण्डानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते। एकस्मिन् वीडियो संदेश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली सर्वकारः शीघ्रमेव कठोरं निरीक्षणं बृहत्तरं उत्तरदायित्वं छात्राणां सुरक्षां च सुनिश्चेतुं दृढं विनियामक विधिं प्रावर्तयिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना विदर्भ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीपेषु अपि आगामी दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतु विभागेन ख्यापितं यत् श्वः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तरप्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिं भविष्यति। फीफा विश्वकप क्रीडायां इंग्लैंड देशेन अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एल क्रीडायां पनामा देशं 2-0 इत्यंकैः पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा

0: भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेज के बगैर या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावना बढ़ जाती है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत के किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की योदाई ओकीमोतो को पराजित किया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ले युंग के होगा। फीवा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने पैनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:05 हो रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा में हमारा आज का विषय है डायबिटीज, लक्षण, कारण और उसके बचाव।
2: डायबिटीज या मधुमेह एक हार्मोन से संबंधित बीमारी है जिसमें कि शरीर में इंसुलिन बनने की प्रक्रिया जो होती है वो या तो होती ही नहीं है और या फिर जो होती है ये काफी कम हो जाती है और उस इंसुलिन की कमी के कारण से शरीर में जो शुगर का लेवल होता है वो बढ़ जाता है और ये एक बीमारी का रूप ले लेता है। इस बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं और इन लक्षणों में खास ये है कि अचानक से भूख ज्यादा लगने लगना या प्यास ज्यादा लगने लगना या पेशाब ज्यादा आने लगना या ये तीनों ही मिला के इस तरह के लक्षण नोटिस करना या ध्यान में आना। और इसके अतिरिक्त कुछ लोगों में जैसे कि वजन एकदम से कम होना शुरू हो जाता है शरीर का, तो ये भी एक लक्षण होता है, खास तौर से डायबिटीज टाइप 2 जिसको बोलते हैं उसके उसमें। डायबिटीज को मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज जिसको कि पहले इंसुलिन डिपेंडेंट कहते थे, ये बचपन से ही होती है या बहुत अर्ली एज में पता लग जाता है इसका और इसमें शरीर के अंदर इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनती या बहुत ही नाम मात्र को बनती है, तो इसके लिए बाहर से इंसुलिन हार्मोन देना जरूरी होता है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। जो टाइप 2 डायबिटीज होती है ये आमतौर पर 40 साल या 45 साल की उम्र के बाद में होती है और जिसके लक्षण मैंने आपको जैसे पहले बताए थे वही इसके लक्षण होते हैं।

0: और ये जो है इसमें एक तो ये होता है कि अगर आपको किसी को खानदानी ये बीमारी है, माता को है या पिता को है, तो आदमी को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए कि उसको भी ये होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। और साथ साथ में उसके अंदर अगर ये लक्षण डेवलप हो जाते हैं तो फिर तो उसको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए और समय समय पर अपना टेस्ट भी कराना चाहिए। डायबिटीज जो है इसका इंसिडेंस मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया है आजकल के समय में, पिछले कुछ सालों के अंदर, और हमारे देश के अंदर लगभग 56 मिलियन, है ना, करीब 5.5 करोड़ लोग जो है डायबिटीज से प्रभावित हैं। ये संख्या जो है चीन के बाद दूसरे नंबर पर आती है। चीन में जो है 90 मिलियन या करीब 9 करोड़ लोग जो है डायबिटीज से प्रभावित हैं, चीन के बाद हमारा नंबर आता है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है जिस दर से डायबिटीज की बीमारी हमारे यहाँ बढ़ रही है, तो हो सकता है कि कुछ सालों बाद हमारी जो डायबिटिक पॉपुलेशन है वो दुनिया में सबसे ज्यादा होगी, चीन से भी ज्यादा होगी। मैं ये कहूंगा कि जो एक शहरीकरण हुआ है इस देश के अंदर वो इसके लिए जिम्मेदार है, यानी हमारी जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल, वो अचानक से बदल गई है। पहले हम फिजिकल शारीरिक मेहनत करते थे, वो अब बहुत कम हो गई है। पैदल चलने या साइकिलों की स्थान जो है वो मोटरसाइकिलों और गाड़ियों ने ले लिया है। चलना फिरना, व्यायाम करना, खेलना कूदना, ये सब बहुत ही कम हो गया है। लोग अपने बाकी समय में टीवी के सामने बैठना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के। और दूसरी बात जो ये है वो हमारा खान पान है, तो हमारे खान पान में भी जो एक संतुलित आहार पहले हुआ करता था उसके स्थान पर अब जो फास्ट फूड्स, जिनके अंदर की शुगर की मात्रा, जिनके अंदर की फैट्स की मात्रा काफी ज्यादा होती है, तो वो भी इसका एक कारण है। उनकी वजह से एक हमारे अंदर जो एक मोटापा एक आने की प्रवृत्ति हो गई है, तो ये भी एक कारण है डायबिटीज के इंसिडेंस बढ़ने का। तो संक्षेप में मैं कहूंगा कि जीवन शैली के बदलाव से, जिसमें कि भोजन और व्यायाम दो चीजें शामिल हैं, वो कारण हैं इस बीमारी के बढ़ने का। छोटे बच्चों में जो डायबिटीज हो रही है या पता लग रही है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है। ये किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिसमें कि पेनक्रियास के बीटा सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो इंसुलिन नहीं बनाते हैं, या ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हो सकता है, जिससे कि बीटा सेल्स होते नहीं है या काफी कम होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनती है। एक दूसरा कारण जो होता है, जिसको कि हम MODY कहते हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, मतलब ये टाइप 2 डायबिटीज है लेकिन कम उम्र के लोगों में हो जाती है, बच्चों में भी हो जाती है, और उसका कारण वही है, खान पान के ऊपर ध्यान न देना, अत्यधिक खाना, व्यायाम न करना, जिससे कि बच्चे मोटे हो जाते हैं और उनके अंदर ये डायबिटीज के लक्षण बचपन में ही आ जाते हैं।
1: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, विषय था डायबिटीज, लक्षण, कारण और उसके बचाव। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है खेती की बातें। आज का विषय रहेगा प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता।
2: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती आज के समय में केवल एक वैकल्पिक कृषि पद्धति नहीं है, बल्कि किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों के अत्यधिक उपयोग से कृषि उत्पादन में तो वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ साथ मिट्टी की उर्वरता, जल की गुणवत्ता, जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं। लगातार रासायनिक खेती करने से भूमि की प्राकृतिक शक्ति कमजोर होती गई, मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीव नष्ट होने लगे और फसलों की पोषण गुणवत्ता भी प्रभावित हुई। किसान भाइयों, आज अनेक क्षेत्रों में किसान अधिक मात्रा में उर्वरक और कीटनाशक डालने के बावजूद पहले जैसा उत्पादन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि फसलों का लाभकारी मूल्य हमेशा नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक खेती किसानों के लिए एक सशक्त, टिकाऊ और लाभदायक विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है। प्राकृतिक खेती का मूल सिद्धांत यह है कि खेती को प्रकृति के नियमों के अनुरूप किया जाए, इसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य कृत्रिम रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके स्थान पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों जैसे गोबर, गौमूत्र, जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, वर्मी कंपोस्ट, पत्तियों, फसल अवशेषों और अन्य जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इससे खेती की लागत कम होती है और मिट्टी की गुणवत्ता लगातार सुधरती रहती है। प्राकृतिक खेती में मिट्टी को केवल फसल उगाने का माध्यम नहीं माना जाता, बल्कि उसे एक जीवित तंत्र के रूप में देखा जाता है, जिसमें करोड़ों सूक्ष्म जीव पौधों को पोषण उपलब्ध कराते हैं। जब इन सूक्ष्म जीवों का संरक्षण होता है, तब भूमि की उर्वरता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। किसान भाइयों, आज अधिकांश किसान महंगे रासायनिक उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों पर निर्भर हो गए हैं। हर वर्ष इनकी कीमतों में वृद्धि होने से खेती की लागत बढ़ती जा रही है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह स्थिति और अधिक कठिन हो जाती है। कई बार किसान खेती के लिए ऋण लेते हैं और प्राकृतिक आपदाओं, सूखे, ओलावृष्टि या बाजार में कम कीमत मिलने के कारण ऋण चुकाने में कठिनाई का सामना करते हैं। प्राकृतिक खेती इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है, क्योंकि इसमें अधिकांश आवश्यक सामग्री किसान अपने खेत और घर से ही प्राप्त कर सकते हैं। इससे बाहरी संसाधनों पर निर्भरता कम होती है और खेती अधिक आत्मनिर्भर बनती है। प्राकृतिक खेती का सबसे बड़ा लाभ मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार है। लगातार रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की संरचना कठोर हो जाती है और उसमें जैविक कार्बन की मात्रा घट जाती है। इसके विपरीत प्राकृतिक खेती में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, जिससे मिट्टी भुरभुरी, उपजाऊ और जल धारण करने में सक्षम बनती है। मिट्टी में केंचुए और लाभकारी जीवाणु सक्रिय रहते हैं, जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इससे फसलें स्वस्थ होती हैं और उत्पादन गुणवत्ता में सुधार होता है। जल संरक्षण की दृष्टि से भी प्राकृतिक खेती अत्यंत महत्वपूर्ण है। रासायनिक खेती में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि प्राकृतिक खेती में जैविक पदार्थों की अधिकता के कारण मिट्टी लंबे समय तक नमी बनाए रखती है। इससे सिंचाई की संख्या कम हो जाती है और जल की बचत होती है। वर्तमान समय में जल संकट एक गंभीर समस्या बन चुका है। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। ऐसे में प्राकृतिक खेती जल संरक्षण का प्रभावी माध्यम बन सकती है। प्राकृतिक खेती पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि, जल और वायु प्रदूषित होती है। मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से भी प्राकृतिक खेती अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक खेती से उत्पादित खाद्य पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित, पौष्टिक और स्वादिष्ट माने जाते हैं। तो किसान भाइयों, ये कहा जा सकता है कि प्राकृतिक खेती आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह केवल खेती की एक पद्धति नहीं है, बल्कि प्रकृति, किसान और समाज के बीच संतुलन स्थापित करने का माध्यम है। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की खेती की बातें। अब हमें कल तक के लिए अनुमति दें। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे खेती की बातें। विषय था

एक बार फिर सुन लीजिएगा, मन की बात का प्रसारण होगा सवेरे 10:55 से, तो सुनना ना भूलिएगा आज का ये अंक।

नेशनल साइंस मैगजीन रेडियोस्कोपी आज रात 9:30 पर और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आज रात 10:00। ये दोनों कार्यक्रम भी हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

सुधा शर्मा की कहानी निर्णय प्रसारित की जाएगी आज के विविधा क्रम में शाम 6:45 पर।

कार्यक्रम आपका पत्र मिला प्रसारित किया जाएगा दिन में 12:05 पर। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार।

0: मासिक रेडियो कार्यक्रम की श्रृंखला में 135वें एपिसोड का होगा सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में 2,478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश बन रहा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ स्वीकार। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा, दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा है हिसाब किताब। और गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गौतम बुद्ध नगर में नोएडा प्राधिकरण के नवनिर्मित मुख्य प्रशासनिक भवन समेत 2,478 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में दो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब बन रहा है। ये निवेश, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।
1: सेमीकंडक्टर यानी यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहाँ बने।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत पहले PCB सर्किट आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने एक ऐसा विजन दिया कि प्रधानमंत्री जी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को आज उत्तर प्रदेश में जेवर में ले आए,
3: तो अब सेमीकंडक्टर के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा सेंटर जेवर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। लखनऊ से जेवर तक का सफर 1 घंटा 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में अपने संबोधन में भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग की इकाइयां लगने से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण की कर्टन रेजर सेरेमनी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 96 लाख से अधिक MSME इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिनमें 3 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी

0: यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कल इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान में दी गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने यह भी पुष्टि की कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंची। इस अवसर पर राज्यपाल ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत अयोध्या धाम क्षेत्र में ब्रह्मा कुंड गुरुद्वारे के निकट नवनिर्मित 2 आंगनबाड़ी केंद्रों और स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बच्चों के समुचित शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रारंभिक अवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचकर विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत आज से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। कुशीनगर में कल दोपहर एक तेज रफ्तार कार और बाइक में हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। कसिया क्षेत्राधिकारी ने बताया कि यह हादसा अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के हाटा पिपराइच मार्ग पर सोनबरसा पट्टन के पास हुई। गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जारी चेतावनी के अनुसार प्रदेश के जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, उन्नाव, लखनऊ, रामपुर, बांदा, संभल, मुरादाबाद, बुलंदशहर और अमरोहा समेत आसपास के जनपदों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। मासिक रेडियो कार्यक्रम की श्रृंखला में 135वें एपिसोड का होगा सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश बन रहा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ स्वीकार। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा, दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा है हिसाब किताब। और गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

कार्यक्रम सूरज के साथ साथ सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त मनोज वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। रविवार यानी छुट्टी के दिन इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इसके अलावा हम आपके सुख समृद्ध और स्वस्थ रहने की ईश्वर से शुभकामना भी करते हैं और हमेशा ही करते हैं। श्रोताओं, बात स्वस्थ रहने की है तो स्वस्थ रहना हम सबका दायित्व है, जिम्मेदारी है, इसलिए इसके प्रति हम सबको जागरूक रहना चाहिए। वैसे हमारे सभी श्रोता मित्र बहुत जागरूक हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि वे आकाशवाणी नजीबाबाद वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं और इस समय भी हमें अपने रेडियो सेट या फोन ऐप के जरिए सुन रहे हैं। श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जून का महीना खत्म होने जा रहा है और कहा यह भी जाता है कि ये महीना मानसून लेकर आता है। ये बात और है कि मानसून की वजह से बारिश है या नहीं, क्योंकि कई बार मानसून आता है तो दाएं बाएं हो जाता है और बारिश दूर दूर तक गायब हो जाती है। अलर्ट आज भी है कि भाई उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। कहीं कहीं बारिश होने की वजह से श्रोताओं जब होती है तो तापमान में कमी तो आती ही है और बारिश की बूंदें हम सबको इस तपती गर्मी में अच्छी तो लगती हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस बदलते मौसम में अगर हम सावधानी नहीं लेंगे तो हम बीमार भी हो सकते हैं और ये बीमारी नज़ला, जुकाम, सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया, टाइफॉइड आदि हो सकते हैं। क्योंकि इस मौसम में तापमान का नीचे आना नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार आदि को दावत तो देता ही है। बारिश के पानी की वजह से नालियों में पानी इकट्ठा होने की वजह से मच्छर मक्खी भी पनप जाते हैं और मच्छर के काटने से मलेरिया जैसी बीमारी भी अपने पैर पसार सकती है। खुले पानी पर मक्खी मच्छर बैठने से वे दूषित कर सकते हैं, इसलिए पीने के पानी को ढककर रखना चाहिए, उबालकर पीना चाहिए। श्रोताओं, इस बदलते मौसम में छोटी सी लापरवाही भी स्वास्थ्य समस्याओं को का कारण बन सकती है, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए इस बदलते मौसम में सावधानी लेना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए उन सावधानियों का जिक्र करते हैं जो हम सबको इस मौसम में लेनी है। तो सबसे पहले अपने आसपास पानी जमा ना होने दें ताकि मक्खी मच्छर पैदा ना हो सकें, क्योंकि इनकी वजह से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए मच्छरदानी, क्रीम और पूरी बांह के ढीले ढाले कपड़े पहनें। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मौसमी फल, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, साथ ही खट्टे फल और ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, अखरोट आदि का सेवन भी सीमित मात्रा में करना चाहिए। अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो तुरंत कपड़े बदलें, क्योंकि गीले कपड़ों से त्वचा संबंधी समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। अपने हाथों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, यानी खाना खाने से पहले या घर पर वापस लौटने के बाद साबुन पानी से अपने हाथों को जरूर धोएं, इससे संक्रमण फैलने का खतरा कम होता है। मानसून इस बदलते मौसम में कई बार जल स्रोत दूषित हो जाते हैं, यानी कि मानसून की वजह से, इसलिए उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी पीना चाहिए। यह बात हम पहले भी कह चुके, एक बार फिर याद दिला रहे हैं। इससे पेट की बीमारी जैसे डायरिया आदि जैसी बीमारियों का खतरा कम से कम होता है। और सबसे मुख्य बात यह है कि बाहर के कटे पटे फल, गली मोहल्लों में बिकने वाले खाने से पूरी तरह परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनसे संक्रमण का खतरा होता है। इसलिए घर का बना साफ, ताज़ा, पौष्टिक खाना ही लेना चाहिए और इस मौसम का आनंद लेना चाहिए। फिलहाल ये गीत आपकी सेवा में।

0: भाई बहुत पहले से हम एक बात, वाक्य तो बहुत छोटा सा है वो, मगर विस्तार बहुत बड़ा हो सकता है, सुनते आ रहे हैं कि भाई बदलता मौसम और बदलता व्यक्ति नुकसान की तरफ चले जाते हैं। यानी कुल मिला के मैं इस बात को अगर ऐसे कह दूं कि बदलता मौसम और बदलता व्यक्ति नुकसान दे देते हैं, तो ज़रा सा आप जागरूक भी रहें, सतर्क भी रहें, यही हमारा काम है। और इस गीत में भी यही था, है ना, इसका जो लब्बो लुबाब निकल के आया ना, तो वो यही रहा है। वो उनको कंफर्म करना चाह रहे हैं, पक्का करना चाह रहे हैं कि भाई नुकसान तो नहीं दोगे आप, बदल तो नहीं जाओगे, है ना। फिलहाल ये संदेश, उसके बाद फिर आपसे जुड़ेंगे।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
4: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
3: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
4: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
3: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हैं मनोज वर्मा। एक बार फिर हम अपने सभी सुधीर श्रोताओं का स्वागत करते हैं इस अंक में। इससे पहले कि आगे की बात आपसे करें, हम याद दिलाना है कुछ हमें आपको, है ना, एक बहुत ही अहम कार्यक्रम रिले किया जाना है हमारे केंद्र से। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की जनता के को संबोधन का 135वां संस्करण यानी मन की बात आज सवेरे 10:55 से रिले किया जाएगा हमारे आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से। तो सुनना ना भूलिएगा आज का ये अंक। एक बार फिर मैं बता दूं आपको, सवेरे 10:55 से मन की बात। आगे बढ़ते हैं। तो बीते वर्षों के जो 28 जून रही है, आज भी 28 जून ही है लेकिन ये 2026 की है ना, तो क्या क्या घटनाएं हुई हैं जो इतिहास के पन्ने में दर्ज रही हैं और जिनको हम आप तक भेज सकते हैं। तो 28 जून सन 2008 में लंदन में आयोजित एक समारोह में उपन्यासकार नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कुइयां जान के लिए 14वां अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान प्रदान किया गया था। इसके अलावा 28 जून सन 1932 में इंग्लैंड ने लॉर्ड्स के मैदान में 3 दिन के, जी हां एक बार फिर सुन लीजिएगा, 3 दिन के टेस्ट मैच में भारत को हराकर एक टेस्ट की सीरीज जीती थी। इस मैच में दोनों टीमों में कई नए खिलाड़ियों ने भाग लिया था। हम आपको यह भी बता दें कि इंग्लैंड ने भारत को यह मैच 158 रनों से हराया था। भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा का जन्म 28 जून सन 1976 में हुआ। उन्होंने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण सहित कुल 8 पदक और राष्ट्रमंडल खेलों में 9 स्वर्ण पदक सहित कुल 15 पदक अपने नाम किए। अभी इसी महीने की 12 तारीख को 49 साल की उम्र में वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज उनकी जयंती पर उन्हें सादर नमन और श्रद्धांजलि। 28 जून सन 2012 में भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार अमर गोस्वामी का निधन हुआ। आप मनोरमा और गंगा जैसी पत्रिकाओं से लंबे समय तक जुड़े रहे। इसके अलावा आप साहित्यिक संस्था वैचारिकी के भी संपादक थे। इसके अलावा श्रोताओं, 28 जून सन 1972 को भारतीय सांख्यिकी के जनक पीसी महल नोबिस का भी निधन हुआ। आपने सांख्यिकी माप महल नोबिस दूरी का सिद्धांत तो विकसित किया था, उन्होंने ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI की स्थापना सन 1931 में कोलकाता में की थी। तो ये थी कुछ खास घटनाएं जो बीते वर्षों की 28 जून को हुई थी। और श्रोताओं, आजकल बहुत गर्मी महसूस कर रहे हैं हम, है ना। ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि साहब कहीं ना कहीं से बादल आए और बारिश की बूंदें वो जमीन पे डालें, है ना, तपती धरती को सुकून मिले, है ना, पेड़ पत्तों को पक्षियों में जान महसूस हो जाए, है ना। गर्मी बहुत है कि बस हर व्यक्ति, जीव जंतु, मनुष्य सभी परेशान।

0: भाई वाकई में बहुत गर्मी महसूस कर रहे हैं इस वक्त, और ये बात जो ये इला अरुण की आवाज़ है ना, वो बोल रही थी। इला अरुण बहुत ही गजब की एक भारतीय अभिनेत्री और राजस्थानी लोक पॉप गायिका है ना। और ख़ास बात क्या है कि इनकी जो भारी आवाज़ है और दमदार आवाज़ है, यानी कुल मिला के इसको कहें दानेदार आवाज़ है ना, दानेदार आवाज़ होती है एक, तो उसका मिश्रण इनके पास है और गजब की आवाज़ है और बहुत आकर्षण है आवाज के अंदर। और कुमार सानू साहब को तो हम सब जानते ही हैं, भले ही इला अरुण ने गीत कुछ कम गाए हैं लेकिन बहुत ही गजब के गीत इन्होंने गाए हैं। फिलहाल ये संदेश, उसके बाद फिर जुड़ेंगे।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें,
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashvaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: संदेश आपने सुन लिया, फिर आपसे जुड़ गए हम। तो आजकल हम सब महसूस कर रहे हैं, या ये कहें कि अधिकतर परिवारों में अगर वे एक साथ रह रहे हैं तो सभी सदस्यों के पास अपनी अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर्स हैं, और अगर परिवार धनी है तो उनके पास कार होना भी बहुत स्वाभाविक बात है। बड़े शहरों में तो व्यक्ति बिना स्कूटर मोटरसाइकिल के एक छोटी जगह से दूसरी जगह जाना ही पसंद नहीं करता। यही हाल आजकल हम सबके छोटे शहर है ना, उनमें भी देख रहे हैं। कुल मिला के कहा जाए तो शहर बड़ा हो या छोटा, सड़कों पर छोटे वाहन और बड़े वाहनों की भरमार है। नौकरी पेशा व्यक्ति, कामकाज करने वाले व्यक्ति अपने अपने वाहनों से अपने गंतव्यों तक पहुंचते हैं। इन निजी परिवहन के साधनों के बढ़ने की वजह से सड़कों पर भीड़ हो जाती है, सुबह और शाम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस पर इन वाहनों से निकलने वाले जहरीले धुएं की वजह से सांस संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ व्यक्तियों की सेवा के लिए सार्वजनिक परिवहन भी उपलब्ध होते हैं श्रोताओं, जैसे बस, ट्राम, रेलगाड़ी, मेट्रो आदि। ये सब एक साथ अनेक व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। शर्त यह है कि आप घर से समय पर निकलें। जी हाँ, बिल्कुल, एक बार फिर हम जोर दे रहे हैं अपने शब्दों पे कि शर्त यही रहेगी कि आप घर से समय पर निकलें। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने से पैसा भी खर्च कम होता है। इसके अलावा सड़क के तनाव, भीड़ और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को एक सीमा तक कम किया जा सकता है, जो हम सबके हित में होता है। श्रोताओं, सार्वजनिक परिवहन लोगों के आवागमन को सरल बनाता है, ईंधन की बचत, यातायात में कमी और पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाता है। आजकल सरकार द्वारा भी ईंधन की बचत करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने पर बल दिया जा रहा है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली यात्रियों के लिए सुविधाजनक, भरोसेमंद और प्रभावी है, इसलिए हम सबको वर्तमान समय में निजी परिवहन के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए और अनेक लाभ उठाने चाहिए। समय है आज के अखबारों की कुछ अहम सुर्खियों का। तो हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में आज से नवजात से 5 साल के बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाने का अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH के प्रो लीग के लंदन चरण के दूसरे मैच में पिछड़ने के बाद पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। बात की जाए अमर उजाला में प्रकाशित होने वाली इन सुर्खियों की, तो गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संबद्ध बिजनौर, अमरोहा समेत मंडल के सभी महाविद्यालयों में परास्नातक यानी PG पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया

एक सुर्खी और, प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग आने वाली 1 जुलाई से 31 जुलाई तक स्कूल बसों की विशेष जांच अभियान चलाएगा। ये अहम सुर्खी थी दैनिक जागरण से। एक गीत और है हमारे पास अभी आपके लिए, इस गीत को भी हम आपको सुनवाएंगे। और ये गीत इस बात का संदेश देता है कि हम सब मिलकर इस भरी गर्मी में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारे क्षेत्र में या जहाँ जहाँ गर्मी है, भीषण गर्मी से लोग बिलबिला रहे हैं, परेशान हैं, है ना, पशु पक्षी जानवर सभी परेशान हैं, अपनी वो रहम फरमा दे बारिश की बूंदों से, ताकि इस भारी मुश्किल से सभी का सामना हो सके वो, और इससे पार हो सके। आइए हम सब मिलके ईश्वर से ये दुआ करते हैं।

और इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ संपन्न करने की मुझे यानी मनोज वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, अपना खास ख्याल रखें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और

0: अमेजोन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
1: Today we have a new national health policy.
2: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
1: 62 करोड़ इंडिविजुअल।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए है। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ाने भरी गई। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
5: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। हमारे यहाँ 2 कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50-55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के 7 देशों तक गार्बेज कैफे

0: जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंची है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गई। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो GM मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा जुपोन सर्कल बिजनेस इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर लगातार दूसरे दिन ईरान में मुतअद्दिद ठिकानों पर हमले किए हैं। वेनेजुएला में जलजले से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1430 हो गई है। बचाव टीमें अब भी जिंदा बच जाने वाले अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। और भारत के किदाम्बी श्रीकांत कैलिफोर्निया में जारी अमरीकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी से बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा शराकतदारी के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे और बाहमी मुफादात के इलाकाई व बैनुल-अक़वामी मामलात पर अपने ख्यालात का तबादला करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और भारतीय बरादरी के अरकान से बातचीत करेंगे। बाद में वज़ीर-ए-आज़म मोदी रोश कैमन में कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजारत ने बताया कि भारतीय दिफाई अफवाज का एक दस्ता भारतीय बहरिया के दो जहाजों के साथ इन तकरीबात में हिस्सा लेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के 3 रोजा सरकारी दौरे पर हैं। इस दौरान वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली में मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत करेंगे। यह दौरा भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और देरपा दोस्ती को तकवीत देगा और तमाम शोबों में दोनों मुल्कों के दोतरफा ताल्लुकात के मुश्तरका अज़्म को फरोग देगा। नई दिल्ली से आकाशवाणी के लिए अक्षित विद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बोटेनिकल गार्डन्स का दौरा किया और शजरकारी की एक तकरीब में हिस्सा लिया। उन्होंने बोटेनिकल गार्डन में जायंट टोर्टाइज इनक्लोजर का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म सेशल्स के अपने 3 रोजा दौरे पर कल विक्टोरिया पहुंचे। एयरपोर्ट पर सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो कैलाश मानसरोवर यात्रा उस वक्त तक शुरू न करें जब तक उन्हें पूरे सफर के लिए तमाम जरूरी दस्तावेजात हासिल न हो जाएं। वजारत ने यह हिदायत निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हुए नेपाल में फंसे हुए भारतीय यात्रियों की मदद की दरखास्तें मौसूल होने के बाद जारी की हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: वजारत खारजा ने कहा है कि कुछ भारतीय शहरी निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हो गए, लेकिन वो चीन में दाखिल होने के लिए लाजमी वीजा और एंट्री परमिट हासिल किए बगैर नेपाल पहुंच गए। इसके नतीजे में कई यात्री नेपाल में फंस गए और उन्होंने वजारत खारजा से मदद तलब की। वजारत ने यात्रियों को हिदायत दी है कि वो तमाम सफरी दस्तावेजात और इजाजतनामों की तस्दीक के बगैर सफर शुरू ना करें, क्योंकि जरूरी इजाजतनामे हासिल होने से पहले रवानगी सफर के दौरान मुश्किलात का बायस बन सकती है। वजारत ने यह भी कहा कि यात्री रवानगी से कबल इस बात की जरूर तस्दीक कर लें कि उनका टूर ऑपरेटर बाकायदा रजिस्टर्ड और मजाज है। वजारत खारजा की इस हिदायत का मकसद यात्रियों के लिए महफूज, आसान और बिला रुकावट रूहानी सफर को यकीनी बनाना और उन्हें गैर जरूरी परेशानी से महफूज रखना है। दिल्ली से रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहन अम्मार।
0: उमूर दाखला और इमदादी बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज शाम गांधीनगर में PM फैमिली केयर ट्रेकर आजमाइशी प्रोजेक्ट का बाजाब्ता इफ्तिताह करेंगे। इस नए इकदाम का मकसद खानदानों के लिए सेहत की निगरानी के निजाम को बेहतर बनाना, नीज सेहत और फलाही खिदमत तक उनकी रसाई को मजीद आसान बनाना है। जनाब अमित शाह अहमदाबाद में बूथ सुदूर और शक्ति केंद्रों के इंचार्ज के लिए मुनक्कदा खसूसी चिंतन शिविर में भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर वो जमीनी सतह पर तंजीमी हिकमत अमली का जायजा लेंगे और मकामी पार्टी वर्करों से भी बातचीत करेंगे। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत ने गुज़श्ता 12 वर्षों में सेहत की देखभाल में नुमाया पेशरफ्त की है और वो हर शहरी के लिए काबिल रसाई, किफायती और मेयारी सेहत की देखभाल को यकीनी बनाने और आलमी सेहत की कवरेज के वसीतर हदफ की सिमत काम कर रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर

आनंद बख्शी के इन शब्दों को जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दुख था कि भाई क्षोभ था, क्रोध था कि भाई कहीं ना कहीं अगर कोई आ जाए तो मैं शहर ही छोड़ के चला जाऊं, भाई कहीं ना कहीं हमें इस तरीके की बातें एक दूसरे से नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी आपका रिलेशन है, संबंध है ना। और बहुत समझदार हैं हमारे तो श्रोता, हम समझाते भी यही हैं कि भाई कोशिश ये करें कि हम सब आपसी सद्भाव से रहें, है ना। कुछ ऐसी बात ना कहें, कोई ऐसा काम ना करें कि भाई दूसरे के दिल पे ठेस लगे। और ये शब्द थे आनंद बख्शी साहब के, जिन्होंने इस शब्दों को अंजाम दिया, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका धुन तैयार की थी, किशोर कुमार की आवाज़ हमने पहले बता दी थी। फिल्म का नाम रहा है नजराना। ये संदेश, उसके बाद आगे।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: और श्रोताओं, ये प्रेम ही होता है जो हम सबको आपस में बांधे रखता है मजबूत डोर के जरिए। और कहीं प्रेम अगर में प्लस माइनस होता है, दाएं बाएं होता है प्रेम, समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं हम, है ना। प्रेम में कहीं कमी आती है या फिर वो दोबारा प्रेम होता है, तो कहीं ना कहीं देखिए अंदरूनी तौर पे हमें ये महसूस होता है कि साहब एक धागा था प्रेम का, टूटा और गांठ उसमें पड़ गई, है ना। काम तो कर रहा है, वो धागा जुड़ तो गया, मगर एक देखेंगे ना आप तो उसमें गांठ नजर आएगी आपको, है ना। वही चीज अगर मैं इन शब्दों में कहूं कि एक दीवार है और उस दीवार पे हमने एक कील लगा दी और उस कील को हमने निकाल दिया, तो जो कील होती है ना, कील तो निकल गई मगर अपना निशान छोड़ जाती है ना। तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। और जो हमारी बॉन्डिंग है प्रेम की किसी भी रिलेशन में, वो स्ट्रांग रहनी चाहिए। एक ऐसा ही गीत है हमारे पास में, बड़ा खूबसूरत गीत है ये, तो जरा इसको सुनिएगा और इसके बारे में हम बताएंगे कौन सी फिल्म से हमने लिया था आवाज। आप समझ ही जाएंगे, गीत सुना हुआ है ये आपका भी और हम तो सुनवाते ही रहते हैं, हमें भी बड़ा पसंद है और उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आएगा।

बहुत ही खूबसूरत लहरा था इस गीत के बाद, अगर आपने उसको समझा हो। और ये संगीत तैयार किया था इस गीत का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, वर्मा मलिक साहब ने इस गीत को लिखा था। लता मंगेशकर के साथ महेंद्र कपूर की आवाज़ थी, और फिल्म का नाम तो आप जानते ही हैं, हमारे सभी पुराने श्रोता भी जानते हैं इसके बारे में, नागिन। एक गीत सुनवा तो सुनवाएंगे ही आपको, हम संदेश सुनवा देते हैं।

श्रोताओं, आजकल हम सब देख ही रहे हैं कि रहने के लिए मकान की ज़रूरत होती है, और मकान भी बहुत ऊंचे-ऊंचे बनाए जा रहे हैं आजकल, और खिड़की दीवारें तो सभी में होती हैं और दरवाजे भी होते हैं, है ना, जिनसे हम आवागमन करते हैं, और खिड़कियां भी होती हैं। लेकिन आजकल का ये चलन बड़ा है कि भाई कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र जब एक मकान हम तैयार करते हैं तो जो बाहर का जो वातावरण है उससे थोड़ा सा हम महरूम रह जाते हैं। खिड़कियां भी बिल्कुल बंद रहती हैं, है ना, और दीवार तो बिल्कुल कुछ बोलती ही नहीं, है ना, दीवार दीवार का काम करती हैं, दरवाजे भी अक्सर बंद ही रहते हैं। तो कई बार भाई घुटन महसूस होने लगती उन बड़े बड़े घरों में, है ना, और जो बाहर का जो एक एटमॉस्फेयर होता है, है ना, वो दिखाई नहीं देता है ना। खिड़कियाँ जब बंद रहेंगी, आप काम में रहेंगे, अंदर एसी में रहेंगे हम, तो क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ नहीं पता चलता है क्या हो रहा है ना। तो किसी शायर ने कहा है, मुझे याद आ रहा है ये, कि अपने घर के दरो दीवार को ऊंचा ना करो, इतना गहरा मेरी आवाज़ से पर्दा ना करो। बड़ा उम्दा शेर अपने आप में है ये, और शायर साहब शायद यही कहना चाह रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से दरो दीवार को आप इतना ऊंचा ना करो कि जो मेरी आवाज़ भी आप तक ना पहुंच सके, मैं आपको ना देख सकूं। ऐसे ही ये खिड़की है कि साहब बंद रहती है तो भाई कहीं ना कहीं उस खिड़की के जो दीवाने हैं आप समझ रहे हैं हम क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। तो उनको कैसा लगता हो, जरा इस गीत में मोहम्मद रफ़ी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं।

तो भाई कहाँ कहाँ खिड़कियाँ बंद रहती हैं ये तो हम नहीं कह सकते भाई, लेकिन अगर हमारी जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है तो भाई थोड़ा सा बाहर की हवा भी आप अंदर आने दें, उन खिड़कियों को खोलें, और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी भी होती हैं खिड़कियों से, है ना। चलिए खैर, एक गीत और है बस हमारे पास में, है ना, आपको सुनवाएंगे उस गीत को भी, लेकिन एक बार फिर याद दिलाते हैं आपको भाई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की जनता को संबोधन का 135वां संस्करण, जी हाँ 135वां मासिक संस्करण है ये आज, जो रिले किया जाएगा हमारे आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से। और समय क्या रहेगा, वैसे तो हमारे सभी श्रोता जानते हैं, सवेरे 10:55 से, तो इसको आप सुनना ना भूलें। इसके अलावा 12:30 पर फिल्मी संडे क्रम में आज की हमारी फिल्म रहेगी 1992 में बनी दीवाना, जी हाँ बड़ी चर्चित फिल्म थी उस दौर में, तो इसके बारे में आप जानकारी लेंगे दिन में 12:30 पर। और जैसा कि हमने कहा था कि भाई एक गीत हमारे पास और है आपके लिए, तो उस गीत को भी आपको सुनवा देते हैं।

लता मंगेशकर और मुकेश के गाए जंगली फिल्म के इस गीत के साथ आज का गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। नमस्कार, आप सुन रहे थे गोल्डन हिट्स और इस समय सवेरे के 9:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में सामायिक चर्चा हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे उत्तर प्रदेश में मानसून के पिछड़ने के कारणों और बारिश के पूर्वानुमान पर लखनऊ मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
2: उत्तर प्रदेश समेत पूरा भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। लोगों को बेसब्री से मॉनसून का इंतजार है, लेकिन मॉनसून अपने अनुमानित आगमन से थोड़ा पीछे चल रहा है। क्या है मॉनसून के पिछड़ने के कारण और कब से प्रदेश में शुरू होगा बारिश का दौर, इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह।
3: अतुल जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी नमस्कार।
3: सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और पूरा उत्तर भारत इस वक्त तेज गर्मी से जूझ रहा है, बहुत ही ज्यादा तापमान और लू देखने को मिल रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, ऐसे में सभी को इंतजार था, ये उम्मीद थी कि मॉनसून के आने का समय हो गया है और थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, कहीं कोई ज्यादा बारिश या इस तरह का तापमान में कोई कमी। तो ये जो मॉनसून है, अभी इसकी क्या स्थिति है और क्या लगता है आपको कि कितने दिनों में ये उत्तर प्रदेश में आ सकता है?
4: देखिए, वर्तमान स्थिति जो है इस समय उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ है उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवाती प्रसंचरण के रूप में, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसमी तंत्र नहीं है। यदि छिटपुट बारिश कुछ एक जगहों पर हो रही है, परंतु कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही है, जिसके कारण की पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हीट वेव या लू की स्थितियां बनी हुई है। और जहां तक मानसून की है, जो वर्षा है वो 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का एक नया दौर आरंभ होगा और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर जो है वो मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसी समय जो है मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। तो अभी मोटे तौर पर अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जून के आखिरी दिनों में जो है वो प्रदेश में मानसून आने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं, वो 28 जून के बाद किसी भी समय प्रवेश कर सकता है।
3: सर, मानसून में देरी की वजह क्या मानते हैं आप लोग? जो आप लोगों ने अभी तक रीड करा है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्थितियां नहीं बन पा रही थी, इसका कारण क्या है?
4: देखिए, मानसून की जो

0: परिस्थिति है वो कई सारे कारकों पर निर्भर करती है। कुछ क्षेत्रीय कारक होते हैं और कुछ सेमी परमानेंट फीचर होते हैं। तो जो सेमी परमानेंट फीचर थे वो सारे के सारे जो हैं इस समय अनुकूल नहीं थे, चाहे वो जो भी हो मैस्करेन हाई दक्षिणी हिंद महासागर में होता है वो फेवरेबल पोजिशन में नहीं था। इसके अतिरिक्त हीट लोक जो पाकिस्तान के जैकोबाबाद के आसपास बनता है उसका भी पोटेंशियल कम था, मतलब वो कमजोर था, जिसके कारण की जो मौसमी द्रोणी है वो भी बहुत ही कमजोर थी। इसके अतिरिक्त वेस्ट कोस्ट पर एक ऑफशोर ट्रफ बनती है और वहां पे भी जो है दाब प्रवणता न होने के कारण वो भी अभी तक प्रदर्शित नहीं हो रही थी। तिब्बतन एंटीसाइक्लोन या तिब्बतियन चक्रवात वो भी अपनी सामान्य स्थिति से खिसका हुआ था। तो ये सारी ही परिस्थितियां थी जिसके कारण की जो मानसून का फ्लो था वो 10 दिनों के आसपास तक स्टेग्नेंट रहा। लेकिन अभी फिर से एक सिस्टम बना बंगाल की खाड़ी में और उसकी वजह से ये पिछले 48 घंटों के दौरान दोनों ही शाखाएं आगे बढ़ी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की, और आने वाले दिनों में एक और सिस्टम बनने की संभावना है जिसके कारण की इसके फिर से आगे बढ़ने और उत्तर प्रदेश में पहुंचने की संभावना बन रही है।
1: अतुल जी, एक ये इस तरह की भी खबर है कि इस बार कम वर्षा होगी हर बार की तुलना में और इस तरह के संकेत लगातार प्राप्त हो रहे हैं और इसको लेकर सरकार तैयारी भी कर रही है कि कहीं सूखा पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। तो क्या इस तरह की कोई बात है कि क्या इस बार नॉर्मल से कम बारिश होगी?
0: जी बिल्कुल, देखिए जो दीर्घावधि पूर्वानुमान है मानसून के लिए दो चरण में जारी किए जाते हैं। प्रथम चरण में जो दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी किया गया था उसमें ये बताया गया था कि इस साल कुल समेकित वर्षा अखिल भारतीय समेकित वर्षा सामान्य की तुलना में 92% होने की संभावना है और उसको फिर मई के आखिर में 29 मई को फिर से अपडेट किया गया और ये आंकड़ा जो है 92 से 90% पर आ गया। लेकिन ये अखिल भारतीय वर्षा है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो ज्यादातर मॉडल्स जो है वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि उत्तर देश में लगभग सभी स्थानों पर या ज्यादातर स्थानों पर मानसूनी वर्षा जो जून से सितंबर के दौरान होती है वो सामान्य की तुलना में कम रहेगी और इसके लिए पहले ही संबंधित विभागों और स्टेक होल्डर्स को सूचित किया जा चुका है जिससे कि वो अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रेटेजी इस हिसाब से निर्धारित कर सकें और उसके अनुसार योजनाओं पर अमल किया जा सके। तो कुल मिला के इस साल जो है वो बारिश सामान्य की तुलना में कम होने की संभावना है। हर साल की तुलना में कम ऐसा हम नहीं कह सकते, पहले भी सामान्य से कम बारिश हुई है कई बार तो, लेकिन ये है कि जो दीर्घावधि औसत है उसकी तुलना में कम होने की संभावना।
1: सर एलिनो का भी क्या इसमें कोई योगदान है?
0: एलिनो का भी योगदान है। एलिनो एक्चुअली एक रिमोट फोर्सिंग है और एक मेजर ड्राइवर है इंडियन समर मानसून का। और एलिनो का जब भी वार्म फेज होता है, वार्म फेज का मतलब जब भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में एलिनो 3.4 रीजन में जो है वो समुद्री सतह का तापमान जो है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक सामान्य की तुलना में बढ़ जाता है तो उस स्थिति को हम वार्म फेज इंसो या एलिनो बोलते हैं। और इसका सीधा तौर पर प्रभाव प्रशांत महासागर का नहीं होता है लेकिन ये दो तरीके से प्रभावित करता है। पहला, इसका जो एलिनो सदर्न ऑसिलेशन का जो एटमॉस्फेरिक ब्रांच होती है सदर्न ऑसिलेशन, उसके थ्रू भारत के ऊपर एक एनोमलस एंटीसाइक्लोन बनता है और जिसके कारण की जो कन्वेक्टिव एक्टिविटीज होती हैं वो उसको सप्रेस करता है और यहाँ पे गर्म हवाओं का अधोगमन कराता है, मौसम जो है वो बिगड़ने से रोकता है। और दूसरी चीज जो होती है वो ये जो है मानसून फ्लो को कमजोर करता है, तो उस मानसूनी हवाओं के कमजोर पड़ने से भी जो वर्षा की तीव्रता और उसका कुल परिमाण है उस पर प्रतिकूल तौर पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन एलिनो सिर्फ अकेला एक ड्राइवर नहीं है, कई और फैक्टर होते हैं एलिनो के साथ जो कि इसको प्रभावित करते हैं। ये भी एक कारण है के कारण की सामान्य से कम वर्षा होने की प्रायिकता जो है वो सर्वाधिक प्रायिकता व्यक्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ एक क्षेत्रीय कारक भी होते हैं जो कि समय समय पर इन चीजों को निर्धारित करते हैं और उसके आधार पर आगे का हम निर्णय ले।
1: सर अगर हीट वेव पैटर्न की बात करें तो हमने देखा कि लगातार यूपी के कई ऐसे जिले हैं जो देश के सबसे गर्म जिलों में शामिल रहे, तो क्या ये गर्मी और हीट वेव पिछले सालों के मुकाबले बढ़ी है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है या एक सामान्य तौर पर चल रहा है? अभी
0: तराई इलाकों को छोड़ दें तो बाकी सारी जगहों पर फ्रीक्वेंसी और अवधि उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बढ़ी है, लेकिन जो प्रदेश के दक्षिणी जिले सर्वाधिक गर्म रहे। इसके पीछे एक भौगोलिक और वैज्ञानिक कारण भी है, वो ये है कि इस समय मतलब समर सॉल्स्टिस होती है 21-22 जून में, उस समय सूर्य जो है वो सीधा कर्क रेखा के ऊपर होता है, और कर्क रेखा जो है तो वो प्रदेश के दक्षिणी भाग के पास से होकर गुजरती है, तो मतलब सूरज जो है वो प्रदेश के दक्षिणी भाग के सीधा ऊपर होता है, इस वजह से सर्वाधिक गर्मी इस समय वहां पर वो देता है। और इसके अतिरिक्त वहां का जो भूभौतिकी स्थिति है उसके कारण भी वहां पर हीट जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होती है और उसका हीटिंग पोटेंशियल बढ़ता है। तो ये कई सारे कारक हैं जो कि उसको वैज्ञानिक तौर पर परिभाषित करते हैं कि प्रदेश के दक्षिणी भागों में तापमान जो है वो बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा होता
1: है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी पहले के मुकाबले बड़ी है, इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप लोग?
0: देखिए, जिस भी चीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ना या घटना ये तो एक सतत प्रक्रिया है, मतलब जिसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं, और ये अभी बढ़ी या घटी है ऐसा नहीं है। जैसे हमने बताया तराई इलाकों में घटी है, तो कुल मिला के जो जलवायु परिवर्तन ये एक्सेलरेट हो गया है, और इस कारण जो उसके प्रभाव पहले काफी दिनों के बाद या एक जनरेशन के बाद दिखाई देते थे, अब वो जल्दी सेम जनरेशन में उसी पीढ़ी में दिखाई देने लगे हैं और वो लोगों को महसूस भी हो रहा है।
1: जिस तरह आप कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन है उसके कारण ये सारी चीजें एक्सिलरेट हो गई हैं, तो क्या आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि एक ये न्यू नॉर्मल हो गया है कि जो सीजन है हम उसमें एक्सट्रीम वर्षा देखते हैं या एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम सर्दी, या फिर सर्दियों का मौसम बीत जाता है सर्दी नहीं पड़ती, या एक न्यू नॉर्मल के तौर पर आगे बना रहे?
0: बिल्कुल, देखिए इस समय की जो वर्तमान स्थिति है 21वीं सदी में अगर हम देखें तो ज्यादातर समय ये स्थितियां रही हैं कि जब भी तापमान जो है, चाहे वो वर्षा हो चाहे तापमान हो, जो वेदर एक्सट्रीम्स हैं वो बढ़ गई हैं और जो लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज होती थी वो घट गई हैं, तो सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन की वजह से जो है वो क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स जो है उसमें अप्रत्याशित तौर पर बढ़ोतरी देखी गई है और ये एक न्यू नॉर्मल है।
1: अतुल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सामयिक चर्चा में आज आपने सुना उत्तर प्रदेश में मानसून के पिछड़ने के कारणों और बारिश के पूर्वानुमान पर लखनऊ मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
3: आकाशवाणी के लखनऊ
4: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 9:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती गाती है। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे रविंद्र कुमार और समरपाल सिंह की आवाज में रागनी। पहले सुनवाते हैं आपको ये रागनी।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: हर धरती की शोभा सृष्टि,

अभी तक हमने आपको दो रागनी सुनवाई और ये दोनों रागनी में आवाजें थीं रविंद्र कुमार की। धरती गाती है कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रविंद्र कुमार और समरपाल सिंह की आवाजों में रागनी। और हम चाहते हैं कि एक रागनी आपको रविंद्र कुमार की और सुनवाई जाए, उसके बाद आगे चलेंगे।

रविंद्र कुमार की आवाज में आपने ये रागिनी सुनी। इससे पहले कि हम आपको समरपाल सिंह की आवाज में रागिनी सुनवाएं, कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं भी सुन लीजिएगा। आज सवेरे 10:55 पर मन की बात का प्रसारण रहेगा और ये प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसके अलावा गीत तुम्हारे कार्यक्रम आप सुनते ही हैं आजकल सवेरे 10 बजे से, और ये कार्यक्रम मात्र 55 मिनट का रहेगा। साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला का समय रहेगा दिन में 12:05 पर, और फिल्मी संडे में आज की फिल्म रहेगी 1992 में बनी दीवाना, समय रहेगा 12:30 पर। इसके अलावा दिन में 1:45 पर लोकधारा कार्यक्रम में विविध कलाकारों के गाए हरियाणवी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। युववाणी में शाम 5:15 पर हमारे क्रम रहेंगे, आपके लिए कुछ खास है आज, झलकी कनिका का त्याग। कृषि जगत में शाम 6:05 पे सुनिएगा भेंटवार्ता, दलहन तिलहन का कृषि में महत्व, और इस विषय पर डॉक्टर हंसराज सिंह से बात करेंगे जितेंद्र कुमार। आज शाम 6:45 पर विविधा क्रम में आप सुनेंगे कहानी निर्णय, ये कहानी सुधा शर्मा की रहेगी, और हमारे कला में शायर रहेंगे विजयरत नबी। अदबी दुनिया के आज के अंक में समय रहेगा 7:50 और अब वापस लौटते हैं धरती गाती है कार्यक्रम की तरफ, जिसमें अब हम आपको सुनवाएंगे समरपाल सिंह की आवाज में ये रागनी।

ये आवाज़ थी समरपाल सिंह की इस रागनी में, और धरती गाती है कार्यक्रम का अंतिम रागनी जो हम आपको सुनवा रहे हैं। इसमें आवाज़ रहेगी रविंद्र कुमार की।

धरती गाती है कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और इस कार्यक्रम में आज हमने आपको रविंद्र कुमार और

मोबाइल ऐप पे तो आ ही रहा है न्यूज़ ऑन AIR, सर्च करके आप उसमें हमें सुन सकते हैं, है ना, जानते हैं आप। और नंबर व्हाट्सएप रह जाता है कि भाई उसको बिना बताए काम कैसे चलेगा, तो वो तो बहुत ज़रूरी है हमारे नए श्रोताओं के लिए जो आज जुड़ रहे हैं। और हमारे श्रोताओं की तो पूरी टीम है कि कहीं ना कहीं से श्रोताओं को जोड़ते रहते हैं, है ना। तो ये सारी बातों को हम यहीं बैठ के जानते हैं अपने श्रोताओं की सभी हरकतों को। वो थोड़ी थोड़ी बातें हम करते हैं ना आपसे, तो हमारा एक मकसद होता है कि यार छुट्टी का दिन है भाई, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारी वजह से किसी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान तैर जाए, वो काम हम यहाँ बैठ के कर लेते हैं इस कार्यक्रम में, है ना। ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारे सामने हो आप और हम यहाँ बैठे हैं। बस फर्क क्या है कि बस हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मन की आंखों से तो बिल्कुल आप हमारे सामने हैं। तो नंबर की बात रह जाती है भाई, 94-570-78-288 ये नंबर है, अंग्रेजी में सुन लीजिएगा, 9457-07-8288 ये नंबर हमारा रहेगा और है ही ये नंबर, है ना, व्हाट्सएप का। बस लिख दीजिएगा अपने पसंद के गाने का नाम और फिल्म का नाम लिख दें, बहुत अच्छा रहेगा। और साफ साफ करके लिखिएगा, जरा हिंदी में लिखिएगा, है ना, कोशिश करिएगा कि इसको टाइपिंग, आजकल वॉइस टाइपिंग का ज़माना है, वॉइस टाइपिंग से तुरंत आप जो बोलेंगे वो टाइप हो जाता है। लिखिएगा जरा सा, है ना, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ नहीं सकते हम। चलिए खैर, मैं शुरू कर देता हूँ, है ना। आप कहेंगे कि साहब बात करनी शुरू कर दी इन्होंने, तो वक्त ज़ाया नहीं कर रहा मैं। अगर कहीं अगर थोड़ा सा मैंने आपका वक्त ले लिया होगा 1-2 मिनट का, तो मैं इसके अंदर जितने मैसेज पढ़े जाते हैं लगभग इसका डबल मैसेज पढ़ूंगा, है ना, ये भी मेरा आपसे कमिटमेंट है। फिलहाल शुरुआत कर रहे हैं मैसेज से। तो ये हमारे नियमित श्रोता हैं साहब, ग्राम गदरोना, जिला हरिद्वार उत्तराखंड से, मदन गिरी, बिमला गिरी, बलराम गिरी, मधु गिरी, भारत गिरी, सोनिया गिरी, सिमरन गिरी, गोविंद गिरी, वंशिका गिरी, रमन गिरी और दिव्या गिरी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए हमारे श्रोता आप भी हैं, और ये श्रोता मुझे मिल रहे हैं हाथों हाथ ही। मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी

मंसूरी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता, देखिए कहाँ के हैं ये, कासगंज के हैं, मास्टर राधेश्याम शाक्य और इनका पूरा परिवार साथ में इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद। गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भैयाण, शमशेर, सुरेंद्र, मनोज और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई, देखिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज होता, हमेशा कहते हैं जब भी ये मैसेज हमारी नज़रों के सामने आता है ना, और बहुत गजब का मैसेज लिख के भेजते हैं हमेशा ये। फुलांग निज़ामाबाद के श्रोता हैं ये हमारे नियमित, तेलंगाना से एम ए वहीद रोमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद फाजिल भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भाई देखिए हमारे श्रोता जुड़ गए बिल्कुल, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा भी इनके साथ जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं साहब की बहुत बहुत आपका शुक्रिया, मेहरबानी होगी। तो बिल्कुल भाई पूरा काम रहता है हमारा कि हम आपके खतों को भी पढ़ें और SMS तो आप भेज ही रहे हैं लगातार हमें, है ना। बस ये हम जरा सी हमारी ये रहती है आपसे एक विनती कि भाई दोबारा ना करें, जरा सा सुनते रहिएगा आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र, है ना, बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइएगा, रेडियो को अपने करीब रख लीजिएगा, है ना। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम आपका ये इस वक्त चल रहा है गीत तुम्हारे आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। फिलहाल अगला मैसेज मैं ले रहा हूँ, ये मैसेज मैं लेता हूँ साहब, सनावसे शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिश में रहे साहब, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश के मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाई, राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश, जगताप भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। साहब कितने श्रोता हैं हमारे, देखिए। इसके बाद ये मैसेज ले रहा हूँ, SM जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल हुदा का गुमला झारखंड से जी, ये मैसेज, हाँ जी, ये है जिला मुरादाबाद से साबिर अली और इनका पूरा परिवार, है ना, और कह रहे हैं कि भाई मनोज भाई आपकी बहुत बहुत मेहरबानी रहेगी। तो भाई बिल्कुल नाम मैंने आपका बोल दिया है ना, जुड़े रहिएगा और सुनते रहिएगा तो आपको ये लगेगा कि हमारा नाम बोला जा चुका है। और ये मैसेज मैं ले रहा हूँ, ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे ये श्रोता भी हैं। देखिए कौन है ये, शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र के श्रोता हैं साहब, संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई, देखिए नियमित श्रोता हमारे मिल गए हमें। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई, देखिए ये हमारे श्रोता भी हैं। जी हाँ, ये मैसेज मैं लेता हूँ, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा दिल्ली में हैं साहब ये, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं। कौन है ये, करणवीर हाउस भुचो कैंचिया से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, दविंदर, दपिंदर, दवरिंदर, कुलदीप, सेमू, एकम, दमन और अभिजोत भी इनके साथ हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद फर्रुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू लल्ला चौरसिया, बाबू शिवा चौरसिया, शिवानी चौरसिया, पवन गौड़ और योगेंद्र नायक भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज इनका हिंदी में है। इसके अलावा बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन अपार और इनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, ये मैसेज मैं ले रहा हूँ। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा भी इनके साथ हैं। चलिए गीत सुनवा देते हैं, उसके बाद फिर जुड़ेंगे आपसे।

0: बड़ा ही खूबसूरत गीत हमारे श्रोताओं ने सुनना चाहा था जो हमने अभी आपको सुनवाया। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में गीत था ये बरसात फिल्म से। एक संदेश उसके बाद फिर आपके SMS पढ़ेंगे।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अगला गीत जो हमारे श्रोता सुनना चाह रहे हैं ना, बड़ा खूबसूरत गीत है और मोहम्मद रफ़ी साहब और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ें हैं इसके अंदर। और ये जो सुनने के ख्वाहिशमंद हैं ना इस गीत के लिए, ये अभी हम जब सर्च कर रहे थे तो बहुत सारे मैसेज हैं इस गीत के लिए। ज़रा नाम पढ़ते हैं। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी शहनाज अब्बासी नवेद हसन सुहेल हसन रसीद वारसी अनम अब्बासी यशफ भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भाई यहीं इन्हीं के मैसेज में कदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान सबीहा जुबैर अंजुमन खान और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए हमारे ये श्रोता हैं। बिल्कुल देखिए बड़ा खूबसूरत मैसेज फिर मिला है हमें ये, और हमारे सारे जो श्रोता हैं ना बड़े खूबसूरत हैं। नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी गुलनाज सलमानाज असद अरहाम और इनके साथ में है मोहम्मद आलम हाशमी। बहुत शुक्रिया आपका इतने खूबसूरत मैसेज के लिए और आपने अपनी बात भी लिखी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप अपनी बात यहाँ तक लिख के भेज देते हैं हमारे इसी कार्यक्रम में और आगे की कहानी ऐसा लगता है कि ख़त्म कर रहे हैं आप, है ना। 12:05 पे साप्ताहिक कार्यक्रम होता है, उसमें लिखिए भाई हमारे कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं, गीत तुम्हारे के अलावा जो फरमाइशी कार्यक्रम होते हैं, यानी कुल मिला के मैं इस बात को ऐसे कहूँ कि साहब आप जो कार्यक्रम सुनते हैं हमारे फिल्म संगीत के सुनते हैं, तो इसके अलावा भी तो बहुत कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाते हैं, ज्ञानवर्धक हैं, ज़रा लिखिएगा उनके बारे में भी, है ना। तो हमें अच्छा लगेगा कि भाई हमारे सुनने के ख्वाहिशमंद और कार्यक्रम भी। अगला मैसेज मैं ले रहा हूँ पूर्णा जंक्शन मस्तानपुर से अनंता भगत अरुणा भगत चेतन भगत सुलोचना भगत और इनका पूरा परिवार। और भाई देखिए जो मैसेज जो मैं बोलता जा रहा हूँ उन्होंने तो कई बार हमारे श्रोता उसके लिए धन्यवाद अदा कर रहे हैं, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आप दिलो जान से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बस यही चाहते हैं कि भाई दोबारा मैसेज ना करें, एक बार मैसेज अगर आप कर देंगे तो वही मुझे लगता है काफ़ी है। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख नाजिया नसीर साजिद शाहिद गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर सबीहा मुजावर मिखाइल जैनब मुजावर, जी हाँ। और इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे नियमित श्रोता हैं बहुत पुराने, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा मंजू वर्मा निशांत वर्मा कौशिकी वर्मा दीपाली वर्मा युवान और आर के राजा। क्या बात है, ये मैसेज हमारे नियमित श्रोता का है। एक बार फिर भाई देखिए हमेशा नामों को तो हम सुनते रहते हैं हमारे जो केंद्र से प्रसारित किए जाते हैं तो हमें याद भी हो गया, पप्पू राजा खुश दिल संगीता रानी पप्पू महक सुनीता रानी आरजू पप्पू हंसमुख लाल जिंदल बुलबुल शक्ति खुश दिल संजीव बंटी जिंदल पूरा खुश दिल परिवार है। कहाँ से है ये? चकला बाजार समाना शहर पंजाब के श्रोता हैं भाई हमारे। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए ये हमारे श्रोता हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी लालू मिस्त्री अंसारी मोहम्मद मुनाजिर अंसारी अब्रार हुसैन अंसारी मुन्ना भाई निशा परवीन तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं साहब। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए हमारे ये श्रोता भी हैं। अब कौन है ये श्रोता, ये मैं यहाँ से इनको ले रहा हूँ, जी हाँ। शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल आशा सपकाल सोनिया सपकाल साईराज सपकाल और विशाल सपकाल के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए हमारे ये श्रोता मिल गए हमें। ग्राम दुल्हापुर जिला उत्तर प्रदेश के हैं ये। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा देखिए हमारे नियमित श्रोता और मिले हैं बिल्कुल अभी हमें, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरवा नूर भी हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई, देखिए ये मैसेज मुझे मिला है कहां से है, नई बस्ती गंजडुंडवारा से, मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं। ये मैसेज जी सुराहीदार, अच्छा ये कोई गाने के बोल इन्होंने लिखे थे लेकिन ये कुछ ऑप्शन और भी मिले हैं हमें। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार भी इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुना नगर हरियाणा से विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी इनके साथ जुड़े हुए हैं। मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम लिखा है इन्होंने, और भी लिखिएगा कि तीन चार नाम तो कम से कम होने ही चाहिए। कंवर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन मध्य प्रदेश के श्रोता हैं प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं। कहां से हैं, श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश के जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। गीत सुनवा देते हैं फिर उसके बाद आपकी फरमाइश लेंगे।

मोहम्मद रफ़ी, सुलक्षणा पंडित और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना फांसी फिल्म का ये गीत। एक संदेश सुनवाते हैं आपको, उसके बाद फिर सिलसिला वही जारी रहेगा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश करने वाले हमारे बहुत सारे श्रोता हैं। कौन कौन है? उत्तम नगर दिल्ली से गीतिका खोरवाल, बोधराज, कमला रानी, भानु प्रकाश भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, और ग्राम और पोस्ट राहु नंगली के हमारे नियमित श्रोता हैं। कौन है साहब ये? आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान, राघव चौहान और इनका पूरा परिवार है। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई कौन कौन है साहब? ये हम मैसेज निकाल रहे हैं साहब। अच्छा, ये मैसेज हमने निकाला तो, लेकिन हमारे श्रोता ने वो अपनी बात जो है कह दी है, और धन्यवाद आपका बहुत बहुत भाई। आपका पत्र मिला में भी कह दिया करें भाई, हमारा तो पूरा काम है कि भाई इस वक्त काम करना है, आपको आपके ख़तों को शामिल करना है, आपके SMS को शामिल करना है, और कर ही रहे हैं, है ना। और कोशिश करें आपका पत्र मिला में लिख दें। फिलहाल तो पढ़ लिया मैंने इस भी बात को जो लिखा आपने। इसके अलावा भाई देखिए, ये मैसेज मुझे मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा भाई? ये है गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता का, और ये मैसेज नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, और गांव खाड़िया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा के सत्यवीर सिंह, बिजारनिया देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा अर्जु, नव्या बिजारनिया इनके साथ जुड़े हुए हैं। और साहब ये मैसेज मुझे मिल रहा है गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी का, और ये मैसेज नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना के श्रोता हैं अजीज भाई, मतीन भाई, अब्दुल रहमान, सैयद खलील, मुबीन भाई, MD यासीन, शेख चांद फारूक, फूलवाले मूसा करीम, शेख सलीम, नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना के भाई। दो दो बार इन्होंने अपना पता लिख दिया, दो दो बार ही हमने पढ़ दिया, क्या करें फ्लो होता है हमारे पास। अच्छा चलिए, बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश के बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिक्रा डावर और बेबी आयशा खत्री इनके साथ भी जुड़े हुए हैं। ये मैसेज मुझे मिल रहा है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के अभिजीत गवाणकर राही का, श्रीमती सरिता, प्रणीता सिद्धांत, प्रिंस एकांश और अर्जुन गवाणकर, टुक टुक, क्या बात है साहब। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। और साहब ये मैसेज मैं ले रहा हूं एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, देविका चौधरी और वंदना खर्ड से भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये मैसेज दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से M असलम सैफी, जबुनिशा बेगम, अकरम सैफी, जावेद सैफी, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी और आबाद खान साथ में ये मैसेज और ले रहे हैं भाई हम। ये मैसेज तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख शेख रहीम, मुन्ना, दानिश, आसिफ शेख के अलावा एक मैसेज और ले लेते हैं हम। ये मैसेज शाही मार्केट सियोरा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात, अदीब और कादिर चौधरी के अलावा इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये गीत। आप ही की पसंद पे हम भी सुनेंगे आपके साथ।

ये गीत था फिल्म सलामी से, आवाजें थीं अलका याग्निक और साथी। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश करने वाले हमारे आप सब श्रोता हैं मोहल्ला धर्मदास, नजीब अब्बासी, गुलाम हसन, निशात बानो, साबरा, विलायती, शहजादी, सलमान, शराफत और इनका पूरा परिवार। खेल बाजार, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्षा मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कुन्नी का सिक्का और डुग्गू सिक्का के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं। मामूल वाडी महाराष्ट्र के सोपान ताइडे, वसंत राव भोजने, पी एस नभाड़कर, तुषार करांगले के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे के अलावा ये मैसेज मुझे मिला है वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खां और अजीम खां का। भाई बहुत शुक्रिया आपका, वर्ली मुंबई के श्रोता हैं हमारे और ऐसा लग रहा है कि भाई पहली बार हमने इनका नाम पढ़ा है। फिलहाल ये मैसेज लेते हैं दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद उत्तम नगर दिल्ली के बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश और ये मैसेज ले रहे हैं हम चंडीगढ़ के श्रोता हैं हमारे सतीश अनेजा और बिमला अनेजा के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद ये मैसेज। जी हाँ, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य और दिनेश के अलावा इस गीत को इनका पूरा परिवार सुनना चाहता है। इसके अलावा ये मैसेज मुझे मिल रहा है राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, सायना, महविश, मोहम्मद अफ़फ़ान, अदीना नूर का ग्राम जुझेला, थाना शिवाला, कलां, बिजनौर के श्रोता हैं हमारे और ये मैसेज संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भारत मक्कर, कमल सहानी और ये हैं जलंधर पंजाब के श्रोता हमारे। ये मैसेज और मैं पढ़ लेता हूँ। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से, क्या बात है साहब, ऑक्सीजन पार्क। सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना गुंडा ने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामण शिंडे, ये मुझे लग रहा है कि भाई वहाँ पर हरी भरी वादियाँ हैं तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा हुआ होगा और ये मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बड़ा सोच समझ के नाम रखा होगा। धन्यवाद आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे आप सब श्रोता भी हैं। ये मैसेज, हाँ, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना भी इनके साथ जुड़े हुए हैं और ये मैसेज 5 स्टार रेडियो श्रोता संघ जिला कासगंज यूपी से, योगेंद्र नायक, श्रीमती गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और उनके दोस्त सुरेश चौरसिया के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं। मोताला महाराष्ट्र के श्रोता हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर के अलावा। जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के श्रोता हैं हमारे अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोटके, वैष्णवी घोटके, गायत्री घोटके, यज्ञेश घोटके भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये मैसेज ग्राम पंचायत काले गांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव का, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमार संचित, कुमार प्रथमेश, कुमारी प्रणाली, कुमार सर्वद, कुमारी सानवी, कुमारी हर्षदा देशमुख और कुल मिला के कहें तो पूरा देशमुख परिवार। ये मैसेज गंज डुंडवारा के श्रोता हैं हमारे शमशुल कमर राही, शाहिना फातिमा, अदनान, फैजान, अनुखान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी के अलावा इस गीत के लिए अंतिम फरमाइश हम लेना चाह रहे हैं। कस्बा चिलकाना जिला सहारनपुर से एम जरीफ अंसारी, नईम अंसारी, डॉक्टर अमीर मुन्ना नाजिम बेन के साथ जुड़े हुए हैं। चलिएगा सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था प्यार झुकता नहीं। और मैं अपने सभी श्रोताओं को ये बात बता दूं कि आज का ये कार्यक्रम केवल 10:55 तक ही रहेगा। और इसी से एक बात और जोड़ दी जाती है कि 10:55 पर मन की बात कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, तो उसको भी सुनना ना भूलिएगा। एक बात और यही कहते हैं कि ये जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अंतिम गीत रहेगा। जी हाँ, मैंने बिल्कुल कहा है आपसे, अंतिम गीत रहा है। और आपने भी बिल्कुल सही सुना है। फरमाइशें तो लेंगे ही, हम खतों को भी शामिल करेंगे, तो थोड़े से खतों को शामिल कर लेते हैं भाई। खत भी तो हमारे श्रोता लिखते हैं। सब्जी मंडी नजीबाबाद के श्रोता हैं विष्णु अग्रवाल, रानी अग्रवाल, निकित अग्रवाल, सोनी अग्रवाल और अक्षय अग्रवाल के अलावा। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, कस्बा मीरगंज बरेली के हमारे नियमित श्रोता हैं भाई कल्लू मिस्त्री और उनका पूरा परिवार, सहारनपुर दाऊद सराय से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, इरम साबरी, अमन साबरी के अलावा। ये मुझे खत मिला है ग्राम लुहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड के श्रोता हैं हमारे जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव और राघवेंद्र के अलावा। ये श्रोता हमारे खत के द्वारा हमें मिले हैं मोहल्ला अफगानान शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर और इनका पूरा परिवार। आदर्श नगर मलोट पंजाब के श्रोता हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा। और ये खत है ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और राना सिद्दीकी। अनारकली बाजार जगराओं के श्रोता हैं यानी सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या और भाई सुच्चा पाठक के अलावा। तेलीपुरा रवाना शिकारपुर तलाई से मोहम्मद यूनुस अंसारी, मुरसलीन अंसारी, अताउर रहमान अंसारी, मोहम्मद उमेर अंसारी और इनका पूरा परिवार। कस्बा चिलकाना से मोहम्मद जरीफ अंसारी, नईम अंसारी, आमिर अंसारी के अलावा। ये मैसेज मैं लेने जा रहा हूं सहारनपुर से सोनाली आशा नारंग और सुरेश नारंग का। बढ़ापुर बिजनौर के श्रोता हैं ये मेन बाजार से मोहम्मद ताहिर और इनकी पूरी फैमिली इनके साथ जुड़ी है। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे ये श्रोता भी हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ के दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा के अलावा। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद ये मैसेज हमें मिला है बिल्कुल अभी। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान के रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी के अलावा इनका पूरा परिवार भी जुड़ा हुआ है। और वो कह रहे हैं कि भाई कितने मैसेज करने पड़ेंगे। अरे भाई हम भी पढ़ ही रहे हैं मैसेज, है ना। और 10:55 तक ये कार्यक्रम रहेगा, कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी को शामिल कर लें, लेकिन मजबूरी अगर हो तो फिर आप भी थोड़ा सा सामंजस्य बना के रखिएगा। हैं हाँ, ये भी आपको हम समझा दें, हमारे बहुत अजीज़ श्रोताओं में से हैं आप। ये मैसेज मुझे मिल रहा है भाई, कहाँ से मिल रहा है जी। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरा ही अब्बासी परिवार। और ये हमारे श्रोता हैं भाई, भाई ये मैसेज देख रहे हैं ना हम, तो हमारे श्रोता लगातार हमें दो दो बार भी कर रहे हैं। अब क्या करें, हमें थोड़ा स्क्रॉल करने में दिक्कत पेश आ रही है और मैसेज हमारे श्रोता दो दो बार भी कर रहे हैं। ये हमारे श्रोता हमें मिले हैं बिल्कुल अभी नगीना के हैं श्रोता हमारे, अनिल विनोचा, शम्मी विनोचा, अक्षय विनोचा, कनिका अरोड़ा, सहज अरोड़ा और गीत अरोड़ा भी इनके साथ में, साथ में इनका पूरा परिवार। ये मैसेज धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू का। सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

आरडी बर्मन साहब की ये आवाज़ है शोले फिल्म के लिए, और लगातार मैसेज मिल रहे हैं हमें। कुछ मिनट और हैं हमारे पास, सोचते हैं अपने श्रोताओं के और नाम भी इसमें शामिल कर लें। जसपुर रोड दूल्हापुर से महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अलशिफा परवीन भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद ये भी रहे हैं जलालाबाद वेस्ट के श्रोता हैं सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद दिलावर खां, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, रघुवीर नगर दिल्ली के श्रोता हैं ये हमारे। और ये श्रोता कौन है भाई? काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र के मास्टर विठल सुरेशे, सुषमा परिधि और मायरा सुरोशे के भी मैसेज मिले हैं लगातार। ये एकता कॉलोनी रोहतक के श्रोता हैं हमारे। सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा

इस गीत के साथ गीत तुम्हारे कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे यानी मनोज वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, अपना खास ख्याल रखिएगा और एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे हम दिन में 12:05 पर। फिलहाल आपको लिए चलते हैं हम मन की बात की तरफ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बुलबुल के तक गया, क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
4: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
7: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती।

लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानि केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब
बाई

1000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने यह सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी।

लेकिन ऐसा नहीं है, ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को

डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती है। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है।
इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट बीजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको वृक्ष में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको वृक्ष का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर
जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और

आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और

अब से कुछ ही देर में यानी दोपहर 12:05 पर हमारे श्रोता सुनेंगे अपने पत्रों के उत्तर पर आधारित कार्यक्रम आपका पत्र मिला। कार्यक्रम फिल्मी संडे में आज दोपहर 12:30 पर श्रोता सुनेंगे सन 1992 में बनी हिंदी फिल्म दीवाना की कहानी। हमारे बाल श्रोता सुनेंगे अपना पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका दिन में 1:15 पर।

रहा बचकर 5 मिनट होने को हैं। श्रोताओ, अब आप सुनेंगे आपके पत्रों के उत्तर पर आधारित कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

0: कुछ लफ्ज तारीफ के कुछ सुझावों की बात, कुछ लफ्ज तारीफ के कुछ सुझावों की बात, कुछ सवालों के साथ कुछ मीठे से जज्बात। आपके खतों में सजा है आज का कारवा, आइए शुरू करें ये प्यारा सा प्रोग्राम। श्रोता, रेडियो की असली ताकत आप श्रोता हैं। आपके खत, आपके सुझाव, आपके सवाल, आपकी तारीफ और कभी कभी आपकी शिकायतें भी हमें बेहतर काम करने के लिए प्रेरणा देती हैं। आपके विचार हमें बताते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आप और हमारे बीच बातचीत का ये खूबसूरत सा सिलसिला। श्रोताओ, आज मैं हूँ आपके साथ नसरीन जैदी, और मेरे साथ आपके पत्रों के उत्तर देने के लिए स्टूडियो में हाजिर हैं मनोज वर्मा।
1: धन्यवाद नसरीन जी, और मैं अभी सभी श्रोताओं का आज के इस अंक में आपके साथ स्वागत करना चाहता हूँ। जी नसरीन जी।
0: जी श्रोताओ, तो मनोज जी, क्यों ना हम अपने इस खूबसूरत से प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा सा, बड़ा लंबा सा पत्र हमें मिला हुआ है
1: जी।
0: ये हमें मिला है नगीना से, और इसको लिखा है अनित विनोचा ने
1: जी।
0: ये लिखते हैं कि ये हमें दोनों को ही सादर नमस्कार कहते हैं। लो, आज फिर मनोज जी बिग बॉस की कुर्सी पर बैठे हैं। लास्ट संडे का आपका पत्र मिला प्रोग्राम, मैं भूला भी नहीं था, वो इतना अच्छा लगा था जो जसवंत जी के साथ किया था। आज का काव्य पाठ बहुत अच्छा लगा, और जो अलका मित्तल जी ने पेश किया मधुमेह पर जानकारी बहुत अच्छी लगी। आज का सूरज के साथ साथ गोल्डन हिट गीत तुम्हारे अच्छे लगे, हीरो हैं इसके लिए मनोज वर्मा जी। पता नहीं मनोज जी ने क्या तय किया है अपना 100% अच्छा प्रेजेंटेशन देने का। चलो अब आगे चलते हैं। मंडे का
1: संगीत
0: संध्या बहुत अच्छा था। ट्यूसडे को राजवीर सिंह ने वंदना से लेकर गीत तुम्हारे तक सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे किए। फिर आती है एक स्पेशल एंट्री करती हुई नेहा शर्मा जी, बड़े फ्रेश मूड में, प्रोग्राम गीत तुम्हारे से ही, और चित्रपट संगीत सैनिकों के लिए मिड डे मेलोडी, और राज बब्बर जी पर बहुत अच्छे प्रोग्राम किया। दिल ने फिर याद किया, फरहीना जी ने बहुत अच्छा किया। हेलो नजीबाबाद, रात के हम सफ़र बहुत अच्छा लगा। जिंदगी लाइव भी अच्छा था, ट्रेन रुकी आकर भी। फिर आज संडे को तो पहले ही
1: जिक्र कर दिया,
0: है आपने।
1: धन्यवाद बहुत बहुत इस खूबसूरत SMS के लिए। हमारे नियमित श्रोता हैं अनिल विनोचा और इनका पूरा परिवार, और एक जगह आपने लिखा है दोनों प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव को सादर नमस्कार। तो भाई हम बता दें ज़रा, एक हमारे सहायक निदेशक प्रोग्राम हैं, यानी इनको अंग्रेजी में बोला जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम, और दूसरे हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं। दोनों को आप जानते हैं अच्छी तरीके से, और थोड़ा सा दुरुस्त हमने किया, आपने कहा है कि भाई एक बार फिर हम इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो बिल्कुल साहब आपकी सेवा के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपका SMS नसरीन जैदी जी ने पढ़ दिया, और आज का काव्य पाठ आपको बहुत अच्छा लगा जो अलका मित्तल जी ने पेश किया, धन्यवाद इसके लिए। मधुमेह पर जानकारी बहुत अच्छी लगी, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और भाई मधुमेह बीमारी तो ऐसी है कि वो लाइफ स्टाइल की बीमारी है, और अगर हर व्यक्ति अपना लाइफ स्टाइल बदल दे तो शायद गोली खाने की ज़रूरत उसको नहीं होगी। और
0: जी।
1: आगे कह रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या तय किया हुआ है हमारे बारे में, तो भाई कुछ नहीं, बस अपने पूरी कोशिश जो आपने लिखी है ना, ये रीड करते हुए 100%, तो बस ये ही पूरा सोच के हम भी आते हैं और हमारे साथी भी आते हैं। सवाल ये हो जाता है कि हमारे श्रोता पसंद किसको कर लें और कब कर लें।

0: है ना।
1: जी
0: और आपने जितने कार्यक्रमों के बारे में लिखा है, राजवीर सिंह का जिक्र है इसमें, नेहा शर्मा जी का जिक्र है और फरीना का जिक्र है, इसके अलावा जितने भी कार्यक्रम इस दरमियान आपने सुने हैं और आपको अच्छे लगे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद अदा करने चाहेंगे और इतनी बात कहना चाहेंगे कि कार्यक्रमों को आप सुनते रहिएगा और अपनी प्रतिक्रिया देखते रहिएगा। इसके अलावा ये मैसेज आप पढ़िएगा, ये देखिए मैसेज हमारे श्रोता लगातार हमें कर तो रहे हैं और कई बार ये श्रोता हमारे इस कार्यक्रम में ये भी कहने लगते हैं कि साहब हमें कोई गीत सुनवा दीजिएगा, तो ये मैसेज आप पढ़िएगा।
1: ये मैसेज हमें मिला है मोहल्ला बारादरी महमूद रामपुर से भाई रफत साहब का। ये लिखते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारा प्यार भरा आदाब। रेडियो
0: नजीमाबाद,
1: नजीबाबाद
0: नजीबाबाद
1: के
0: के
1: हम पुराने और नियमित होते हैं, कार्यक्रम सभी बराबर से सुनते हैं। बस अब ये क्या लिख रहे हैं?
0: ये कह रहे हैं कि जब बस थोड़ा सा दुख होता है जब
1: हाँ, जब
0: फरमाइशी
1: इनकी तबीयत,
0: कार्यक्रमों में इनके ऐसे में शामिल नहीं होते, सुबह भी कई ऐसे में इस करे कार्यक्रम में मनोज जी जीत जीत हैं लेकिन हमारा ऐसे में शामिल नहीं हुआ, कैसे उदास होना पड़ा है, इसलिए पहले भी कार्यक्रमों में हमारे ऐसे में शामिल नहीं किए गए, ऑप्शन है कृपया करके हमारे मैसेज भी शामिल करें, ये आपकी मेहरबानी होगी। इनका जीस्ट यानी लब्बो लुबाब इस खत का एसएमएस
1: जी
0: का ये है। तो मोहल्ला बरादरी के हमारे श्रोता हैं महमूद खान रामपुर से, भाई रफत साहब, सईद भाई, मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान और नजमा नाज मंसूरी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
1: और जी
0: आपको
1: इनका इनका एसएमएस भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो गया, अब तो इनकी शिकायत दूर हो जानी चाहिए।
0: हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि भाई फरमाइशी कार्यक्रमों में इनका एसएमएस शामिल नहीं होता तो फिर हम वही बात कहेंगे यहाँ भी और गीत तुम्हारे में भी, हमारे कई प्रेजेंटर यानी हमारे साथी ये बात बोलते हैं कि भाई वक्त की किल्लत होती है और कई बार इतने मैसेज आ जाते हैं बल्क में आ जाते हैं ना, वो सैकड़ों की संख्या में, तो नामुमकिन होते हैं और हमें तो काम वक्त के हिसाब से ही करना होता है, तो कई बार सामंजस्य बना के हमें रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम जब घर पर भी रेडियो सुनते हैं तो आपके नाम तो हम सुनते रहते हैं, है ना, तो आज भी आप अपना सामंजस्य बना कर रखें और आकाशवाणी नजीबाबाद से और हमारे सभी साथियों से आप प्रेम बनाकर रखें और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। हमारे कार्यक्रमों को आप इसी तरीके से सुनते रहिएगा, एक बार फिर आपका शुक्रिया। ये जी मैसेज पढ़िएगा आप।
1: ये मनु जी हमें मिला है
0: जी
1: ये संदेश बरेली से, और इसको लिखा है अमित दिवाकर, मनोज दिवाकर, नीलू दिवाकर, रजत दिवाकर, साहिल दिवाकर, समक्ष दिवाकर, रोशनी दिवाकर, सुमित दिवाकर और उनके मम्मी पापा ने। आकाशवाणी नजीबाबाद के सभी प्रोग्राम हम बड़ी तन्मयता के साथ सुनते हैं और हमें बेहद पसंद भी आते हैं, और जो उद्घोषक हैं उनकी मेहनत हमें साफ साफ मतलब उन्हें नज़र आती है। प्रोग्राम के प्रेजेंटेशन उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। पिछले मंडे से
0: हाँ जी, वो पिछले मंडे से कहना चाह रहे हैं कि जो प्रोग्राम किए गए हैं वो उनको काफी अच्छे लगे हैं, इसके बाद आने वाले वक्त में वो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से
1: ये 22 तारीख से लेकर आज तक के सभी प्रोग्राम हमें बेहद पसंद आए हैं, खासकर चित्रपट संगीत हमें बेहद अच्छा लगा, और 23 का सूरज के साथ साथ राजवीर जी का अच्छा लगा, 24 तारीख का महिला जगत कार्यक्रम बहुत पसंद आया। इसके अलावा 25 जून गुरुवार का वंदना प्रोग्राम सूरज के साथ साथ गीत तुम्हारे, श्वेता भट्ट जी की मधुर आवाज दिलों को छू गई। 26 जून को नमित राज जी की प्रस्तुति भी इनको बहुत पसंद आई। 26 जून का हेलो
0: नजीबाबाद भी इनको अच्छा
1: नजीबाबाद
0: लगा
1: भी
0: लेकिन
1: अच्छा
0: हमारी
1: था,
0: कॉल नहीं
1: लेकिन
0: लगी, वो कहना चाह रहे
1: हाँ
0: हैं।
1: हमारी कॉल नहीं लगी। और कल सैटरडे यानी 27 जून का वंदना कार्यक्रम मन भावन लगा, सूरज के साथ साथ प्रोग्राम इन्हें बहुत पसंद आया। श्वेता भट्ट का श्वेता भट्ट द्वारा बताई गई इन्हें सभी जानकारी बहुत अच्छी लगी और साथ ही गीत तुम्हारे कार्यक्रम में नेहा जी और श्वेता जी का सॉन्ग सिलेक्शन बेहद पसंद आया। आज सुबह का गीत तुम्हारे मनोज जी की काबिलियत मतलब
0: कड़कती आवाज बेहद पसंद आई, ये बोल रहे हैं वो
1: बेहद उन्हें पसंद आई।
0: सुझाव क्या देना चाह रहे हैं?
1: सुझाव ये देना चाह रहे हैं कि कहीं छोटी मुंह बड़ी बात ना हो जाए।
0: हाँ।
1: सुझाव है कि फिल्मी संडे प्रोग्राम का कोई
0: औचित्य
1: नहीं लग रहा, बल्कि इसके स्थान पर लाइव फरमाइशी फिल्मी संडे शुरू कर दीजिए, जिससे संडे को और भी
0: फंडे बना दिया जाए।
1: फंडे बना दिया जाए जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप मनोज जी के?
0: देखिए, हमारे श्रोता हैं और नियमित श्रोता हैं ये हमारे अमित दिवाकर, मनोज दिवाकर और इनका पूरा परिवार के सभी कार्यक्रमों को हमारे सुनते हैं और जितने भी इन्होंने तारीफ की है सभी हमारे साथियों को, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इसके बाद में वो ये कहना चाह रहे हैं कि फिल्मी संडे प्रोग्राम का कोई औचित्य नहीं लग रहा। भाई ऐसी बात नहीं है कि फिल्मी संडे का कोई औचित्य नहीं है, इसको सुनने वाले हमारे बहुत श्रोता हैं। और रही बात इसके स्थान पर किसी दूसरे के करने के लिए, तो भाई इसको देखते हैं हम क्या कर पाते हैं। तो आप फिलहाल आकाशवाणी नजीबाबाद के जितने कार्यक्रम इस वक्त प्रसारित किए जा रहे हैं और सुबह सवेरे 5:53 से और 11:10 तक उनका आनंद लीजिएगा और इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मनोज जी, ये अगला संदेश हमें मिल रहा है, ये इसको लिखा है
0: जी, इन्होंने लिखा है हमें अंबे विहार कॉलोनी बिजनौर से, लता शर्मा, दिनेश शर्मा, अनंत, अबीर, आरव, नमन, अंजलि और सभी पड़ोसी भी हैं साहब इनके साथ।
1: जी जी,
0: चलिए आगे।
1: गर्मी ने तो कहर बरसा रखा है, कृपया अपना ध्यान रखें, काम पर आते और जाते समय पानी की बोतल, ग्लूकोन डी और ये सब बातें उन्होंने बताई हैं।
0: सामान्य बात बताना चाह रहे हैं, इसके अलावा क्या क्या कहना चाह रहे हैं?
1: ये कहना चाह रहे हैं कुछ हमारे कार्यक्रमों की इन्होंने
0: यहाँ से पढ़िएगा इसको,
1: आकाशवाणी को ये
0: तो हमेशा से ही नंबर वन है और रहेगा।
1: और
0: कल का वंदना कार्यक्रम सूरज के साथ साथ कार्यक्रम गीत तुम्हारे कार्यक्रम बहुत पसंद आया। लास्ट शुक्रवार को हेलो नजीबाबाद भी इन्होंने सुना, वो भी बहुत अच्छा लगा, हमारी कॉल नहीं लग पाई। इसका अलावा दिन में जो कार्यक्रम आते हैं लोक संगीत के, उसमें जो रुहेलखंडी लोक गीत सुनवाए गए इनको वो पसंद आए। जिंदगी लाइव कार्यक्रम बहुत अच्छा था। और आकाशवाणी नजीब के साथ साथ हमें मोबाइल और रेडियो दोनों पर ही आकाशवाणी नजीबाबाद सुनना बहुत अच्छा लगता है। और सुबह वंदना के साथ उठते हैं और जब भी टाइम मिलता है दिन में और देर रात तक आकाशवाणी नजीबाबाद हमारा साथी बना रहता है। बुधवार की रात को जो प्रोग्राम आता है वो क्यों नहीं आ रहे, बहुत सारे प्रोग्राम शॉर्ट हो गए हैं, इसका ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, ये हमारे श्रोता हैं, हमने इसका बिल्कुल तुरंत जिस्ट निकाल लिया। हमारे श्रोता हैं ये अंबे विहार बिजनौर से लता शर्मा, दिनेश शर्मा, अनंत, अबीर और इनका पूरा परिवार, साथ में इन्होंने पड़ोसियों के भी जिक्र कर दिया है कि हमारे पड़ोसी भी सुनते हैं। भाई रेडियो होता ही ऐसा है कि एक जगह रख दीजिए और 20 लोगों को आप इकट्ठा कर लीजिए, 20 का मनोरंजन करेगा, है ना, इसी काम के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। आपने तारीफ की है हमारे साथियों की, तो ये तारीफ उन तक पहुँच रही है। रही बात आगे की बात कि भाई बुधवार रात को जो प्रोग्राम आते हैं वो क्यों नहीं आ रहे, तो यही कहना चाहेंगे कहीं ना कहीं लखनऊ से या दिल्ली से कोई ऐसा प्रोग्राम आ रहा है जिसकी वजह से हमें रिप्लेस करना पड़ रहा है उन कार्यक्रमों को। तो फिलहाल आप सामंजस्य बनाकर रखें और हमारे कार्यक्रमों का आनंद लेते रहें। आपने हमें खत लिखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी चाहते हैं आपसे कि इसी तरीके के SMS आप हमें लिखते रहिएगा। एक बार फिर आपका शुक्रिया। ये मैसेज, हाँ
1: ये मैसेज हमें मिला है जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर से, इसको लिखा है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इस्सार और नरगिस खातून ने। ये लिखते हैं, आपका पत्र मिला पेश करने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे बहुत

0: अच्छा लगा आज का प्रोग्राम जिसका नाम है गीत तुम्हारे। प्रस्तुत कर रहे थे मनोज वर्मा जी, काफले की तारीख।
1: देखिए वो लिखना चाह रहे हैं, वो आजकल वॉइस टाइपिंग का जमाना है तो वॉइस टाइपिंग से कर रहे हैं, काबिले तारीफ कहना वो चाह रहे हैं। चलिए आगे पढ़िए।
0: अच्छे गीत सुनने को मिले और सभी के नाम शामिल हुए। दूसरी बात ये कि जो गीत सुनकर मजा आ गया, हाथों के रोंगटे खड़े हो गए और हमने गीतों को बड़ी आनंद से सुना।
1: भैया रोंगटे खड़े हो गए, हमारे श्रोता कौन है? जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश के श्रोता है मोहम्मद फरमान और इनका पूरा परिवार। चलिए मैं यही कहूंगा कि भाई आज का कार्यक्रम आपको जो हमने पेश किया अच्छा लगा, तो आप और कार्यक्रमों को भी सुनिएगा और उनके बारे में भी लिखिएगा। बस इतना ही कहेंगे, धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने हमें SMS किया, अपना कीमती वक्त निकाला, इसी तरीके से आप सुनते रहिए। जी ये मैसेज
0: हमें मिला है जसपुर रोड धूलापुर जिला मुरादाबाद से।
1: जी
0: इनको इस मैसेज को
1: महबूब दुकानदार बेगम साहिबा महबूब मोहम्मद समीर अंसारी जी
0: जी मोहम्मद वारिस अंसारी बेटी
1: अलशिफा परवीन
0: जी ये लिखती हैं, हमें आपके केंद्र के करीब सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं और ये सुनते हैं। आपका पत्र मिला, हेलो नजीबाबाद, जिंदगी लाइफ जीत तुम्हारे गीत तुम्हारे गपशप अड्डा सूरज के साथ साथ युवाणी किसानों के कार्यक्रम और आदि आबादी से बोल रहे होंगे प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है आज का गीत तुम्हारे प्रोग्राम सुना जो मनोज वर्मा जी ने पेश किया, बुलंद आवाज से दिल को छू गया, धन्यवाद आपका।
1: हमारे नियमित श्रोता हैं महबूब दुकानदार बेगम साहिबा महबूब और इनका पूरा परिवार जसपुर रोड धूलापुर जिला मुरादाबाद के हैं। वही कह रहे हैं कि करीब करीब हम कार्यक्रम सुनते हैं तो बहुत शुक्रिया, और इस बात को हम भी जानते हैं कि भाई हमारे कौन कौन से श्रोता हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और प्रतिक्रिया हमें भेजते हैं, इस चीज़ का इल्म हमें बखूबी है। फिलहाल आज का कार्यक्रम हमारा पेश किया हुआ आपको पसंद आया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आपका लिखा है कि शुभचिंतक, बिल्कुल साहब आप सब हमारे शुभचिंतक हैं और हम आप सभी के शुभचिंतक हैं, इसी तरीके से हम एक तारतम्य बनाकर रखें। और आपका एक बार फिर मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, इसी तरीके से आप लिखते रहिएगा, ये मैसेज आप लीजिएगा।
0: ये मैसेज हमें मिला है मोहल्ला हलवायान शेरकोट बिजनौर से।
1: अच्छा
0: लिखा है मोहम्मद वकार फरीदी ने, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया और हीना कौशल।
1: क्या कहते हैं?
0: ये कहते हैं आपको हमारा प्यार भरा सलाम पेश है, हम सब आपके रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद आते हैं। हमें 27 जून का गीत तुम्हारे जो श्वेता भट्ट और नेहा शर्मा जी ने पेश किया बहुत अच्छा लगा गीत।
1: अच्छा इसमें मैं एक बात यहीं आपको रोक के कहना चाह रहा हूँ कि हमारे नियमित श्रोता हैं हमारे मोहम्मद वकार और इनका पूरा परिवार। एक खास बात इनकी ये है कि ये तरतीब वार हमें लिखते हैं, यानी डेट वाइज हमें लिखते हैं और सभी के नाम लिखते हैं। और एक खास बात इनमें ये मिलती है जब भी हम इसको देखते हैं इन प्रोग्रामों को, कि बस ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो फिल्म संगीत कार्यक्रम है उनको पसंद करते हैं। और जितने भी हमारे साथियों ने इस हफ्ते में प्रोग्राम पेश किया उनके नाम इन्होंने लिखे हैं, तो मैं इसको SMS को यहीं ऑनलाइन एडिट करके पढ़ना चाह रहा हूं कि हम कुछ और भी मैसेज शामिल कर लें, है ना, और इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इन्होंने जो नाम लिखे हैं, युववाणी कार्यक्रम भी सुनते हैं वैसे, तो सिमरन कौर का नाम लिखा है, मरियम जैदी इनकी राइटिंग में है, इसके अलावा भाई निधि हैं, फैजुर रहमान हैं, लोकेंद्र हैं, हमारे साथी नेहा शर्मा हैं, जसवंत सिंह हैं, और इसके अलावा इन्होंने बस यहीं तक लिखे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि भाई प्रोग्राम बहुत ही अच्छे आपके चल रहे हैं। बस हम ये भी ये बात कहेंगे अपने इन श्रोताओं से, इसी तरीके से आप लिखते रहिए। और हाँ ये बात भी कहेंगे कि फिल्म संगीत के अलावा आप हमारे केंद्र से जो अन्य कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं उनका भी आप रसास्वादन करें और उनको भी आप लिखें। एक बार फिर आपका धन्यवाद। और ये मैं SMS जी आप पढ़िएगा।
0: ये SMS हमें मिला है
1: जी
0: मोहल्ला अफगान शेरकोट से।
1: जी
0: लिखने वाले हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत और आगे लिख रहे हैं कि आप लोग कैसे हैं, आज मैं बहुत दिनों बाद मैसेज लिख रहा हूँ, उम्मीद है पढ़ा जाएगा। वैसे तो आकाशवाणी में आज तक कोई प्रोग्राम नया शुरू नहीं किया और ना ही कोई प्रोग्राम की चेंजिंग हुई है। वैसे आपके यहाँ पर भी सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं। हेलो नजीबाबाद को हफ्ते में 2 बार जरूर कर दीजिएगा, आकाशवाणी की मेहरबानी रहेगी।
1: वो ये हमारे नियमित श्रोता हैं नदीम बाकी और इनका पूरा परिवार, ये कह रहे हैं कि साहब उम्मीद है कि पढ़ा जाएगा। तो भाई उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है। और देखिए मैसेज ये आ भी गया है, 12:21 पर इन्होंने हमें सेंड किया है और इसको हमने ले लिया है ना। और कार्यक्रम आपको अच्छे लग रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, ये इनकी तारीफ आप कर रहे हैं, तो एक बार फिर आपका धन्यवाद हम कहेंगे। और हेलो नजीबाबाद को 2 बार आप जरूर कर दीजिएगा। भाई इसको ऐसा क्यों चाहते हो 2 बार, एक बार में ही हमारे श्रोता बहुत सुन लेते हैं इसको, और फिर हमें प्रोग्राम हटाने की नौबत आ जाएगी, कौन से प्रोग्राम को हम हटाएंगे। उसके बाद हमारे श्रोता ये कहना शुरू कर देंगे कि साहब हमारा तो प्रोग्राम ये वाला हट गया। तो कहीं ना कहीं बस यही मैं ज़रूर कहूँगा कि जो मज़ा एक बार का होता है ना फ्रिक्वेंसी में, आप कर कितनी भी बार लो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम हमारे ऐसे हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑनलाइन, मीन कि आप इसमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। बस इतना कहेंगे कि आप इसी तरीके से कार्यक्रमों को सुनते रहिएगा और थोड़ी सी मजबूरी भी समझते रहिएगा। बाकी हमारे सभी श्रोता अपनी बात कहते हैं, तहे दिल से हम आभारी होते हैं, बहुत उनका स्वागत करते हैं। आपने अपनी बात रखी, हमने सुनी और जो हमें लगा हमने वो बोला। तो बस यही चाहते हैं कि भाई जब तक हम कोई बात कहेंगे नहीं तो जवाब हमें कैसे मिलेगा, कहना तो पड़ता है ना, एक सामंजस्य फिर होता है और सारे काम फिर सुचारू चलने पड़ते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस खत के लिए, ये मैसेज पढ़िएगा।
0: ये पत्र हमें मिला है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से, इसको लिखा है लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी और तमन्ना परवीन ने।
1: जी क्या लिखते हैं?
0: ये लिखते हैं, कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब। हमें नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। 27 तारीख को जिंदगी लाइव में
1: जो जो भी टॉपिक रहा है ना, उनको बहुत विचार और मैसेज अच्छे लगे। जी
0: आज सुबह गीत तुम्हारे कार्यक्रम मनोज वर्मा जी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया, पसंद आया, गीत बहुत अच्छे सुनाए गए।
1: धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारे नियमित श्रोता हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली के हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी और इनका पूरा परिवार। आपको 27 तारीख के सभी कार्यक्रम अच्छे लगे, आपको आज के मैसेज और आपके आज के जो गीत हमने आपको सुनवाए वो आपको पसंद आए, आपने बहुत बहुत शुक्रिया के हमें ये मैसेज किया, अपनी बात कही। यही चाहते हैं कि इसी तरीके से आप हम सभी को और हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों को सुनते रहिएगा। एक बार फिर आपका धन्यवाद, ये मैसेज आप लीजिए नसरीन जी।
0: ये मैसेज हमें मिला है,
1: जी जी ये ऊपर से आइएगा यहाँ से
0: जी
1: जी।
0: ये लिखते हैं मोहतरम जनाब मनोज वर्मा साहब, मोहतरमा
1: जैदी साहिबा साहब, आदाब सलाम जी,
0: आदाब सलाम। आज गीत तुम्हारे जनाब मनोज वर्मा साहब की प्रस्तुति काबिले तारीफ रही, हमें प्रोग्राम आपका पत्र मिला के तहत भी अपनी हाजिरी ये लगाते रहते हैं। अभी पिछले रविवार को भी आपने हमारे पत्र को शामिल किया था और हमारे पत्र की आपने काफ़ी तारीफ भी की थी, इंशाल्लाह आगे भी शामिल होते रहेंगे। हाशमी परिवार तो आपकी बेहतरीन गुफ्तगू और पेशकश का हमेशा ही कायम है। हमारी एक शिकायत है कि हेलो नजीबाबाद में लाख कोशिश के बाद भी हमारी कॉल नहीं लगती है। मनोज वर्मा साहब जी की शान में एक शेर अर्ज कर रहा
1: हूँ।
0: बुलंद होके तेरी और भी सदा आवाज निखरे, खुदा करे तेरी शोहरत में 4 चांद लगे।
1: क्या बात है, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। ये हमारे नियमित श्रोता हैं और बहुत गजब के हमारे श्रोता हैं, और उनका कहना है कि भाई कार्यक्रम सुनते हैं ये, तो इसके लिए तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। मुझे नाम नजर नहीं आ रहा इधर से, कहाँ है ये, हाशमी परिवार है ये, अगर
0: परिवार।
1: ये थोड़ा सा नाम लिख देते हैं ना तो भाई नाम पढ़ने में भी हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती, ढूंढ के लेके आए हम। बस वक्त तो मुझे नहीं है कि मैं आपके पूरे इस SMS का जवाब दे पाऊंगा, इतना ही कहूंगा कि आपका बहुत शुक्रिया और आप हमारे बहुत खूबसूरत श्रोताओं में से एक हैं, इसी तरीके से आप सुनते रहिएगा। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यानी आपका पत्र मिला संपन्न करने की मुझे और मेरे साथ मेरी साथी
0: नसरीन जैदी को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे अपने पत्रों के उत्तर पर आधारित कार्यक्रम आपका पत्र मिला। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी संडे। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं वर्ष 1992 में बनी हिंदी फिल्म दीवाना की कहानी।

0: فلمی سنڈے،
1: فلمی سنڈے،
0: فلمی سنڈے،
1: فلمی سنڈے۔
2: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्मी संडे में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी नसरीन जैदी। श्रोताओं, हम आपको लेकर चलेंगे हिंदी सिनेमा की ऐसी सुपरहिट फिल्म की दुनिया में जिसने प्रेम, त्याग, रोमांस और एक्शन का अनूठा संगम प्रस्तुत किया। श्रोताओं, वर्ष 1992 में प्रदर्शित हुई फिल्म दीवाना ने दर्शकों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी उसके गाने, डायलॉग्स और कहानी लोगों की जुबान पर हैं। इस फिल्म के निर्माता थे गुड्डू धनोआ और निर्देशक थे राज कंवर। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे ऋषि कपूर, दिव्या भारती और शाहरुख खान। श्रोताओं, ये वही फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान ने नायक के रूप में बॉलीवुड में अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। फिल्म के गानों की रचना समीर ने की थी और गीतों को संगीत दिया था महान संगीतकार नदीम श्रवण ने। गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था अलका याग्निक, कुमार सानू और साधना सरगम ने। फिल्म में मुख्य नायक ऋषि कपूर रवि के रोल में हैं और शाहरुख खान राजा का किरदार निभाते हैं। इन दोनों कलाकारों की प्रेमिका दिव्या भारती काजल के रोल में हैं। अमरीश पुरी धीरेन्द्र प्रताप रवि के सौतेले चाचा की भूमिका में दिखाई देते हैं। रवि की मां का रोल किया है सुषमा सेठ ने। दिलीप ताहिल रमाकांत सहाय के रोल में राजा के पिता बने हैं और रवि के खानदानी वकील आलोकनाथ शर्मा के रूप में हैं। तो आइए श्रोताओं, शुरू करते हैं प्रेम और समर्पण की इस खूबसूरत कहानी का सफर। इस फिल्म के शुरू होते ही एक शानदार हवेली में एंट्री होती है फिल्म के लीड कलाकार ऋषि कपूर यानी रवि की, जो एक राजकुमार होते हैं, लेकिन इन्हें गाने का बहुत शौक होता है। इसके बाद ये अपनी माँ लक्ष्मी देवी यानी सुषमा सेठ से मुलाकात करके अपने एक शो के लिए रवाना होने लगते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है इस फिल्म के विलन अमरीश पुरी यानी धीरेन्द्र प्रताप की, जो रिश्ते में रवि के सौतेले चाचा होते हैं। लेकिन इनके दिल में रवि के लिए इस कदर जहर भरा होता है कि एक नजर भरकर देख लें तो रवि का जीना मुहाल हो सकता है। और अब ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि धीरेन्द्र प्रताप रवि को विदा करने के बाद रवि की माँ से जाली सर्टिफिकेट पर दस्तखत करवाना शुरू कर देते हैं।
3: भाभी जी, आपने कुछ पेपर साइन करने हैं। ये है जंगलात के कागजात, जो माल हमने सप्लाई किया है उनकी डिटेल्स, और ये है कुछ नए टेंडर्स जो अभी पास हुए हैं।
4: आपने सब पढ़ लिया, देख लिया, अब बताइए दस्तखत कहाँ करने हैं।
3: लेकिन भाभी, एक बार पढ़ तो लीजिए।
5: हाँ ताई जी, पढ़ लिया कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि पापा जी सारी जायदाद अपने ही नाम करवा ले।
3: अगर मैंने ऐसा किया भी।
2: उधर दूसरी तरफ शो के लिए सुंदर नगर पहुंच जाता है रवि। वहां पर एंट्री होती है खूबसूरत अल्हड़ काजल दिव्या भारती की, जो कि रवि की बहुत जबरदस्त फैन होती है। शो में वो रवि को देखकर झूम उठती है जहां रवि गाना गा रहा होता है।

0: श्रोताओ, यहाँ से शुरू होती है रवि और काजल की प्रेम कहानी। शो के खत्म होने के बाद काजल रवि से उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए गेस्ट हाउस पर पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर वो सीढ़ियों से गिर जाती है। रवि उसकी खूबसूरती और उसकी अदाओं पर फिजा हो जाते हैं और उसे गोद में उठाकर उसके घर तक पहुंचाते हैं और शुरू होती हैं प्यार की मुलाकातें।
1: तुम मेरी एक तमन्ना हो काजल, मैं तुम्हारे कांपते होठों से अपना नाम सुनना चाहता हूँ, तुम्हारी महकती जुल्फों में सांस लेना चाहता हूँ और तुम्हारी इन काजल भरी आंखों में अपनी तस्वीर देखना चाहता हूँ।
2: बहुत तुम देखो ना, आंखों में आंसू आ गए।
1: ये आंसू नहीं, ये तो उसकी बूंदे हैं जो शबनम की तरह तुम्हारे गालों में चमक रही है। काजल, आई लव यू, आई लव यू काजल।
2: बहुत तुम देखो ना, आंखों में आंसू आ गए।
1: ये आंसू नहीं, ये तो उसकी बूंदे हैं जो शबनम की तरह तुम्हारे गालों में चमक रही है।

0: अचानक धीरेंद्र का बेटा नरेंद्र प्रताप यानी मोहिनीश बहल रवि पर हमला कर देता है। तभी यहाँ पर जबरदस्त फाइट होती है। नरेंद्र अपने बहुत सारे गुंडों को लेकर आता है, लेकिन रवि बारी बारी से सभी गुंडों को मार भगा देता है। इसी दौरान नरेंद्र रवि को गोली मार देता है। गोली लगने के बावजूद भी रवि नरेंद्र को मार डालता है, लेकिन इसी फाइट के दरमियान रवि पहाड़ के झरने में गिर जाता है और काजल रवि को झरने में गिरते हुए देखती रहती है। इतना सब देखने के बाद काजल को समझ आ जाता है कि रवि तो पहले से ही जख्मी हो गया था, इस झरने में गिरने के बाद उसका बच जाना नामुमकिन है। वो रोती पीटती अपने घर जाती है और अपनी सास को बताती है।
1: ये क्या हालत बना रखी है? रवि कहाँ है? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? कहाँ है रवि? बोल बच्चे, मैं पूछूं कहाँ है रवि? मार डाला, सबने मिलकर मार डाला। हाँ, तू होश में तो है? जानती है क्या कह रही है?
0: श्रोता, अब धीरेंद्र काजल और उसकी सास का जीना दूभर कर देता है। लक्ष्मी देवी का मुनीम उन्हें बॉम्बे उनके खानदानी वकील के पास पहुंचाने में मदद करता है। काजल रवि की याद में सिसक सिसक कर निढाल हो जाती है। मुंबई में लक्ष्मी देवी अपने खानदानी वकील शर्मा जी से मिलती है। शर्मा जी सारी बातें सुनने के बाद लक्ष्मी देवी का साथ देते हैं। इसके बाद जब काजल और लक्ष्मी देवी कोर्ट से वापस लौट रही होती हैं, तभी यहाँ एंट्री होती है दूसरे लीड रोल शाहरुख खान की यानी राजा सहाय की, जो कि मुंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन रमाकांत सहाय का बेटा है।

राजा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए अपनी बाइक को लक्ष्मी देवी और काजल, जो कि उस समय रोड क्रॉस कर रही होती हैं, उनसे टकरा जाता है। लक्ष्मी देवी को चोट लग जाती है। तब काजल गुस्से में आकर राजा को जोरदार थप्पड़ मार देती है। तब राजा काजल को यहाँ देखता है और देखता ही रह जाता है। वो काजल पर फिदा हो जाता है और उससे मोहब्बत करने लगता है और उसके सपनों में खोया रहता है।

0: वो काजल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन काजल राजा को इग्नोर करती रहती है और फिर एक दिन मंदिर में प्यार का इजहार कर देता है और कहता है कि अपने दिल की सच्चाई बताने के लिए इस मंदिर से ज़्यादा पवित्र स्थान कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए आप मेरे प्यार को स्वीकार कर लें। लेकिन गुस्से में आकर काजल राजा से अपने बारे में सब कुछ बताते हुए कहती है, अब राजा अपने पिता रमाकांत सहाय से कहता है कि मैं एक विधवा लड़की से शादी करना चाहता हूं क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। तब रमाकांत गुस्से में आकर अपने गुंडों से कहते हैं कि तुम लोग काजल को डरा धमका कर इस शहर से दूर निकाल दो, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। गुंडे काजल के घर जाकर तोड़ फोड़ मचाते हैं। वहाँ राजा पहुँच जाता है और उसे पता लग जाता है कि ये सब उसके पिता ने ही करवाया है। राजा लक्ष्मी देवी से कहता है,
1: मैं तुम्हारे घर की सारी खुशियां समेट कर उसकी जिंदगी आबाद करना चाहता हूँ, बस। मैंने प्यार किया है माँ, प्यार किया है मैंने।
0: तब लक्ष्मी देवी काजल को समझाती हैं।
2: जब भी मैं तुझे सफेद लिबास में देखती हूँ तो मुझे अपने को क्यों जा जाने का एहसास होता है। अगर मैं तिलकिल मर के जी रही हूँ तो तेरी खातिर, लेकिन मैं हमेशा तो तेरे साथ नहीं रहूंगी। आज ये लड़का आया है अपना सब कुछ छोड़कर, सारी दुनिया से बगावत करके तेरी दुनिया आबाद करने है।
0: इसके बाद राजा काजल की मांग में सिंदूर भर देता है और धीरे धीरे इनमें प्यार शुरू हो जाता है। श्रोताओं, यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जैसे जैसे राजा और काजल का प्यार आगे बढ़ रहा होता है, वैसे ही वैसे दूसरी तरफ फिर से फिल्म में एंट्री होती है रवि की। जख्मी हालत में रवि गाँव वालों को मिल गया था। उन लोगों ने उसका इलाज करके उसको ठीक कर दिया था। ठीक होने पर रवि अपनी हवेली वापस आता है। वहाँ उसे पता चलता है कि धीरेंद्र प्रताप ने उसकी माँ और काजल पर बहुत जुल्म किए। अब पता नहीं वो लोग कहाँ हैं, जिंदा भी हैं कि मर गए। उनको ढूंढते ढूंढते एक दिन वो गुंडों की गिरफ्त में आ जाता है। तभी तफाक से वहाँ राजा आ जाता है और उसे गुंडों से बचा लेता है और उसका इलाज कराता है। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है और एक दिन अपनी पत्नी की बर्थडे पर उसे अपने घर ले आता है। जैसे ही रवि अपनी माँ और काजल को राजा के यहाँ देखता है, रवि हैरान हो जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।

0: रवि चुप कर काजल से मिलता है। तब काजल कहती है,
1: इसमें कसूर किसका है बता सकते हो रवि? मेरा, तुम्हारा या किस्मत का? मैं तो एक बेजुबान कुड़िया की तरह हमेशा खामोश खड़ी रही। तुम मेरी जिंदगी में बाहर बनकर आए और मौत बनकर चले गए।
0: राजा भी ये सब कुछ अचानक से सुन लेता है और सब समझ जाता है। राजा रवि को रोकता है, रवि अपनी माँ को लेकर यहाँ से जाने लगता है। उधर दूसरी तरफ धीरेंद्र का जासूस ये पता लगा लेता है कि काजल और लक्ष्मी देवी कहाँ हैं। धीरेंद्र काजल का किडनैप करवा लेता है। रवि राजा को लेकर धीरेंद्र के अड्डे पर पहुँच जाता है। वहाँ धीरेंद्र काजल को छोड़ने की शर्त रखता है कि जायदाद के कागज पर दस्तखत कर दो, शायद तो तुम लोगों को हम जिंदा छोड़ सकते हैं। राजा मौका पाकर धीरेंद्र के गुंडों पर हमला कर देता है और रवि भी उसके साथ मिलकर गुंडों को मार भगा देते हैं। शानदार फाइट होती है। उसी दौरान रवि धीरेंद्र को शूट कर देता है और काजल, जिसके शरीर पर टाइम बॉम्ब बंधा होता है, रवि उसको डिसकनेक्ट कर देता है। उधर जख्मी हालत में धीरेंद्र काजल और रवि पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी रवि टाइम बॉम्ब को अपने हाथ में लेकर धीरेंद्र सहित बाहर कूद पड़ता है। एक धमाका होता है। रवि अपनी जान काजल और राजा के प्यार पर कुर्बान कर देता है। इसके बाद राजा काजल और रवि की माँ को साथ लेकर अपने घर लौट आता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। श्रोता, ये फिल्म हमें सिखाती है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम विश्वास, समर्पण और त्याग की नींव पर खड़ा होता है। श्रोता, प्रेम, त्याग और समर्पण की इस खूबसूरत कहानी के साथ आज का हमारा ये विशेष अंक यहीं पर समाप्त होता है। फिल्म दीवाना आज भी अपने मधुर गीतों, दमदार अभिनय, भावनात्मक कहानी के लिए दर्शकों के दिलों में जीवित है। इसी के साथ मैं नसरीन सैदी आपसे इजाज़त लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।

0: अभी हमारी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम ग्रह लक्ष्मी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजने को है, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशेल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष टी20 क्रिकेट मैच

0: आज के साथ हवाबाजी के शोबे में एक अहम पेश रफ्त हासिल की है। आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में इस तरह के मजीद 40 तैयारे बनाए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इससे बहुत छोटे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों MSME और एरोस्पेस सेक्टर को फरोग मिल रहा है, रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के अज़्म को तकवीयत मिल रही है।
1: इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: वजीर आजम ने बैनुल अक्वामी योगा डे पर तबादले ख्याल किया, जिसे दुनिया भर में मनाया जा रहा था। इस साल ये तकरीब 2500 से ज्यादा मकामात पर हुई। हिंदुस्तान में योगा डे में लाखों लोगों ने शिरकत की। वजीर आजम ने कहा कि कौमी तामीर में अवाम की शिरकत हिंदुस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी अपील के जवाब में मगरबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के पेश नजर बाज मकामात पर शहरियों ने यकजहती का मुजाहरा किया और सोने की खरीदारी और गैर मुल्की सफर को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया। जनाब योगी ने शहरियों पर जोर दिया कि वो जरई जमीन को केमिकल से दूर रखें और कुदरती खादों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज्यादा से ज्यादा जमीन पर काश्त करें। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत मुल्क भर में लाखों खानदानों को हादसाती बीमा फराहम कर रही है।
1: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपए के सालाना प्रीमियम उस पर 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को 3,700 रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को सहायता मिल चुकी है।
0: वजीर आजम ने कहा कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत इसके लोग हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में की जाने वाली छोटी छोटी कोशिशें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। बराहे करम मुझे अपने इर्द गिर्द होने वाली कोशिशों के बारे में लिखते रहें। वजीर आजम ने लोगों से बारिश के पानी की हर बूंद को बचाने और कैच द रेन मुहिम को फरोग देने की अपील भी की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज हाथरस और आगरा के दौरे पर हैं। वजीर आला सबसे पहले हाथरस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सलेमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। जनाब योगी वहां एक जलसे आम से खिताब भी कर रहे हैं। हाथरस का दौरा करने के बाद वजीर आला आगरा पहुंचेंगे, जहां वो कमिश्नर ऑडिटोरियम में आगरा डिवीजन के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के कामों से मुतालिक मीटिंग करेंगे। इसके अलावा वजीर आला जिलेई तरक्याती कामों और अमन व अमान का भी तफसीली जायजा लेंगे। आगरा से वापसी पर वजीर आला शाम को लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की जायजा मीटिंग करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल 2478 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा, जिसमें गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अथॉरिटी की नई तामीरशुदा मरकजी इंतजामी इमारत भी शामिल है। उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इलाके में 2 बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का भी संगे बुनियाद रखा। मरकजी वजीर बराए रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव और मरकजी वजीर बराए माहौलियात जंगलात और मौसमियाती तब्दीली भूपेंद्र यादव भी वजीर आला के साथ इस तकरीब में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के नए वजीर आला ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में श्री सत साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुनक़िद रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ब्रजेश पाठक ने मशाल रोशन करके और कौमी इतिहाद का पैगाम देते हुए तकरीब का आगाज किया। उन्होंने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि सत्य साई बाबा की तालीमात इंसानी खिदमत इतिहाद और मोहब्बत पर मबनी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों की तस्दीक कर दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खजांची स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने कल इस मामले पर एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर आइंदा इजलास में गौर किया जाएगा। उन्होंने यह भी यकीन दिलाया कि अतिया की गई चांदी की ईंटों और जेवरात के मुकम्मल अकाउंट्स दस्तयाब हैं। कौमी पल्स पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई। रियासत के तमाम अजला के बूथों पर 0 से 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक डोर टू डोर मुहिम चलाई जाएगी। और आज सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश ने गोरखपुर समेत पूर्व

0: अंचल के कई इलाकों में मौसम खुशगवार बना दिया। संभल में भी आज सुबह तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने अगले चंद घंटों के दौरान रियासत के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारे नन्हे श्रोता सुनेंगे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका।

0: जय हिंद प्यारे बच्चों, हर बार की तरह मनोरंजन व ज्ञान से भरा पिटारा लेकर आज के बाल वाटिका कार्यक्रम में आपके साथ हैं आपकी अपनी दीदी अर्चना। हाँ तो हमारे सभी बाल श्रोताओं को दीदी का ढेर सारा प्यार और शुभाशीष। प्यारे बच्चों, किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते, तूफानों से जो डरे मंजिल कभी पाया नहीं करते। बिल्कुल बच्चों, यदि आपको अपना लक्ष्य या मंजिल हासिल करनी है तो कभी मुश्किलों से आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपना संघर्ष प्रयास जारी रखना है, तभी तो आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं और पा सकते हैं अपनी उम्मीदों का जहान। प्यारे बच्चों, संघर्षपूर्ण जीवन जहां आपको हर परिस्थितियों से लड़ने का साहस प्रदान करता है, वहीं आपके व्यक्तित्व को भी निखारता है। बच्चों जानते हैं, जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत व संघर्षपूर्ण जीवन ही रहा है। संघर्ष ही प्रकृति का नियम है। जो इस बात को समझ जाता है बच्चों, वो निश्चित ही सफल होता है। वास्तव में सफलता की हर कहानी एक असफलता की कहानी भी है, और जो व्यक्ति असफलता को चुनौती समझकर स्वीकार करता है वो असफलता पर विजय प्राप्त कर लक्ष्य व मंजिल को पाकर अपार प्रसन्नता को प्राप्त करता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, निरंतर प्रयास व कोशिशें आपको करते रहना है। कहा भी गया है, तूफानों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वास्तव में बच्चों, जब आपका प्रयास सच्चा होगा तो सफलता स्वयं आपके कदम चूमेगी और जीवन में आपको अपार प्रशंसा, सम्मान और खुशियां मिलेंगी। हाँ तो प्यारे बच्चों, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आप भी निरंतर आगे बढ़े कि मेहनत की राह पर जो चलता है वही सफलता की मंजिल को पाता है। हर दिन नया प्रयास करो, जीवन में सम्मान खुशियां प्राप्त करो। हाँ तो प्यारे बच्चों, बात जब निरंतर प्रयास कोशिशों की चली पड़ी है तो इसी बात पर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रोचक प्रेरणादायक कहानी। प्यारे बच्चों, ये कहानी ईमानदार सीधे साधे ऐसे नवयुवक की है जो जूते चप्पल जोड़ने का कार्य करता है और जिसे सब अपशकुनी कहकर धिक्कारते हैं, लेकिन उसने अपनी सादगी, ईमानदारी और मेहनत के बल पर सबका दिल जीत लिया। हाँ तो ये प्रेरणादायक कहानी, जिसका शीर्षक है बदलती किस्मत, का नाट्य रूपांतरण लेकर हाजिर हैं। इसमें प्रतिभागी कलाकार हैं सुवेंद्र सिंह, कुमुद, नंदिनी, राशि, दिव्यांशु, दिव्यम, सोहन, पार्थ और अर्चना त्यागी। निर्देशन रहा है अंकित सैनी का और प्रस्तुतकर्ता हैं शोभित शर्मा। तो आइए आनंद लेते हैं इस लघु नाटिका को सुनने का। तारागढ़ राज्य में भगत नाम का राजा बहुत ही न्यायप्रिय व क्षमाशील था और उसी राज्य के गांव में रहता था विनय नाम का भोला भाला नवयुवक, जो कि जूते चप्पल जोड़ने का कार्य करता था और उसके परिवार के नाम पर सिर्फ उसकी माँ थी।
1: माँ, माँ, अरे माँ, वो मेरा औजारों वाला थैला किधर रखा है? माँ, मुझे काम पर जाना है।
2: देख बेटा, यहीं कहीं रखा होगा।
1: हाँ माँ, हाँ, मिल गया मिल गया। अच्छा चलता हूँ माँ, मैं शाम को आऊंगा, अपना ख्याल रखना माँ।
2: ठीक है बेटा। आज थोड़े से ज्यादा पैसे कमा कर लाना बेटा, मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है। मुझे दवा की सख्त जरूरत है बेटा।
1: हाँ माँ, आज वैद्य जी के पास जाकर औषधियाँ ले आऊंगा, आप फिक्र मत करो माँ।
2: ठीक है बेटा, मैं इंतजार करूंगी, जल्दी आना।
0: ये कहकर विनय घर से निकल पड़ता है और अपनी दुकान सजाकर बैठ जाता है।
1: देखते हैं आज कितने ग्राहक आते हैं। माँ से कह तो दिया, लेकिन मेरा काम तो आजकल बिल्कुल भी चल नहीं रहा। ऐसा लगता है कि लोगों ने जूते चप्पल की मरम्मत कराना ही बंद कर दिया है।
0: विनय का सोचना सही था। इसका उदाहरण उसे तभी मिल गया जब एक आदमी की चप्पल उसके ही सामने टूटी।
3: अरे ये क्या, मेरी चप्पल टूट गई, अब मैं क्या करूं?
1: अरे बाबूजी, मुझे लाइए, मैं दो मिनट में सही कर दूंगा, लाइए दिखाओ।
3: अरे नहीं नहीं भाई, सामने मुखिया की दुकान है, नई चप्पल ले लूंगा।
1: अरे लेकिन क्यों बाबूजी, एक मिनट का काम है, अभी जोड़ देता हूँ।
3: अरे भाई ऐसी बात नहीं है, जमाना बदल गया है। मरम्मत करी हुई जूते चप्पल पहनने वाले लोगों को लोग गरीब समझते हैं और तिरछी नजरों से देखते हैं, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। रहने दो भाई, कह तो दिया नहीं करवानी ना।
0: वो आदमी ये कहकर दुकान से आगे बढ़ गया और विनय हाथ मलता रह गया।
1: हे भगवान, मैं क्या करूं, अब तो एक ग्राहक भी मिलना मुश्किल हो गया है। गरीबों का तो बस भगवान ही मालिक है।
0: ग्राहक का इंतजार करते करते सूरज ढल गया। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आया जिसने अपनी चप्पल जुड़वाई और एक छोटे बालक ने अपना जूता।
1: हे भगवान, इतना बड़ा दिन और जेब में कुल 2 सिक्के, इससे तो सिर्फ माँ की दवाई ही आ पाएगी, अब खाने का क्या करेंगे।
0: विनय ने वैद्य से माँ की दवाई ली और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके हर कदम भारी हो चुके थे, जैसे उसका हर कदम उसकी बेबसी की गवाही दे रहा हो।
1: माँ, माँ।
2: हाँ बेटा।
1: माँ बहुत भूख लगी है, घर में कुछ खाने को है, जल्दी लाओ।
2: बेटा घर में कुछ होता तो बात ही क्या थी, नहीं लाया क्या कुछ भी आज भी।
0: तभी सामने से पड़ोसी रतन आता है।
4: अरे क्या हो रहा है यहाँ?
1: अरे भैया कुछ बचा हुआ खाना मिल जाए तो।
4: अरे महाराज, अब खाने के लिए भी पड़ोसियों पर निर्भर हो? लो यही देने आया था, वैसे भी फेंकने वाली थी वो।
2: रतन बेटा ऐसा मत बोलो।
4: अरे जो सच है वो बोला है, ऐसा क्या बोल दिया, ये लो।
0: विनय उस रात खाना खाकर चुपचाप सो गया। आंखें बंद थीं, पर दिमाग में रतन की आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह बाजार में हलचल थी, एक जगह लोगों का जमकट लगा हुआ था। विनय भी भीड़ में घुस गया।
5: अरे सुनो मेरे प्यारे गांव वालों, शहर से लाया हूँ ये जादुई यंत्र, इसमें जूता डालो और देखो इसका कमाल, 2 मिनट में नया बनकर बाहर आएगा। हाँ भैया, अब कोई जूते की मरम्मत वाला नहीं चाहिए।
3: अरे वाह, ये तो कमाल है भैया, इसका मतलब अब जूते जुड़वाने वालों के पास जाने की जरूरत ही नहीं है।
0: ये सुन विनय के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई, उसकी आंखें नम हो गईं। वो सीधा मुखिया के पास गया।
1: अरे मुखिया जी, आपने ऐसा क्यों किया, मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया मुखिया जी।
5: अरे धंधा, कौन सा धंधा? वही जिसे करके तुम बहुत अमीर हो गए, वही नोटों की बारिश होती है तुम पर। वही वाला? अरे पहले भी कंगाल थे और अब भी रहोगे, चलो हटो यहाँ से।
0: विनय भारी मन से घर पहुँचा।
2: क्या हुआ बेटा, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है और इतनी जल्दी घर लौट के कैसे आ गया?
1: माँ मेरा काम खत्म हो गया, माँ कोई जूता सिलवाएगा ही नहीं, अब सब खत्म हो गया माँ।
2: हैं, ये क्या कह रहा है बेटा, ऐसा क्यों?
1: माँ क्या बताऊँ, मुखिया ऐसा यंत्र ले आया जिसमें पुराना जूता डालते ही बाहर नया जूता निकलता है।
2: ये क्या कह रहा है बेटा, अब क्या होगा, भला मुखिया को ऐसा यंत्र लाने की क्या जरूरत थी।
0: तभी दरवाजे पर फिर वही पड़ोसी रतन आ गया मजाक उड़ाते हुए।
4: अरे माँ जी, सुना है तुम्हारा बेटा जिस काम पर लगा था वो काम ही दुनिया से खत्म हो गया। अरे ऐसा अब शकुनी है कि खुद का धंधा ही डूब गया।
1: अरे भैया मजाक तो मत उड़ाओ,
2: भगवान जाने ऐसा क्यों हो रहा है।
0: वो रात बहुत भारी थी, रामकली सो नहीं पाई। विनय भी छत पर टकटकी लगाए लेटा रहा। अगली सुबह विनय की बहन सरला और उसका पति गौरव आए। घर में कदम रख ही रहे थे कि दहलीज पर रखे विनय के औजारों में से एक टांका लगाने की सुई गौरव के पैर में चुभ गई।
6: अरे ये क्या, उफ, मैं मरा, क्या हो गया यो?
7: हे भगवान, घर में कदम रखते ही मेरे पति के चोट लग गई। चलिए जी, मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी।
1: अरे दीदी रुक जाओ, अरे दीदी मेरी गलती नहीं है इसमें, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो दीदी?
7: दूर रह, मैं चलती हूँ।
8: तेरी वजह से मेरी बेटी भी घर से चली गई, दामाद को चोट लग गई, न कमाने का न धमाने का, चला जाए यहाँ से। जब काम ही नहीं रहा तो ये सामान क्यों फैला रखा, ये कबाड़ फेंका क्यों ना यहाँ से, दूर हो जाए मेरी नजरों से।
0: विनय अब पूरी तरह से टूट चुका था, उदास मन से वो घर से निकल जंगल के एक पुराने कुएं के पास बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगा।
1: हे भगवान, सब छीन लिया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। मुझे क्यों बनाया आपने भगवान, मेरा भाग्य क्यों आपने ऐसा बनाया।
0: तभी उस पुराने कुएं से अजीब सी आवाज आई।
1: है? कोई है इसमें? अरे हाँ, अरे मैं गिरा, हाय रे, मैं तो कुएं में गिर गया, मरा क्यों नहीं मैं, यहाँ इतने ऊपर से गिर के मैं बच गया। मेरी कमर, अरे इससे तो दम निकल जाता, अरे पीछा तो छूट जाता है जिंदगी से, आपके तो बाहर निकलू रे।
0: तभी पानी में टर टर की आवाज हुई और हरे रंग का मेंढक जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी।
1: अरे मेंढक, तू भी मुझे चिढ़ाने आया है ना, चिढ़ा ले, मार दे बस मुझे, खा ले मुझे, जो करना है कर ले, तू भी चिढ़ा ले मुझे।
9: शांत हो जाओ मनुष्य, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी।
1: है बोलने वाला मेंढक, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा।
9: सुनो, सच में मैं एक परी हूँ, शापित परी। एक दुष्ट राक्षस ने मुझे मेंढक बना दिया क्योंकि मैं उसकी जादुई किताब चुराते हुए पकड़ी गई और उसके जाल में मैं फंस गई। उस दुष्ट ने मुझे मेंढक बनाकर इस कुएं में डाल दिया। बचने का तरीका सिर्फ एक था कि कोई इंसान मुझे छुएगा, तब मैं अपने असली रूप में लौट पाऊंगी।
1: अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेंढक।
9: बस तुम मुझे छू लो।
1: क्या, मैं तुम्हें छू लूं? अच्छा, ये लो, मैंने तुम्हें छू लिया।
0: विनय के छूते ही चमकदार रोशनी निकली, मेंढक गायब हो गया और उसकी जगह एक सुंदर परी प्रकट हो गई।
9: मैं मुक्त हो गई, तुमने कई सालों पुरानी कैद तोड़ दी। चलो विनय, हम इस कुएं से बाहर चलते हैं। अब बताओ, तुम अपनी किस्मत को क्यों कोस रहे थे?
1: क्या बताऊं देवी, मेरी माँ बीमार है और मेरे पास कोई काम नहीं है। लोग मुझे अपशकुनी कहते हैं, पड़ोसी ताने देते हैं और बहन भी अपशकुनी कहकर घर से निकल गई, और तो और मेरा धंधा काम सब बुरी तरह से खत्म हो गए।
9: तुमने मुझे आजाद किया है, तुम्हारे लिए विनय मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, एक महल जिसमें तुम अपनी माँ को लेकर आराम से रह सकते हो या बहुत सारा धन?
1: नहीं नहीं परी, मुझे महल नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि अपनी माँ का इलाज अच्छे से करा सकूँ, अपना काम फिर से कर सकूँ, मेरी कला ही मेरा सहारा है।
9: वाकई तुम बड़े ईमानदार हो, भला ऐसा कौन इंसान मिलता है जो महल को ठुकरा दे। सच में बहुत प्यारे और बहुत सच्चे हो विनय तुम।
0: परी ने अपनी चमकदार छड़ी घुमाई और बोली,
9: सुनो विनय, आज से तुम जो भी चप्पल या जूता छूओगे वो पल भर में ठीक हो जाएगा या नया हो जाएगा। तुम्हारी कला अब पूरी दुनिया में सबसे अनोखी होगी।
1: लेकिन गाँव में तो ग्राहक ही नहीं बचे, मैं किस पर अपनी कला दिखाऊंगा?
9: फिक्र बिल्कुल मत करो, जो जादू मैंने तुम पर किया है अब कोई कमी नहीं होगी। हाँ सुनो, तुम्हें एक ग्राहक मिलेगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा।
1: अच्छा ऐसा है, तो अब मैं चलता हूँ, माँ को बताऊंगा, वो तो बहुत खुश होगी। माँ, अरे माँ, मुझे कुएं में एक परी मिली और उसने कहा कि मेरी किस्मत अब बदल जाएगी, मेरा काम फिर से अच्छे से चल पड़ेगा।
8: काम जाने चलेगा कि ना, हाँ तेरा दिमाग जरूर चल गया है। क्या कहा, कुएं में परी, जादू, जाने कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अरे मुझे तो ऐसा लगे भूख ने तुझे पागल बना दिया है बेटा, और कुछ ना बदलने वाला, अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है।
1: माँ मुझ पर भरोसा करो, सब बदलेगा, देखना तुम।
8: अरे बेटा मेरी तबीयत देख।
0: सुबह सुबह जल्दी उठकर अपना सारा सामान समेटा और बाजार जा पहुँचा। बाजार में खड़े लोग,
4: अरे अब कोई नहीं आएगा तुम्हारी दुकान पर।
5: रहने दो भाई, यंत्र है ना मुखिया जी का।
0: विनय को परी की बात याद थी कि कोई ग्राहक आएगा और सब बदल देगा, और तभी एक थका हुआ, पैर घसीटता हुआ एक अजनबी मुसाफिर विनय की दुकान पर पहुंचता है।
3: भाई जूता फट गया है, ठीक कर दोगे क्या?
1: हाँ हाँ बिल्कुल कर दूंगा, लाओ दिखाओ।
3: अरे वाह, ये कैसे किया तुमने, ये लो तुम्हारे काम की कीमत, तुम तो बड़े कमाल के आदमी निकले।
1: परी ने कहा था कि वो ग्राहक मेरी किस्मत बदल देगा, ये तो साधारण व्यक्ति था, शायद अब अगला कोई आएगा।
0: इधर विनय इंतजार कर रहा था और उधर राजमहल में हड़कंप मचा हुआ था। राजकुमारी चंद्रमुखी का गुस्सा सातवें आसमान पर था।
10: ये क्या, ये कैसे टूट गई? ये चप्पल मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, इसे ठीक करो अभी के अभी।
11: शांत हो जाओ बेटी, कोई उपाय अवश्य होगा।
0: राजा परेशान हो गए। उन्होंने ऐलान करने का आदेश देते हुए कहा,
12: सुनो, जो भी व्यक्ति मेरी पुत्री की शीशे की चप्पल जोड़ देगा उसको हम मुंह मांगी कीमत देंगे। समूचे राज्य में ये घोषणा कर दी जाए।
5: सुनो सुनो सुनो, जो भी व्यक्ति राजकुमारी की टूटी शीशे की चप्पल जोड़ेगा उसको राजा की तरफ से मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा।
1: इनाम मिलेगा? हाँ, मैं भी जाऊंगा, अब वक्त आ गया है किस्मत बदलने का।
0: राजमहल में चारों ओर अफरा तफरी मची थी। राजकुमारी चंद्रमुखी की टूटी हुई शीशे की चप्पल सामने रखी थी। एक के बाद एक कारीगर उस पर झुक झुक कर अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन हर बार वही नतीजा, कोई भी कामयाब नहीं हो पा रहा था।
13: महाराज, शीशा जुड़ ही नहीं रहा, बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं जुड़ता।
12: अरे कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए तो।
13: क्षमा कीजिए राजकुमारी, ये नहीं जुड़ेगा।
0: राजकुमारी का गुस्से से चेहरा लाल हो रहा था, वो असफलता के साथ और ज्यादा भड़क रही थी।
10: नहीं जुड़ेगा? ऐसे कैसे नहीं जुड़ेगा? अरे कोई तो होगा इस राज्य में जो इसे जोड़ सके। ये मेरी माँ की अंतिम निशानी है, मुझे इसे जुड़ा हुआ देखना है।
12: धैर्य रखो बेटी, अभी और लोग भी आएंगे।
0: बाहर भीड़ में अंदर आने की गुहार लगाता विनय।
1: अरे भैया मुझे अंदर जाने दो।
0: विनय ने धीरे से टूटी हुई चप्पल उठाई, उसका हाथ लगाते ही चप्पल पल भर में वैसी हो गई जैसी पहले थी।
14: अरे अरे अरे, ये कैसे हुआ भाई?
12: भाई ये क्या हो गया?
14: हे ईश्वर, ये तो चमत्कार हो गया।
12: हाँ चमत्कार हो गया।
10: ये तो चमत्कार है, बिल्कुल नई जैसी हो गई मेरी चप्पल।
12: पुत्र बताओ तुम्हें क्या चाहिए, स्वर्ण हीरे मोती महल?
1: महाराज मुझे तो केवल मेरा पारिश्रमिक चाहिए, मैं इन चीजों का क्या करूँगा, बस आप मुझे मेरा मेहनताना दे दीजिए।
12: तुम्हारी सादगी ने बेटा मेरा मन मोह लिया, आज से हमारे अधीन जो छोटा सा राज्य है वो मैं तुम्हें सौंपता हूँ।
1: महाराज ये मैं कैसे स्वीकार करूँ, मैं इस लायक नहीं, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ महाराज, मैं राजपाट का क्या करूँगा।
10: विनय, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी ईमानदारी, विनम्र, तुम जैसा मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ।
1: राजकुमारी ये तो बहुत बड़ा निर्णय है, मैं पहले अपनी माँ से पूछूंगा, आप क्रोधित मत होना।
0: तभी दरवाजे पर विनय की माँ रामकली आ गई। उन्होंने हाँ कहकर अपनी स्वीकृति दे दी, लेकिन तभी वहाँ राजपुरोहित जी की भारी आवाज गूंज उठी।
15: मैं इस विवाह पर आपत्ति व्यक्त करता हूँ महाराज।
12: पर क्यों?
16: एक साधारण सा गांव का व्यक्ति एक राजकुमारी का वर कैसे बन सकता है महाराज?
15: मैं प्रजा की तरफ से पूछ रहा हूँ, क्या ये युवक राजमार्ग, राजनीति और न्याय की बारीकियों को जानता है?
12: बात तो तर्क की है, पर इसका फैसला अभी हो जाएगा पुरोहित। विनय से अभी राज्य और राजनीति से संबंधित प्रश्न कीजिए और विनय तुम इन प्रश्नों के उत्तर दो।
15: ठीक है महाराज। मेरा पहला प्रश्न, यदि राज्य के खजाने में अकाल के समय धन कम पड़ जाए और तुम्हें ये तय करना हो कि पहले सैनिकों का वेतन दिया जाए या भूखी प्रजा को अन्न, तो तुम किसे प्राथमिकता दोगे?
1: प्रजा को, क्योंकि सैनिक उसी प्रजा के बेटे हैं। जिस राज्य की जनता भूखी रहे वहाँ सैनिक भी ढाल और तलवार उठाने के लायक नहीं रहते।
15: ठीक है, मेरा दूसरा प्रश्न, यदि तुम्हारे सामने दो दोषी खड़े हों, एक अमीर जिसने चोरी की हो और एक निर्धन जिसने भूख में चोरी की हो, तो दोनों का दंड क्या होगा?
1: दोनों चोर हैं, दोनों को बराबर दंड मिलना चाहिए, परंतु ये बात ध्यान रहे कि अमीर की चोरी लोभ है और निर्धन की चोरी उसकी आवश्यकता है।
15: बिल्कुल सही। मेरा तीसरा प्रश्न, अगर तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा राज्य एक साथ संकट में पड़ जाए और तुम्हें एक का ही चयन करना हो, तो तुम सबसे पहले किसे बचाओगे, बताओ?
1: मेरे लिए मेरा राज्य पहले होगा, क्योंकि मेरी माँ मुझे जन्म देने वाली सदैव चाहेगी कि मैं सही करूँ और राजकुमारी के साथ मेरा जीवन बिताने वाली मेरे कर्तव्य को समझेगी कि राजा का धर्म सबसे बड़ा है, राजा पर पहला हक उसकी प्रजा का होता है।
15: बहुत सुंदर महाराज, अब मेरे पास कोई प्रश्न शेष नहीं, ये युवक सच में राजकाज के योग्य है, मैं अपनी आपत्ति वापस लेता हूँ।
0: पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमारी मुस्कुराई, विनय ने झुककर माँ और राजा के पैर छुए। धूमधाम से विनय और चंद्रमुखी का विवाह हुआ। रामकली को राजमाता का सम्मान मिला और विनय जो कल तक अपशकुनी कहा जाता था, पूरे राज्य तारागढ़ का राजा बन गया। हाँ तो बच्चों जाना आपने कि अपशकुनी कोई नहीं होता, कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों से महान बनता है। समाज में कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं होता। कब किसकी किस्मत बदल जाए, इसलिए सबकी इज्जत करो, मेहनत करो और ईमानदार बनो। इसी में जीवन का सच्चा सुख है। बच्चों अभी आप बदलती किस्मत इस लघु नाटिका को सुनने का आनंद ले रहे थे, जिसमें प्रतिभागी कलाकार रहे हैं सुवेंद्र सिंह, कुमुद, नंदिनी, राशि, दिव्यांशु, दिव्यम, सोहन, पार्थ और अर्चना त्यागी। निर्देशन रहा है अंकित सैनी का और प्रस्तुतकर्ता शोभित शर्मा। प्यारे बच्चों, जहां हमारा ये कार्यक्रम आपको नई नई सीखों से और ज्ञानवर्धक बातों से अवगत कराता है, वहीं कई महत्वपूर्ण जानकारियां देकर आपके ज्ञान में वृद्धि भी करता है। हाँ तो इसी क्रम में हम बात करते हैं 29 जून को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में, जो भारत के महान सांख्यिकीविद प्रशांत चंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बच्चों, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों में सांख्यिकी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और देश के विकास में आंकड़ों की भूमिका को समझाना है, जिससे कि बेहतर योजनाएं बनाने और प्रभावी निर्णय लेने में सहायता मिल सके। हाँ तो बच्चों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। बच्चों, ज्ञानवर्धक बातचीत के इसी क्रम में सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: चंदन का एहसास।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: बच्चों, अभी आप सुन रहे थे कुछ जरूरी संदेश और अब सुनते हैं एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पीएमआरबीपी के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकती हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
4: बच्चों, ज्ञानवर्धक बातचीत को अभी आप सुनी रहे थे। तो इसी क्रम में 30 जून को मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण विश्व सोशल मीडिया दिवस की भी बात कर लें कि जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग के प्रति जागरूक करना और ये बताना है कि डिजिटल माध्यम किस प्रकार लोगों, समाज और देशों को एक दूसरे से जोड़ता है। बच्चों, ये थी आज की कुछ ज्ञानवर्धक और सीख प्रदान करने वाली बातें और अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

इसी के साथ प्यारे बच्चों, हमारा आज का ये बाल वाटिका कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें प्रतिक्रिया भेजने के लिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने विचार, सुझाव, प्रशंसा या कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर SMS या मैसेजेस भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही यदि कोई स्वरचित कहानी, कविता लिख भेजना चाहते हैं तो लिख भेजें इस पते पर, कार्यक्रम बाल वाटिका द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 2 4 6 7 6 3। हाँ तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में नई उम्मीद, विश्वास और नई ऊर्जा के साथ। तो चलते चलते आप सभी को आपकी दीदी अर्चना का जय हिंद।

अभी हमारे बाल श्रोता सुन रहे थे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो

हर्ट्ज पर। दिन के 1:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक धारा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के स्वर में हरियाणवी लोकगीत।

श्रोतो, इस समय आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकधारा, और उसमें हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के स्वर में हरियाणवी लोकगीत। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

इसी हरियाणवी लोकगीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम लोक धारा अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने को है। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे, पहले अंग्रेजी में, उसके बाद हिंदी में।

0: increasingly secure and self-reliant from seas to the skies, with focus on indigenous defense production, highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in their final Group A match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई. C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है. आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है.
0: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agrav were inducted into the Indian Navy fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया. इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है. इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है. इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है.
0: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें. लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें. लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी. किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
0: Mr. Modi also cited the example of the Pechkar family in Nandere, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है. उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है. ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है. इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है.
0: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has

0: ceasefire effectively collapsed, with both sides launching fresh military strikes over the past several hours. The United States said it carried out airstrikes against 10 Iranian military targets near the Strait of Hormuz after accusing Tehran of attacking a commercial oil tanker with a drone. U.S. President Donald Trump warned that further violations could trigger a much broader military response. Iran responded within hours with missile and drone attacks targeting American military facilities in Kuwait and Bahrain. More from our correspondent.
1: The latest exchange marks the most serious collapse of the interim ceasefire agreed earlier this month between Washington and Tehran. The United States Central Command says it carried out strikes on multiple targets inside Iran in response to continued attacks on commercial shipping. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps says it retaliated by launching missiles and drones targeting U.S. military infrastructure in Kuwait and Bahrain. Following the exchange, both Washington and Tehran accused each other of violating the ceasefire. In a statement, United States Central Command said Iran had been given an opportunity to uphold the ceasefire, but instead launched a one-way attack drone that struck Panama-flagged oil tanker MT Kiku. Iran's foreign ministry, meanwhile, said it had carried out strikes against targets linked to American forces, blaming it as a treaty-breaking United States regime for renewed escalation. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
0: Indian assistance sent under Operation Amistad has reached Venezuela. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar expressed confidence that the field hospital unit, relief supplies, medicines and medical equipment will bolster ongoing post-earthquake relief efforts in the country. On to sports now. Kidambi Srikanth has advanced to the men's singles final of the U.S. Open Badminton Championships at the Titan Gym in California today. Srikanth defeated Japan's Yudai Okimoto in a hard-fought semi-final. He will next face Su Li Yang of Chinese Taipei in the final. In ICC Women's T20 World Cup, India will take on Australia in the final Group A match at Lord's Cricket Ground in London today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. In men's cricket, India will take on host Ireland in the second and final T20 International of the two-match series in Belfast today. The match is scheduled to begin at 6 p.m. Indian Standard Time. In FIFA World Cup, Argentina star Lionel Messi has become the first player in history to score in 7 consecutive World Cup games. The 39-year-old scored with a free kick after coming off the bench as Argentina won 3-1 against Jordan. It was Messi's 6th goal of the 2026 World Cup and he leads the Golden Boot race by 2 goals. Lo Celso and Lautaro Martinez scored the other 2 goals for Argentina as they finished their Group J campaign with 3 wins from 3. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies, with focus on indigenous defense production. Highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft made in India. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asked Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorated sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in the final Group A match in London today. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है. उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया. आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया. भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
3: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
3: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
2: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
3: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
2: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
3: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
3: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
3: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया। समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
2: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
3: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
3: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
2: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
3: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
2: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
3: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
2: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
3: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
2: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
4: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
2: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हो रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक। कार्यक्रम एक और अनेक में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज मैं हूं आपकी दोस्त नसरीन सैदी और अगले कुछ ही मिनटों तक हम करेंगे सफर हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार के साथ जिन्होंने अपनी अलग ही पहचान सहज अभिनय और युवा ऊर्जा से दर्शकों का दिल जीता। जी हाँ, आज के हमारे

अभिनेता हैं अर्जुन कपूर, और उन्हीं की फिल्म पर, उन पर फिल्माए गए गीतों को हम आपको सुनवाएंगे। श्रोताओं, फिल्मी परिवार से संबंध रखने वाले अर्जुन कपूर ने साल 2012 में फिल्म इश्कज़ादे से अपने अभिनय की सफर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म ने उनके दमदार अभिनय को दर्शकों ने और समीक्षकों ने दोनों ने खूब सराहा। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अपना अलग अलग किरदार निभाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे अर्जुन कपूर की फिल्मों के कुछ बेहद मशहूर गीत और जानेंगे उनसे जुड़ी रोचक बातें। तो आइए शुरू करते हैं उस फिल्म से जिसने अर्जुन कपूर को बॉलीवुड में एक मजबूत पहचान दिलवाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म इश्कज़ादे की। तो आइए सुनते हैं शालमाली खोलगड़े की आवाज में ये गीत। इस गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने और संगीत निर्देशन है अमित त्रिवेदी का। तो आइए सुनते हैं इश्कज़ादे से ये प्यारा सा गीत।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: श्रोता, अर्जुन कपूर फिल्म निर्माता बोनी कपूर के बेटे हैं। उनका जन्म 26 जून 1985 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ और बॉलीवुड के महान अभिनेता अनिल कपूर और संजय कपूर रिश्ते में इनके चाचा हैं। श्रोता, आगे और बात करेंगे इनके जीवन से जुड़ी बातों का, लेकिन बढ़ते हैं अगली फिल्म की ओर, जहाँ अर्जुन कपूर ने दोस्ती, प्यार और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हम आपको ये गीत सुनवा रहे हैं फिल्म गुंडे से। इस गीत को आवाज दी है विशाल दालानी, के नीति मोहन, बप्पी लहरी, और इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और धुन तैयार की है सोहेल सेन ने। तो आइए सुनते हैं इन सब की आवाज में गुंडे फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, इस समय आप आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक। और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर पर फिल्माए गीत। तो श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। श्रोताओं, चेतन भगत के उपन्यास पर आधारित फिल्म टू स्टेट्स अर्जुन कपूर के करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्मों में से गिनी जाती है। इसमें उन्होंने एक जज्बाती नौजवान का किरदार बखूबी निभाया। तो आइए सुनते हैं लोचा उल्फत, प्यार में होने वाली उलझनों और मीठी नोक झोंक को बड़े ही मजेदार अंदाज में पेश करता हुआ ये गीत, जिसमें आवाजें हैं बेनी दयाल की और गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन तैयार की है शंकर ईशान लॉय ने। तो आइए सुनते हैं बेनी दयाल की आवाज में टू स्टेट्स का ये प्यारा सा गीत।

तो अभी आपने सुना अर्जुन कपूर पर फिल्माई ये बेहद प्यारा सा गीत फिल्म थी टू स्टेट्स। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम में अपने अगले गीत की तरफ। ये एक ऐसा प्यारा सा और बहुत ही मीठे जज्बात को बयां करने वाला गीत है जो हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म की एंड का से। इसमें आवाज़ें हैं नीत ब्रॉस, जैस धानी, आदिति सिंह शर्मा और योयो की। गीत है योयो कुमार, हनी सिंह और नीत ब्रॉस का। तो आइए सुनते हैं फिल्म की एंड का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक। और आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर की फिल्मों के कुछ बेहद मशहूर गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। फिल्म है तेवर, आवाज है रितु पाठक, शबाब साबरी और दानिश साबरी की। गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने और धुन तैयार की है साजिद वाजिद ने।

श्रोता, हर कलाकार का सफर संघर्ष, सफलता और सीख से भरा होता है। अर्जुन कपूर की कहानी भी यही बताती है कि मेहनत और निरंतर प्रयास से कलाकार अपनी पहचान बनाता है। अंत में हम यही कहेंगे, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इसी खूबसूरत विचार और अर्जुन कपूर के यादगार गीतों के साथ मैं नसरीन जैदी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक और कलाकार के साथ। तो जब तक सुनते रहिए हमारा आकाशवाणी का ये प्यारा सा कार्यक्रम।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रही हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 3 बज चुके हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब यहीं पर समाप्त होते हैं। शाम 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा में पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। हमारे केंद्र से आज की सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 नए सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनते हैं जानकारी, सांप्रदायिक सौहार्द पर संशोधित दिशा निर्देश के बारे में जानकारी। श्रोताओं, प्रधानमंत्री के 15 नए सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए मुख्य दिशा निर्देशों में संवेदनशील क्षेत्रों में योग्य अधिकारियों की तैनाती, अफवाहों पर सख्त रोक, हिंसा भड़काने वालों पर सख्त कार्यवाही और दंगा के पीड़ितों का पुनर्वास भी शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत सांप्रदायिक सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से 6 अधिसूचित अल्पसंख्यकों, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन के लिए लागू किया गया है। श्रोताओं, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील और दंगा प्रभावित जिलों में निष्पक्ष, कुशल और धर्मनिरपेक्ष छवि वाले पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करने की इसमें व्यवस्था की गई है। सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाली अफवाहों की त्वरित कार्यवाही करना, उनकी गहन जांच करना और सांप्रदायिक सौहार्द भड़काने वाली अफवाहों को रोकना, साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने के दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। जो लोग सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बने रहने देना चाहते, यानी जो लोग सांप्रदायिक तनाव फैलाते हैं या हिंसा में भाग लेते हैं, उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाने की सिफारिश भी की गई है। ऐसे जिले या इलाके जिनकी पहचान सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील या फिर दंगा संभावित क्षेत्र के रूप में की गई है, वहां उच्च दक्षता, निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्षता वाले प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती करने का भी प्रावधान है। सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम, पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इन अधिकारियों की पदोन्नति में भी इस कार्य के लिए उनके प्रदर्शन को एक महत्वपूर्ण आधार कारक के रूप में माना जाता है। किसी भी तनाव की स्थिति से बचने के लिए सभी समुदायों के सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच नियमित बातचीत और संचार के चैनल स्थापित किए जाने की अनुशंसा की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र और विशेष रूप से पुलिस बल में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व और विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया है। दंगा प्रभावित क्षेत्रों के मामलों में त्वरित सुनवाई और त्वरित कार्यवाही के लिए विशेष अदालतों का भी गठन किया गया है। सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को तुरंत राहत पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। चिकित्सीय सहायता देना और उनके पुनर्वास के लिए वित्तीय मदद पहुंचाने की भी व्यवस्था है। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए स्थानीय स्तर पर शांति समितियों का गठन किया गया है। दंगे के सबसे अधिक प्रभावित होने वाले, यानी जो दंगे में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, ऐसे लोग जैसे छोटे दुकानदारों, दैनिक मजदूरों और महिलाओं को इन समितियों में शामिल करके शांति और सद्भाव को स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। श्रोताओं, ये कार्यक्रम देशभर में सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पर जाकर विजिट कर सकते हैं। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी
अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 नए सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सांप्रदायिक सौहार्द पर संशोधित दिशा निर्देशों के बारे में। आइए कार्यक्रम में अब सुनते हैं एक गीत।

इसी के साथ मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले सुनते हैं हमारे केंद्र से आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज रात्रि 9:30 पर नेशनल साइंस मैगजीन रेडियो स्कोपी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात्रि 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण किया जाएगा। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अदबी दुनिया कार्यक्रम में आज संध्या 7:50 पर कलाम ए शायर होंगे विजारत नबी। आज संध्या 7:32 पर सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे श्रोता सुनेंगे गजलें। कलाकार होंगे सनवर अली खान। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आज शाम 6:45 पर श्रोता सुनेंगे कहानी निर्णय। कहानीकार हैं सुधा शर्मा। कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:05 पर किसान भाई सुनेंगे भेंट वार्ता, दलहन तिलहन का कृषि में महत्व। डॉक्टर हंसराज सिंह से बातचीत करेंगे जितेंद्र कुमार। युवाणी कार्यक्रम हमारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रतिदिन शाम 5:15 पर। इसमें आज के क्रम रहेंगे कुछ खास आज झलकी, रहस्य सीरीज और साथ ही हमारे युवा श्रोता सुनेंगे गीत संगीत। हमारे फिल्म संगीत के कार्यक्रम श्रोता सुन सकेंगे आज शाम 6:55 पर कार्यक्रम छाया गीत, रात्रि 8:00 कार्यक्रम गीत संध्या और रात्रि 8:30 कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

श्रोताओं, अब एक नजर हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना हमारे श्रोता सुनते हैं प्रतिदिन प्रातः 6:05 पर। कल प्रातः 6:30 पर श्रोता सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 7:05 पर जानकारी का विषय रहेगा गर्मियों में गुणकारी सत्तू, खेती की बातें। इस कार्यक्रम में हमारे किसान भाई सुनेंगे जानकारी खेतों में मेड़बंदी का महत्व। समय रहेगा कल प्रातः 7:10 पर। सूरज के साथ साथ ये कार्यक्रम प्रसारित होता है प्रतिदिन प्रातः 7:31 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत कल प्रातः 9:25 पर हमारे श्रोता सुन सकेंगे रोहेलखंडी लोकगीत विनय कुमार निगम के स्वर में। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रसारित किया जाएगा उमंग कल दिन में 11:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे विजय गोडबोले का गायन, समय कल दोपहर 12:05 पर। परिवार जगत कार्यक्रम कल दिन में 1:15 पर प्रसारित होगा। इसमें कल का क्रम रहेगा कुछ माटी की कुछ कुम्हार की। युवाणी कार्यक्रम हमारे युवा श्रोता कल शाम 5:15 पर सुनेंगे। क्रम रहेगा गपसप अड्डा, क्रैश कोर्स, पैसा वसूल, कहानी के उस पार और रहस्य सीरीज। कल रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। विविधा कार्यक्रम में कल शाम 6:45 पर आप सुनेंगे वार्ता विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय महिलाओं का योगदान, वार्ताकार होंगी रश्मि कुमारी। ये था हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: चेहरे पर मुस्कान हो, सपनों में नई उड़ान हो,
1: हर दिन कुछ नया सीखने का अरमान हो।
0: दुनिया क्या सोचती है ये सोचकर मत रुक जाना,
1: अपनी पहचान खुद बनाना, बस यही आपकी असली शान हो। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए होंगे। मैं हूं दोस्तों आपकी दोस्त और होस्ट अक्षी त्यागी।
0: गुड इवनिंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? अक्षी के साथ स्टूडियो में हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो पार्टनर मरियम जैदी और हम दोनों मिलकर स्वागत करते हैं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी में।
1: दोस्तों सारे काम सारी टेंशन भूलकर जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि दोस्तों आज है संडे और आज की शाम को हम खास बनाने आ गए हैं अपने संडे स्पेशल पिटारे में।
0: जी हाँ दोस्तों, आज हम करेंगे आपको एंटरटेन अपने खास सेगमेंट्स के साथ, जो है कुछ खास है आज और झलकी दिखला जा। साथ ही होंगे बूस्टर डोजेस जो कर देंगे आपको हंसने पर मजबूर।
1: लेकिन दोस्तों उससे पहले हम चलते हैं म्यूजिक की दुनिया में कार्यक्रम के इस पहले गीत के साथ।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
5: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
6: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
5: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
6: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
5: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
7: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
8: हो जाओगे आशाज कर लोट पोट,
7: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
9: और डोज में क्या है?
8: डोज में है मजा।
7: जी हाँ, मजा आ गया।
10: अरे भाग्यवान, ये क्या बना रही हो तुम?
11: अरे कुछ नहीं, मैं आज खाली बैठी थी तो सोचा किचन में थोड़े से स्वीट डिश बना लेती हूँ। आओ तुम भी सीखो।
10: हाँ हाँ बिल्कुल। अरे वाह, ये तो बड़ी टेस्टी बनी है। अच्छा चलो बोलो, गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए तुम्हें?
11: जो मैं मांगूंगी वो दोगे?
10: हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, मांग के देखो।
11: ठीक है, मांग लेती हूँ फिर। देखो अब मैं तुम्हारी जान तो नहीं ले सकती। हाँ लेकिन गुरु दक्षिणा में तुम्हें पड़ोसन को दीदी बोलना होगा। चलो बोलो दीदी उसे।
10: क्या?
7: जी हाँ, मजा आ गया।
11: तालियों की आवाज कुछ पल में थम जाती है,
12: लेकिन अच्छे कामों की गूंज हमेशा रह जाती है।
11: इसीलिए खुद की कीमत दुनिया के लाइक से मत नापिए,
12: अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, वही आपकी असली पहचान बन जाती है।
11: दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो आज के वक्त में ना लगभग हर उम्र के लोगों से जुड़ा हुआ है।
12: अपने वैल्यू लाइक से नहीं दोस्तों, लाइफ से डिसाइड करो। सेगमेंट कुछ खास है आज का। हमारा ये विषय हर किसी की लाइफ से कनेक्ट है ही।
11: अक्षी, आजकल ऐसा लगता है ना कि सुबह उठते ही लोग सबसे पहले भगवान का नहीं मोबाइल का चेहरा देखते हैं।
12: बिल्कुल सही कहा तुमने मरियम, और उसके बाद शुरू हो जाता है हिसाब किताब, यानी मेरी पोस्ट पर कितने लाइक्स आए हैं, कितने किसी ने कितने कमेंट्स किए हैं, किसने स्टोरी देखी, और अगर लाइक्स कम आए तो पूरा दिन खराब, यानी मूड स्पॉइल।
11: लेकिन अक्षय सवाल ये है कि क्या सच में हमारी खुशी और हमारी पहचान कुछ नंबर्स पर टिकी होनी चाहिए?
12: बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। और मरियम तुम भी सुन लो, सोचो अगर एक दिन इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या हमारी अच्छाई, हमारी मेहनत या हमारी पहचान वहीं खत्म हो जाएगी?
11: नहीं ना, क्योंकि इंसान का असली जो पहचान है, जो उसका असली बिहेवियर है, वो उसके व्यवहार से ही तो होता है ना, उसके काम से होता है, उसके रिश्तों से होता है, किसी पोस्ट के लाइक से नहीं होता ना।
12: और एक बात दोस्तों, अगर आपकी किसी पोस्ट पर कम लाइक्स आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अहमियत कम हो गई है,
11: जबकि असली सवाल ये होना चाहिए कि क्या आज मैंने कुछ नया सीखा, क्या मैंने किसी की मदद की, क्या मैंने अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाया।
12: जी हाँ दोस्तों, याद रखिए दुनिया आपको आपके फॉलोवर्स की वजह से नहीं बल्कि आपकी कैरेक्टर की वजह से याद रखेगी।
11: तो आज का छोटा सा मैसेज यही है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए लेकिन उसे अपनी सेल्फ वर्थ मत बने दीजिए।
12: तो दोस्तों अगली बार जब आप कोई फोटो या वीडियो पोस्ट करें तो लाइक्स का इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिएगा।
11: लेकिन अपनी खुशी, अपना आत्मविश्वास और अपनी पहचान उन नंबर्स के भरोसे मत छोड़िएगा दोस्तों।
12: तो खुश रहिए, खुद पर भरोसा रखिए और हमेशा याद रखिए, अपनी वैल्यू लाइक से नहीं, लाइफ से डिसाइड कीजिए।
11: अक्षय, मुझे लगता है हमारे सभी दोस्त हमारी बात से सहमत होंगे और समझ भी गए होंगे।
12: हाँ मरियम, और अब हम भी समझ गए हैं कि अब हमें कहाँ जाना है, यानी कि हमें जाना है म्यूजिकल की दुनिया में और सुनना है प्यारा सा गीत हमारे दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा।
0: जी हाँ, मजा आ गया।
3: अरे यार चिक्की, तुझे पता है मनचाहा पति पाने के लिए ना लोग क्या क्या करते हैं, कौन कौन सा व्रत रखते हैं? हरतालिका तीज, करवा चौथ, सावन सोमवार, यहाँ तक कि शिवरात्रि का व्रत भी या पति पाने के लिए रखते हैं।
4: और तुझे पता है मनचाही पत्नी पाने के लिए क्या करते हैं?
3: क्या करते हैं?
4: कैट, यूपीएससी, एसएससी, नीट, जीमेट, इतना सब कुछ करते हैं। बड़े नाइंसाफी है रे।
3: हाँ रे।
0: जी हाँ, मजा आ गया।
5: तो दोस्तों, अब वक्त है संडे स्पेशल सेगमेंट झलकी दिखला जा का, जिसमें हम आज सुनने वाले हैं कनिका का त्याग, जिसका आलेख किया है अक्षय त्यागी ने। प्रस्तुत करता है शोभित शर्मा। प्रतिभागी कलाकार हैं शुमाइला अब्बासी, आदिल सैफी, साद अहमद, मरियम जैदी, अलीना मेहताब और अक्षय त्यागी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कनिका की कहानी।

0: की झलकी दिखला जा।
1: कनिका, अरे ओ कनिका, जल्दी उठ, रसोई भी संभालनी है, और देख तुझे तेरे भाई आरव की फीस भी तो जमा करने जाना है स्कूल। उठ जा जल्दी, महारानी सोती रहेगी क्या?
2: हाँ माँ, बस उठी गई हूँ।
3: आरव की माँ, हमारे बेटे आरव को पढ़ाना जरूरी है, उसे बड़ा आदमी बनाना है।
2: लेकिन पापा, मेरी भी कॉलेज की एडमिशन लिस्ट आ गई है।
3: हर बात में अपने सपने मत देखा कर कनिका, घर के ही काम करने हैं, तुझे पढ़ लिख कर क्या ही कर लेगी।
2: जी पापा, सही कहा आपने।
4: दीदी, आपसे जो मैंने कल बुक्स लाने के लिए बोला था, आप ले आई थी क्या?
2: हाँ अरब, ले आई थी। मेरी जितनी भी सेविंग्स थी ना, उन सब में से ही लेकर आई हूँ।
4: थैंक यू दी, तुम सबसे अच्छी दीदी हो।
5: कनिका, तेरा तो सिलेक्शन हो गया था ना, तो तू फिर कॉलेज क्यों नहीं जा रही?
2: कुछ नहीं, बस यार घर में ना पैसों की तंगी है, और फिर आरव की पढ़ाई पहले है, मैं बाद में हूँ।
5: कनिका, तू हर बार खुद को पीछे क्यों रखती है, पागल है क्या? हर बार ऐसे मौके नहीं मिलते।
6: यार नंदनी, कितनी बार तुझे बताऊं, क्योंकि मैं बेटी हूँ, और वो भी बड़ी बेटी हूँ।
5: अच्छा ठीक है, देख तू रो मत, देखते हैं कोई रास्ता निकलता है तो।
6: तू ना जा भी प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे नहीं करने किसी से कोई भी बात।
5: अच्छा चल ठीक है, लेकिन तू अपना ध्यान रखना, ठीक है?
6: क्या होगा?
4: दीदी, मम्मी, पापा, जल्दी आइए इधर।
6: क्या हुआ, क्या हुआ, शोर क्यों मचा रहा है?
4: अरे अरे दी, मुझे शहर के ना बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया है।
6: ये तो बहुत ही अच्छी बात है आरव।
4: मगर दी, एक प्रॉब्लम है।
2: प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है अब?
4: दी, वो वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है।
1: अरे आरव, अब क्या होगा बेटा?
2: कोई बात नहीं माँ, जब तक मैं हूँ तब तक आरव की पढ़ाई ऐसी ही चलती रहेगी, आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। मेरी जॉब की पहली सैलरी आई है, मैं दे दूंगी।
3: चलो अच्छा है, कम से कम घर में काम तो आ जाएगी।
1: हेलो हेलो आरव बेटा, कैसा है तू?
4: माँ माँ, आपके लिए ना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है।
1: क्या हुआ बेटा, जल्दी बता।
4: माँ, पापा, दी, मुझे विदेश में नौकरी मिल गई है।
1: अरे जुग जुग जिए मेरे लाल, आखिर मेरी मेहनत रंग ले आई। मैं तो कहती थी एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
3: आज मेरा सर गर्व से ऊपर उठ गया कि मेरे बेटे ने कमाल कर दिया।
6: बधाई हो आरव।
4: थैंक्स दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अरे ओ कनिका, अब तू भी कुछ कर ले, तेरी उम्र भी निकली जा रही है। तूने जिंदगी में किया ही क्या है, बस सोने के अलावा हर वक्त पलंग तोड़ती रहती है।
2: माँ, पूरा घर मेरे ही कंधों पर है, भूलिएगा मत।
3: हाँ हाँ, बस घर संभाला, इससे कोई बड़ा नहीं बन जाता।
4: बिल्कुल दी, सच कहूँ ना दीदी, अगर मैं खुद मेहनत ना करता तो कुछ ना होता।
2: सच में आरव, तुम्हें ऐसा लगता है?
4: दीदी यार, हर चीज का क्रेडिट मत लिया करो।
2: मैंने क्रेडिट लिया? कब लिया मैंने?
1: अरे बस कर दे, तूने हमारे लिए किया ही क्या है।
2: सही कहा माँ आप लोगों ने। पापा, मैंने पढ़ाई छोड़ी, नौकरी की, आरव की फीस भरी, घर चलाया, और आप लोग कहते हैं मैंने करा ही किया है।
3: तो एहसान मत जता।
1: और बेटियां करती ही हैं ये सब, तूने कोई अनोखा काम नहीं किया।
4: ओके गाइस, मेरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग लगे रहो इसमें।
2: आज पहली बार समझ में आया, मैं इस घर में सिर्फ जरूरत थी, अपनी नहीं।
1: हेलो आरव बेटा, ध्यान रख अपना, तू वक्त पे खाना खाया कर, हर वक्त तू मीटिंग में बिजी रहता है, बताओ ये कोई तरीके है? अच्छा सर, एक मिनट रुक जा। कनिका भाई, अब तुम कहाँ चल दी महारानी बैग उठाकर?
2: माँ पापा, मैं जा रही हूँ।
1: अरे बंद कर अपना ये ड्रामा,
3: जहाँ जाना है जा।
4: हेलो माँ, क्या हुआ, क्या हो रहा है वहाँ पे?
1: अरे हाँ बेटा, बस कुछ नहीं, इसके ड्रामे बंद नहीं हो रहे, घर छोड़ के जा रही है तेरी बहन।
4: दीदी प्लीज, मुझे ना इस सब में इन्वॉल्व मत करना आप, प्लीज।
2: ठीक है आरव, समझ गई, तुम्हें तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करूंगी और आज से किसी पर बोझ भी नहीं बनूंगी मैं। आज घर तो छोड़कर आ गई और समझ भी गई हो कि उस घर में मेरा कोई अपना था ही नहीं। जिस घर को मैंने अपना समझा, कोई जगह नहीं थी वहां मेरी। अब मैं खुद को साबित करूंगी, अपने लिए लड़ूंगी, दिन रात मेहनत करूंगी और माँ पापा और आरव को दिखाऊंगी कि नौकरी के साथ साथ पढ़ाई की है मैंने और धीरे धीरे खुद का बिजनेस भी शुरू करूंगी।
7: आज देश की सबसे सफल बिजनेस वुमन में से एक नाम है कनिका शर्मा का, जिन्होंने संघर्षों से उठकर अपनी अलग पहचान बनाई है और आज उनको हम इस मंच पर सम्मानित करने जा रहे हैं। तो जोरदार तालियां कनिका शर्मा के लिए।
2: आज मुझे यहाँ पहुँच के बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आखिर मेरी मेहनत रंग ले ही आई। और तो कुछ मैं नहीं कहना चाहूंगी, बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस इंसान को घर में कभी काबिल नहीं समझा गया, वो भी अपनी मेहनत से दुनिया बदल सकता है।
1: अरे अरे अरे आरव के पापा, जरा टीवी तो देखो, ये तो हमारी कनिका है।
3: इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई,
4: ये कैसे?
1: हमने अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किया, बहुत।
3: चलो उससे मिलते हैं, वो हमारी बेटी है, हमें जरूर अपनाएगी।
5: मैम, आपसे मिलने बाहर कुछ लोग आए हैं।
2: ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ।
5: ओके मैम।
2: ओ, आप लोग।
1: कनिका बेटा, हमें माफ कर दे बेटा,
3: हमसे गलती हो गई है।
4: दीदी प्लीज, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए आप।
2: वाह पापा, गलती और आपसे? गलती, वाह पापा वाह। पापा, गलती वो होती है जो अनजाने में हो, और आप लोगों ने तो हर दिन मुझे तोड़ा है।
1: बेटा, लेकिन हम तो तेरे अपने हैं।
2: माँ, अपने? बिल्कुल सही कहा आपने। जब मुझे सपनों की जरूरत थी, तब आपने जिम्मेदारियां दी। जब मुझे प्यार चाहिए था, तब माँ आपने मुझे ताने दिए। और आज जब मेरे पास नाम और पैसा है, तब आपको बेटी याद आ गई। बिल्कुल सही माँ, बहुत सही कह रही हैं आप, मैं आपकी अपनी हूँ।
3: बेटा, एक मौका दे दे हमें।
2: मैंने जिंदगी में सबको माफ किया, लेकिन उस दर्द को कभी नहीं भूल सकती मैं, जिसने मुझे हर रात रुलाया है।
4: दीदी प्लीज, इतना सब कुछ हो गया है, अब तो हमें माफ कर दीजिए।
2: नहीं आरव, आज मैं वहां पहुंच गई हूँ जहां मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और आप लोग अब सिर्फ मेरे अतीत का हिस्सा हो। आरव,
1: कनिका माफ कर दे हमें। कनिका, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
3: अब क्या ही हो सकता है।
2: त्याग अगर सम्मान ना पाए ना, तो एक दिन वही त्याग इंसान को पत्थर बना देता है।

0: उम्मीद है दोस्तों आपको ये झलकी पसंद आई होगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जो है थोड़ा हॉरर से भरा हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रहस्य सीरीज के सीजन 2 की। कहानी का नाम है भूल भुलैया एपिसोड 4, जिसका आलेख किया है आदिल सैफी ने। तो आइए सुनते हैं ये सीरीज।
1: हाय, मेरा नाम आदिल है, आदिल सैतिक, और आप सभी लिसनर्स का स्वागत है हमारे रहस्य सीरीज के सीजन 2 में। इस कहानी का नाम है भूल गुलैया और यह है रहस्य सीरीज की चौथी कड़ी, यानी एपिसोड नंबर 4।

और अब जान लेते हैं अब तक की कहानी। राजस्थान के पोखरान में मौजूद हवेली में कुंवर राजवर्धन के अमेरिका से आने की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। अब उन मेहमानों की भीड़ में राजा गोवर्धन सिंह यानी राजवर्धन के पिता एक अजीब चिंता में होते हैं। राजा साहब को एक अनजाना खौफ सता रहा था क्योंकि उन्हें लगातार किसी इनविजिबल चीज के होने का एहसास हो रहा था। रात के अंधेरे में हवेली के सूने गलियारों में किसी के सिसकने और चीजों के घसीटने की आवाजें आती हैं। उस फंक्शन से एक दिन पहले रात में जब राजा साहब उन आवाजों का पीछा कर रहे थे तो एक काला साया उनके सामने से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इसी खौफ के बीच 12 अगस्त की रात मेन पार्टी शुरू होती है। पुलिस भी वहां तैनात थी क्योंकि वहां बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और वीआईपीज भी आए होती। लेकिन रात के 10 बजते ही अचानक हवेली की बिजली कट हो जाती है और कुछ मिनटों में घुप अंधेरे के बाद जब रोशनी लौटती है तो नजारा खौफनाक होता है। राजा साहब का बेटा राजवर्धन और 4 बड़े वीआईपीज मेहमान हवेली के बीचों बीच से बिना कोई सिराग छोड़े कहीं गायब हो चुके होते हैं। भारी पुलिस फोर्स के बावजूद उनका कोई नामोनिशान नहीं मिलता और खौफ से घिरी हवेली एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली बन जाती है। पुलिस के मुताबिक ना तो कोई बाहर जाता हुआ पाया गया और ना ही अंदर। आखिर 5 लोग कहां गायब हो गए। अब समय बीतता है और कई दिन बीत जाते हैं। पुलिस की तहकीकात दिन रात चल रही थी। पूरा शहर छान मारा गया लेकिन राजवर्धन और उन 4 वीआईपीज का कोई सुराग नहीं मिला। जैसे जमीन उन्हें कहीं खा गई हो। इसी बीच हवेली के एक पुराने देखरेख करने वाले एक मुलाजिम ने एक शराब के बारे में जिक्र किया जो कि उस हवेली को मिला हुआ था। पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि अब से तकरीबन 400 साल पहले 16वीं सदी में जब भारत मुगल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था तब उस वक्त के मुगल बादशाह के वजीर ने पोखरान की राजकुमारी से शादी का प्रस्ताव भेजा जिस पर वहां के राजा और बाकी दरबारियों में चर्चा हुई। पोखरान के राजा को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं था लेकिन वो मना करके मुगल से दुश्मनी भी नहीं मोड़ लेना चाहते थे। इसलिए दरबारी और राजा में आपसी मतभेद हो गए थे। कुछ दरबारियों ने रात में मौका देखकर राजा को मारना चाहा लेकिन वो ऐसा ना कर सके और आपसी मतभेद के चलते राजकुमारी ने खुदकुशी कर ली और उस महल को श्राप दिया कि इस महल में कोई भी समारोह नहीं हो सकता। बुजुर्गों के हिसाब से आज भी उस धागों से लिपटे दरवाजों में राजकुमारी की आत्मा भटकती है क्योंकि वो कमरा राजकुमारी का ही था। और हो ना हो कुंवर राजवर्धन के और बाकी वीआईपीज के गायब होने के पीछे यही वजह है। इस महल में कभी कोई समारोह नहीं हो सकता। हवेली के अंदर मौजूद कुछ पुलिस वालों को भी रात में वही डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी जो राजा गोवर्धन को सुनाई देती थी। डर इतना फैल गया था कि कई नौकर हवेली छोड़कर भाग गए। अब आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे कि क्या पुलिस इस 400 साल पुराने शराब के रहस्य को सुलझा पाएगी या फिर वही सच है जो बुजुर्ग ने बताया। जानेंगे इन्हीं सभी सवालों के जवाब रहस्य सीरीज के आगे आने वाले एपिसोड्स में। तो हमारे युवाणी प्रोग्राम को सुनना ना भूलें।

0: अभी आपने सुना हमारा ये रहस्य सीरीज, तो अब चलते चलते क्यों ना मरियम एक और गीत सुन लिया जाए, क्या कहती हो?
1: बिल्कुल लक्ष्मी, जब हमें अब अलविदा लेने का वक्त आ ही गया है दोस्तों से, तो क्यों ना जाते जाते एक खूबसूरत सा गीत हम अपने दोस्तों के दिलों में छोड़कर जाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं, आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम युववाणी अनुभाग, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 2463।
1: जी हाँ दोस्तों, आप इसी के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी जुड़ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। दोस्तों नंबर एक बार फिर से 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर आप सुन सकते हैं। तो जल्दी से दोस्तों अपना फोन उठाइए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे सारे प्रोग्राम्स आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे और आप हमारे कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों मुझे अक्षी त्यागी
0: और मरियम जैदी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत।
1: नमस्कार।

0: अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आज रात्रि 9:30 पर नेशनल साइंस मैगजीन रेडियो स्कॉपी और रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवासीय संगीत सभा का प्रसारण हमारे श्रोता सुनेंगे। दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6 बजे हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
2: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
2: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांवों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने आयरलैंड के साथ दो T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों और बहनों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया जितेंद्र कुमार की राम राम। और भाई सवराजी खुशी, देखो भाई सब ठीक ठाक होंगे और हमारे भाइयों की खेती किसानी भी ठीक ठाक चल रही होगी। देखो फसल तो हमारे किसान भाइयों की, चाहे गन्ने की हो या भैया अब खरीफ का मौसम चल गया है भाई, चाहे धान की लगाने की तैयारी हो भाई, देखो हमारे किसान भाई रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और भाई अब तो देखो मौसम को देख रहे हैं कि भाई बारिश कब पड़ेगी, जैसी बारिश पड़ेगी तो भैया हमारे किसान भाई धान की फसलों की रोपाई करेंगे। क्योंकि भाई सभी भाइयों बहनों ने अपने खेतों में भैया डोल डाल कर मेड़बंदी करके खेत को बढ़िया करके तैयार कर लिया है और भाई देखो बारिश का इंतजार है। खैर भाई देखो बारिश भी पड़ेगी, जब समय आ जाएगा तो बारिश भी पड़ेगी, मानसून भी आवेगा। लेकिन भाई जो हमारी फसलें हैं, जैसे खरीफ का मौसम चल गया मान लो, तो भाई खरीफ की फसलें लगाने के लिए हमारे किसान भाई जागरूक हैं। जिन भाइयों ने भैया ढेंचा की फसल ली थी हरी खाद के रूप में, तो भाई उन्होंने जो है अपने ढेंचे की फसल को जोत दिया होगा खेत में और अच्छी तरह से खेत में उसे बारीक करके मिला दिया होगा। और भाई दूसरी बात आती है गन्ने की। भाई अगर बात हम गन्ने की फसल की करें, क्योंकि भाई गन्ना जो है हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नकदी फसलों में आता है और भाई नकदी फसलों में मुख्य रूप से हमारे किसान भाई गन्ने की फसल को उगाते हैं। और भाई उसमें जो है हमारे किसान भाई सह फसल के रूप में चाहे सब्जियों की फसल ले लें या भैया दलहन की फसल लेते हैं या भैया अन्य फसलें जो है, कुछ हमारे ऐसे भाई हैं जो कि पशुओं के लिए चारे की फसल भी उगा लेते हैं। तो भाई देखो हमारे किसान भाई अपनी जो खेत की भूमि है उसका पूरा उपयोग करते हैं, साथ ही साथ जो उर्वरक अपने खेत में देते हैं भैया उसका सदुपयोग करते हैं। और भैया जो सिंचाई करते हैं भाई, एक ही सिंचाई में भैया दो फसलों का काम हो रहा, तो सारे किसान भाई हमारे सब जागरूक हैं, मेहनत करते हैं और भैया अच्छा लाभ भी अपनी फसलों से कमाते हैं। तो भाई गन्ना की जो फसल है वो हमारे किसान भाइयों ने इस समय भैया अच्छी कर ली होगी। भैया उसमें आप समय के अनुसार मिट्टी चढ़ा दें, क्योंकि भाई

0: है। और भाई पशुपालन भाई जो है भारत अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है भैया। गाय भैंस बकरी भेड़ पालन करके और इनके जो उत्पाद हैं, चाहे भैया दूध हो, भाई दही हो, या भाई जो है गोबर हो, भैया वो अपने खेतों में डाल के और दूध पी के, भाई उससे हमारे किसान भाइयों की आमदनी निरंतर चलती रहती है। क्योंकि दूध आजकल हमारे किसान भाई अच्छी नस्लों की गाय भैंस पालते हैं, तो भाई वो दूध काफ़ी देती हैं, तो घर की आवश्यकता के अनुसार तो घर रख लेते हैं। और भाई बाकी भैया गाँव गाँव डेयरी हो गई हैं, तो भैया उनमें डेयरियों में अच्छा रेट हमारे किसान भाइयों को मिलता है। अब भाई बात आती है, जब हम पशु पालते हैं तो भाई उनका टीकाकरण, उन्हें बीमारियों से, और भैया उनके खाने पीने का ध्यान हमें रखना है। तो भाई उन्हें बीमारियों से जब हमें बचाना है, तो देखो बीमारियों से बचाने के लिए भैया हम जो है अपने पशुओं का टीकाकरण कराना चाहिए। भाई सामान्यतः अगर गाय भैंस की बात करें हम, तो भाई खुरपका मुंहपका का टीका लगवाऊँ, साथ ही साथ गलघोटू का टीका लगवाऊँ। और भैया एक लगता है लंगड़ा बुखार, दूसरा भैया एक होता है ब्रुसेलोसिस, जिसमें भैया हमारी गाय भैंस जो है गाभिन नहीं रह पाती है, तो भाई बछियों का ये टिक्का लगता है, जिससे भैया हमारी जो बछिए हैं वो समय के अनुसार अच्छी तरह से गाभिन रह सकें। भाई इस तरह से हमारे किसान भाई अपने पशुओं को टीकाकरण कराम। अब बात आती है बकरी की और भेड़ की। भाई देखो पशुओं में जो है टिक्के भी अलग अलग लगते हैं। बकरी में और भेड़ में भैया एक PPR का टिक्का लगता है, एक भैया एक्सोटॉक्सिमा का टिक्का लगता है, और भैया भेड़ में शिप पॉक्स और गोट पॉक्स का टिक्का लगता है बकरी में। तो भाई ये टीकाकरण हम अपने पशुओं का कराना बहुत जरूरी होता है, साथ ही साथ उनके दाना मिश्रण का, उनके खाना पीने का भैया हमें ध्यान रखना है। जैसा मौसम चल लिया, तो भाई इस समय अपने पशुओं को ताज़ा साफ सुथरा पानी पिलाना सबसे जरूरी है। दूसरे भाई अपने पशुओं को जो चारा खिलाना है भैया, तो चारे में हमें भैया संतुलित पोषक आहार अपने पशुओं को देना है। हम क्या काम करें कि भैया या तो भूसी भूसी डाल खिला रहे हैं, या भैया हरा चारे में चरी चरी बाजरा वही खिला रहे हैं, लेकिन भैया हम जो है थोड़ा सा भूसा भी अपने हरे चारे में मिला लेना चाहिए, जिससे भैया हमारा पशु जो है उसको सुपाच्य तरीके से मन लगा कर खावे, और दूसरे भैया उसको किसी तरह का पेट में दिक्कत बदहजमी ना हो। क्योंकि भाई जब देखते हैं हम कि हरा हरा चारा खिला रहे हैं अपने पशुओं को, तो भाई हमारा पशु जो है गोबर पतला करने लगा, भाई मन देख कर खाता नहीं है कई दिनों तक अगर हम खिलाते हैं। तो भाई ये चीज़ें हमें थोड़ी छोटी छोटी बातें ये हमें ध्यान रखनी होती हैं। भाई इस तरह से यदि आप अपने पशुओं का ध्यान रखेंगे और समझदार पशु चिकित्सक की सलाह से अपने पशुओं का टीकाकरण कराएंगे, तो भाई आप जो है, क्योंकि समझदार पशु चिकित्सक को ये पता होता है कि टीका किस समय हमारे पशु को लगना है, कितनी मात्रा में लगना है, और भाई उसका रिकॉर्ड हम अपने पास रखना चाहिए कि किस समय हम अपने पशुओं का टीकाकरण कराया था। तो इस तरह से हमारे किसान भाई अपने पशुओं को टीकाकरण करा कर और उचित देखभाल करके भैया अपने पशुपालन व्यवसाय से अच्छा लाभ कमा सकें। और जब भाई भाई लाभ होता है, तो भाई हमारे किसान भाइयों को आमदनी डोढ़ी हो जा है, भाई उनका जी करे करे भाई कोई सा भी काम करने को। तो भाई इस तरह से हम जो है काम करते रहना चाहिए। और भाई बातचीत तो हम आपसे थोड़ी सी और भी करेंगे, लेकिन भाई कार्यक्रम में इस समय लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
4: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें

0: पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: संदेश के बाद एक बार फिर हमारे सभी किसान बहन भाइयों का स्वागत है कार्यक्रम में। और भाई देखो, हम बात कर रहे थे फसलों की और पशुपालन की। तो भाई जब हम अपने पशु पाल रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, समय से टीकाकरण करा रहे हैं, भाई उनके हरे चारे के लिए भी भैया हम हरे चारे के लिए भी भैया उनके हम जो है ऐसी फसल चाहिए जिससे भैया हमारे किसान भाइयों के पशु स्वस्थ रहें। अब भाई बात आती है कि हमारे किसान भाई किस चीज़ से स्वस्थ रहें। तो भाई जब हमारे किसान भाई अपने खेतों में भैया फसल चक्र अपना मेंगे, और फसल चक्र में भी आज भैया हम देखते हैं कि हमारे किसान भाइयों की जो फसलें हैं भैया, उनमें हमारे किसान भाइयों का रासायनिक उर्वरकों पर, अंधाधुंध प्रयोग पर भैया, रासायनिक दवाओं पर, कीटनाशक हो या भैया खरपतवार नाशी दवाई हो भैया, उन पर इतना खर्चा हो रहा कि भाई बस बुझो मत। तो भाई हम जो है अपनी फसलों को हेर फेर कर बोते रहना चाहिए। भाई इससे क्या फ़ायदा? इससे फ़ायदा यो है कि जो हमारी फसलें होती हैं, एक फसल के खरपतवार दूसरी फसल में नहीं उगते, तो हमारे किसान भाइयों का जो खर्चा वो बच जाता है। दूसरे भाई, हम अपने खेतों में फसल चक्र में दलहनी फसलों का, तिलहनी फसलों का समावेश आवश्यक रूप से करना चाहिए। क्योंकि भाई दलहनी फसलें जो होती हैं उससे भैया हमारे किसान भाइयों का जो खर्चा है वो कुछ कम हो जाता है। यानी कि अगली फसल जो भी हम बोते हैं अपने खेत में, तो भैया उसमें हमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक यानी कि यूरिया की मात्रा लगभग 20% कम देनी पड़ा है, तो हमारे किसान भाइयों का खर्चा बच जा। क्योंकि दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं उनमें भैया राइजोबियम के ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जड़ों में करते रहते हैं। तो भाई हम जो है दलहन की फसलों से दाल मिल जाएगी जिससे हमारे किसान भाई खाकर उसे प्रोटीन और भैया उन्हें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और भैया वो स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि भाई हमारा जो भारतवर्ष है उसकी लगभग 80% जनसंख्या जो है भैया बिल्कुल जो है लगभग 80 क्या भैया 90% ही कहो भाई 90% जनसंख्या जो है बिल्कुल भैया जो जैसे कह दिए हैं ना कि भाई शुद्ध आहार खाते हैं, तो भाई वो है यानी कि मांस मदिरा वाली नहीं है। तो भाई दलहन की फसल दाल लो से भैया हम जो है स्वस्थ हमारे किसान भाई रहते हैं। तो भाई यदि हम दलहन और तिलहन की कृषि करें, खेती करें, भाई ज़्यादा ना उगा कर अपने लिए उगा लें, तो भाई उसका जो है हमारे जीवन में बहुत अधिक लाभ है। तो भाई आज एक ऐसी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। भाई जानकारी का विषय है दलहन तिलहन का कृषि में महत्व। भाई जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर हंसराज सिंह जो कि प्राध्यापक हैं KVK मुजफ्फरनगर में। और भाई आइए करते हैं उनसे ये बातचीत।
5: आज हमने बात की डॉक्टर हंसराज सिंह जो कि कृषि विज्ञान केंद्र बघरा मुजफ्फरनगर में प्राध्यापक एवं अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर साहब से जानकारी का विषय है
6: दलहन एवं तिलहन की खेती का कृषि में महत्व।
5: तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद श्रोताओं, स्वागत है, अभिनंदन है।
5: जी जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब जैसा कि आज हमारा आपसे विषय है दलहन एवं तिलहन का कृषि में महत्व के संबंध में, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को आप इसी ओर जागरूक कीजिए कि दलहन एवं तिलहन क्या है और इनका क्या लाभ है।
7: देखिए ऐसा है कि जो हमारे सम्मानित श्रोतागण हैं जी, हमारे किसान भाई हैं जो अन्नदाता हैं, वो सबको पता है कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में दलहन और तिलहन का बहुत बड़ा महत्व है ना। इसमें सबसे बड़ी चीज बात आ रही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये फसल ऐसी है जो हमारी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, और इसके साथ साथ दाल और तेल ऐसी फसल है कि जिसको नगद के रूप में बेच लेते हैं।
5: जी जी
7: समझ रहे हैं। इससे क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ये आपका जिस खेत में बहुत ज्यादा खरपतवार होते हैं उसमें सरसों बो दी जाती है, खरपतवार भी खत्म हो जाते हैं।
5: जी जी जी।
7: और भूमि की जो उपजाऊ शक्ति बढ़ाती है
5: जी।
7: और अगर हम बात स्पेशली दलहन का करें
5: जी,
7: तो दलहन और तिलहन को अलग अलग लेके दो पोर्शन है, दलहन अलग है तिलहन अलग है।
5: जी जी जी।
7: तो हम दलहन की बात करते हैं तो दलहन में सबसे बड़ी बात आती है कि आपका जितनी भी दालें हैं चाहे खरीफ की हो चाहे रबी की हो जायद की हो
5: जी,
7: इसमें खरीफ में है स्पेशली आपका अरहर उर्द मूंग है
5: जी,
7: और रबी में आपका चना है, मटर है, मसूर है
5: जी,
7: है ना। तो इनका सबसे बड़ा फायदा है कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति में सुधार करती है।
5: जी जी जी,
7: है ना। और इसीलिए हम लोग कहते हैं, हम लोगों की धारणा होती है कि जो खेत थोड़ा कम उपजाऊ है उस खेत में हम दलहन को बो लेते हैं। तो दलहन से क्या होता है कि ये लेग्यूम फैमिली की होती है और इनकी

0: जड़ों में जो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक पदार्थ है कि
1: जी
0: जड़ों में गांठें होती हैं, और उन गांठों का काम है कि जो एटमॉस्फेयर में हमारी नत्रजन तैर रही है, फैल रही है, उसको नत्रजन को फिक्सेशन करते हैं,
1: अच्छा
0: नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं,
1: जी
0: है ना। तो इससे क्या होता है, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो हमारी जो इस समय हमारी जो मांग है, हम लोग भाग रहे हैं जैविक खेती, प्राकृतिक खेती,
1: जी
0: समझ
1: जी
0: रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी खाद की डिमांड है, जो केमिकल रासायनिक खादे हैं,
1: जी
0: इनकी भी डिमांड कम हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी फसल के पहले आप जो है कोई फसल लेते हैं, स्पेशली आपका सीरियल लेते हैं,
1: जी जी
0: गेहूं धान, तो हम जनरली मन करते हैं कि अगर दलहन फसल बोई गई है तो
1: जी
0: आप 10 से 15% नत्रजन की मात्रा कम कर दीजिए।
1: अच्छा सर
0: और इसके साथ साथ एक बात और आती है, जिस खेत में हम दलहन तिलहन का खेत में जोतते हैं
1: जी जी
0: तो उसमें जीवांश पदार्थ तो बढ़ती है, क्योंकि
1: अच्छा
0: आज इसमें सबसे बड़ी मांग है कि खेत में जीवांश पदार्थ की मात्रा बहुत तेजी से घट रही है, क्योंकि हम लोग मैकेनाइज फार्मिंग पर आ गए हैं, पशु है नहीं। तो उससे क्या दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि हमारी जो उत्पादन लागत बढ़ रही है और शुद्ध आय घट रहा
1: जी, बिल्कुल
0: है ना। और एक बात और आती है, जिस खेत में आप दलहन को पलट देते हैं
1: जी
0: तो उसमें उन खेत की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता होती है, वो भी बढ़ती है। क्योंकि आज देख रहे हैं कि दिन पर दिन फसल
1: जी
0: चक्र में हम लोग कहते हैं कि जब दो सीरियल बो देते हैं तो
1: जी
0: उनके बीच में एक दलहन की फसल लेते हैं, उससे एक फायदा इससे क्या होता है कि जमीन में जीवांश पदार्थ तो बढ़ती बढ़ती है,
1: जी
0: जो फसल चक्र है उसमें कहीं ना कहीं दाल का, दलहनी फसलों का समावेश करें।
1: जी
0: इससे क्या होगा कि जमीन के जो न्यूट्रिएंट है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक पूरा यूज होगा।
1: बिल्कुल सर
0: कि ये जो है हम लोगों की धारणा है
1: जी
0: कि ये जो दलहन और तिलहन है उस एरिया में बोई जाती है जहां खेत थोड़ा सा अनुपजाऊ हो, कम उपजाऊ हो
1: जी
0: और
1: जी
0: पानी के साधन कम हो।
1: बिल्कुल सर
0: यानी इन फसल को आपको जो बोते हैं तो पानी की मात्रा, मतलब पानी की, मतलब आप दलहन में अगर एक पानी लग गया, दो पानी लग गया, काम चला। तिलहन में भी इस तरह है, सरसों में, कि एक बार जो है प्रेवा कर बो देते हैं तो प्री फ्लावरिंग और पार्ट फिलिंग दो स्टेज में देते हैं, हाँ ना। और उसके बाद एक बात और आज सबसे बड़ी आती है कि ये जो है कम उर्वरक, जैसा कि हम जानते हैं है कि इसको उर्वरक की आवश्यकता कम पड़ती है। इसके साथ साथ एक बात और आती है कि आज जो हमारी पशुओं का है हेल्थ है, चाहे ह्यूमन हेल्थ हो, चाहे कैटल हेल्थ हो, उनका भी खराब हो रहा है।
1: जी बिल्कुल
0: लेकिन जब हम दलहनी फसल ले लेते हैं तो उनको जो है दाल तो हम यूज कर लिए, लेकिन
1: जी
0: उसके छिकल जो है ना पशुओं को चारे में आता है।
1: जी
0: इसी तरह बहुत से दलहनी फसलें ऐसी हैं जिनको हम जो है पौष्टिक चारा के रूप में भी यूज करते हैं।
1: बिल्कुल
0: इस
1: सर
0: तरह
1: बिल्कुल
0: आपके दलहन की बात आ रही है कि दलहन का हमारे एक, और दूसरा चीज ये बता रहे हैं कि कहते हैं दाल, दाल
1: जी
0: ऐसी चीज है कि इससे आपके कई प्रोडक्ट बनते हैं। आप जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन ले लीजिए, सोयाबीन से हर कम से कम 30, 35, 40 आइटम बनते हैं। दूध
1: जी
0: है, पनीर है, छेना है, खोआ
1: जी
0: है, इस तरह जो है। तो आजकल जो दलहन का जो हमारे हेल्थ में बहुत बड़ा महत्व है।
1: जी बिल्कुल सर बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दलहन के संबंध में, आपने लाभ के संबंध में और किस तरह से मानव स्वास्थ्य पर मानव पोषक तत्वों का प्रभाव पड़ता है इस संबंध में बताया। अच्छा सर, जैसा आज विषय भी है कि तिलहन का, तो तिलहन के संबंध में आप क्या जानकारी हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे?
0: दलहन और तिलहन में हम किसान भाइयों को बार बार अनुरोध करते हैं, उसका ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा दुष्परिणाम हुआ कि हम लोगों की जो खेती है उसमें दलहन और तिलहन का समावेश कम हो गया।
1: जी जी
0: तिलहन की बात करते हैं तो एक तो एक कैश क्रॉप होती
1: जी
0: है ना, जैसे आपका सरसों है। इन फसलों को आप जो है बाजार में जब चाहे तब, एटीएम है, तुरंत बेच लीजिए।
1: जी जी बिल्कुल
0: इसलिए क्योंकि इस समय दाल और तेल की बहुत बड़ी मांग है, आप
1: बिल्कुल सर
0: जहां भी जाइए, गेहूं तो एक बार कम बिकेगा लेकिन दाल और तेल तुरंत बिक जाएगा। तो एक तो सबसे चीज है तिलहन एक नगदी फसल है, कैश क्रॉप है।
1: बिल्कुल सर
0: दूसरा ये है कि मिट्टी की नमी का उपयोग, ये क्या होता है, जैसे कि आपका बुंदेलखंड ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए,
1: जी
0: यहाँ सरसों इसलिए बोते हैं कि ये मिनिमम पानी में सरसों आपका हो जाता है और
1: जी
0: अच्छी पैदावार होती है। तो दूसरा मिट्टी की नमी का उपयोग भी कर लेते हैं।
1: जी
0: इस बात हम लोग जो है एक मिक्स क्रॉपिंग और दूसरा इंटर क्रॉपिंग, दो शब्द आते हैं। तो
1: जी
0: तो मिक्स या इंटर, दोनों मिक्स का मतलब दो तीन फसलों को मिला कर देते हैं,
1: जी
0: और इंटर क्रॉपिंग का मतलब दो लाइन के बीच में एक लाइन निकल लेते हैं।
1: जी
0: तो ये जितनी भी तिलहनी फसलें हैं, है ना, अभी आपका जैसे अरहर बोल रहे हैं, अरहर के साथ आप जो है मूंगफली ले लेते हैं,
1: जी
0: अरहर के साथ जो आपका तिल ले लेते हैं, समझ
1: जी
0: रहे हैं। इसी तरह आपका रबी में, इसके बाद सरसों के साथ आप गेहूं ले लेते हैं,
1: जी
0: गन्ने के साथ ये ले लेते हैं। तो यानी कहने का मतलब होता है कि ये जो है आपका दो फसल एक साथ लेने में सबसे उपयुक्त तिलहन फसल है, समझ
1: जी जी
0: रहे हैं। और इस पर जो है तिलहन मतलब इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि एक दूसरे पर एडवर्स इफेक्ट ना हो।
1: जी
0: तो गन्ना जमेगा लगभग 40 से 45 दिन बाद,
1: जी
0: उस समय
1: बिल्कुल
0: आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो सरसों वाले बोने से क्या है कि सरसों जो उसको गन्ने को पाले से बचाती है।
1: जी
0: तो एक तिलहन ये किसी फसल है जिसको हम इंटरक्रॉपिंग के रूप में यूज कर लेते हैं, समझ
1: जी बिल्कुल
0: रहे।
1: बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दलहन एवं तिलहन के संबंध में दी, और इनके क्या दलहन तिलहन होता है और इनके लाभ के संबंध में बताया। और डॉक्टर साहब, जैसा कि बात हम करते हैं कि पोषक तत्व और स्वास्थ्य में, तो डॉक्टर साहब,
0: हाँ
1: पोषक तत्व और स्वास्थ्य में दाल एवं तेल का क्या महत्व है?
0: देखिए, ऐसा है कि जो हमारा भारत का जनमानस है ये मोस्टली आपका शाकाहारी है ना, मांसाहारी कम
1: जी बिल्कुल
0: है ना। तो शाकाहारी के लिए जो दलहन है एक रामबाण है,
1: जी
0: समझ रहे हैं। दलहन एक ऐसी फसल है जिससे आप दालों से आपका प्रोटीन तो मिलता ही मिलता
1: जी
0: है ना। प्रोटीन के साथ साथ इसमें जो है बहुत से इम्यूनो एसिड पाए जाते हैं, है ना, बहुत से आपके विटामिन पाए जाते हैं
1: जी
0: जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप कभी देखिए, हमारे जो पूर्वज थे वो
1: जी
0: जब कोई आदमी बीमार होता था तो जो बीमार से उठता था तो उसको दाल का सूप देते थे।
1: जी जी
0: और उसका मतलब यह है कि इसमें दाल के सूप में ऐसी शक्ति है जो इजिली डाइजेस्टेबल है और एनर्जेटिक
1: जी जी जी
0: है। तो
1: बिल्कुल
0: एक तो उसका मुख्य ये हुआ कि हमारे जो है बैलेंस डाइट लेते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, इन सबों का एक रेशियो होता है,
1: जी
0: तो उसमें दाल का भी एक रेशियो होता है। इसी तरह आपका तिलहन का भी है। तिलहन
1: जी
0: जैसे कि हम लोग जो है बसा लेते हैं, फैट लेते हैं, फैट का दो स्रोत है, या तो आपका तेल है या घी
1: जी
0: है ना। तो
1: बिल्कुल
0: जो हमारे जो एनर्जी मिलती है वो जब हमारा जब खाते हैं तो डाइजेस्ट होता है, तो
1: बिल्कुल
0: उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। तो ये आपका तेल से मिलता है।
1: जी
0: इसके साथ साथ तेल में एक और बात आती है कि आज जो है पशुओं का जो कम हो गया, पहले लोग क्या करते थे कि इनको जो इनका जो खली निकलता था,
1: जी
0: एक केक आयल केक है ना, ये पशुओं के लिए बहुत उच्च क्वालिटी चारा होता था
1: जी
0: मिलाते थे। और इसके साथ साथ ये जो दलहनी फसलें हैं ये जैविक खाद के रूप में बहुत बढ़िया यूज होती हैं, कि इनमें जैसे सरसों है, सरसों में जितने बायोमास है वो जमीन में गिर जाते हैं,
1: जी
0: और इसके बाद जमीन में जुताई कर देते हैं, तो आपके जमीन में जो है एक जैविक खाद को भी प्रयोग की जाती
1: जी सर
0: है ना। इसके साथ साथ अगर देखें तो तिलहन का है, तिलहन एक जो आपका जो इससे मेन हमारा टॉपिक आ रही है कि हम लोग जो है ट्रेडिशनल क्रॉप को छोड़ नहीं रहे हैं,
1: जी जी
0: तो एक जो है एक डाइवर्सिफिकेशन की बात आ रही है, विविधीकरण की बात आ रही है। तो ये किसानों को एक अच्छा विकल्प है कि आज जो गन्ना है,
1: जी
0: गन्ने के साथ आप तिलहन की फसलें में
1: बिल्कुल
0: है
1: सर
0: ना,
1: बिल्कुल
0: आप सोयाबीन ले, इनको अपने फसल चक्र में कहीं ना कहीं यूज करें, तो जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात आ रही है ये बहुत अच्छा काम करेगा
1: जी सर
0: इस।
1: बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को पोषक तत्व और स्वास्थ्य के संबंध में दाल तेल के महत्व की बताई। अच्छा सर, जैसा हम बात कर रहे हैं दलहन एवं तिलहन के संबंध में, तो सर क्या सरकार द्वारा भी हमारे किसान भाइयों को दलहन तिलहन पर कुछ सुविधाएं दी जाती हैं?
0: हाँ, ऐसा है ना कि इस समय नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का मेन उद्देश्य है कि किसान भाइयों को मिनी किट के रूप में उनको जो है फसल दलहन और तिलहन का मिनी किट दिया जाए, और इसके साथ साथ वो निःशुल्क देने के साथ साथ उनके दलहन और तिलहन उत्पादन में जहाँ कमी आ रही है, बैरियर हो रहा है, उनको ट्रेनिंग के माध्यम से, उनको डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से, उनको अवेयरनेस के माध्यम से उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार इस पर काफी जोर दे रही है।
1: बिल्कुल सर
0: इसके साथ साथ जो हमारा इसमें तिलहन और तिलहन पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो क्षेत्र की मांग है,
1: जी
0: जो वैरायटी उस एरिया स्पेसिफिक है, उनकी हाइब्रिड सीड दें
1: जी
0: ताकि ये कम एरिया में ज्यादा उत्पादन करें।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल, बड़े अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी कि किस तरह से सरकार द्वारा भी हमारे किसान भाइयों को सुविधाएं दी जा रही हैं और कृषि विज्ञान केंद्र भी कितने अच्छे कार्य जो है किसान भाइयों की अधिक उपज के संबंध में, अधिक उत्पादन के संबंध में कर रहा है। अच्छा सर, और क्या कुछ संदेश, कोई बात दलहन तिलहन के संबंध में बताने से रह गई हो तो कुछ संदेश आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहते?
0: हम लोग क्या कहते हैं कि किसान भाइयों से हम लोग प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि किसान भाई अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने परिवार की अवस्था के अनुसार दलहन और तिलहन को उत्पादित करें। क्योंकि एक आदमी को, एक सामान्य न्यूक्लियर फैमिली बोले तो लगभग 5 लोग होंगे, एक सामान्य फैमिली में 5 लोग होंगे कम से कम, और एक आदमी को लगभग 80 से 100 ग्राम दाल चाहिए, तो आधा किलो दाल समझ रहे। और अगर घर पर रहेगा, इसी तरह दूध की बात हो रही है कि हम लोग दूध अगर रहे घर पर तो आदमी जो है पी लेगा, खा लेगा,
1: बिल्कुल सर
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: इसी तरह अगर दाल घर पर रहेगा तो जो है अपना दाल को यूज कर लेगा, और जब दाल यूज करेगा तो उसकी जितनी भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो
1: जी
0: पूरी हो जाएगी।
1: बिल्कुल
0: और
1: सर
0: हमें जो विदेशों से हम लोग जो है दाल और तेल को मंगा रहे हैं वो कम से कम कई अरब रुपए,
1: बिल्कुल
0: और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो
1: बिल्कुल
0: किसान भाइयों से हम बार बार अनुरोध करते हैं, कम से कम बाजार मत बेचो,
1: जी
0: लेकिन अगर अपना अपना अपना कर लेंगे तो
1: बिल्कुल
0: हमारे अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा सुधार होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दलहन एवं तिलहन क्या कृषि में महत्व के संबंध में दी, और आज आपने हमारे कार्यक्रम में इतने व्यस्त कार्यक्रम से समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद हमारे श्रोताओं और अन्नदाताओं, आपका जो है।
2: अभी हमारे किसान भाइयों ने ये जानकारी सुनी, विषय था दलहन तिलहन का कृषि में महत्व। भाई देखो कितनी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने हमारे किसान भाइयों को दलहन के संबंध में दी कि यदि हमारे किसान भाई दलहन की फसल अपने खेत में लगाते हैं तो भाई हमारे खेत की जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनती है, साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों की लागत है उसमें कमी आती है। और भाई देखो एक फसल के जो कीड़े हैं, बीमारी हैं, खरपतवार हैं, वो दूसरी फसल में नहीं उगते हैं। तो भाई देखो दलहन की फसल हमें अपने खेतों में उगानी चाहिए। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने बताया कि दलहन की फसल जो होती है, जो हमारी दालें होती हैं, वो भैया कितनी पौष्टिक होती हैं, उनमें भैया प्रोटीन की मात्रा होती है। और जब भाई आदमी थोड़ा बहुत बीमार हो जाता है तो उसको दाल का सूप या पानी दिया जाता है पिलाने के लिए। जैसे मसूर की दाल है तो भाई मसूर को नु कहते हैं कि भाई ये जो है अगर हम मसूर की दाल खाते हैं तो प्रोटीन से भरपूर होती है, साथ ही साथ हमें बीमारियों से, रोगों से बचाती है। दूसरे भाई तिलहन के संबंध में बताया कि भाई तिलहन की जो फसल है वो भैया हमारी नकदी फसलों में भी आती है। अगर हमारी ये तेलीय फसलें अपने खेतों में लगाते हैं तो भाई यदि हमारे घर में सरसों रखी तो भाई आप जरूरत के समय, किसी भी समय आप उसका बेच कर पैसा बना सकते हैं। साथ ही साथ तेल शुद्ध आप जब घर का खाएंगे तो भाई आपको जो है अच्छा स्वास्थ्य में भी लाभ होगा, और जब घर की दाल खाएंगे, क्योंकि भाई जो बाहर से आ रही दाल हो या तेल हो उसका हमें क्या पता कि उसमें शुद्धता है या नहीं है। यदि हम घर की चीज़ खा रहे हैं, चाहे भैया दाल हो, तेल हो, दूध हो, मलाई हो, घी हो, तो भाई उसका तो हमें पता होता है कि भाई हम जो है अपने घर की शुद्ध दाल, तेल, घी, दूध खा पी रहे हैं। तो भाई हम जो है ये ध्यान रखना है कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से दलहन तिलहन का उत्पादन करना है। साथ ही साथ देखो डॉक्टर साहब ने एक बात बताई कि भाई आज छोटी होती जोत की भूमि को देखते हुए और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए भाई यदि हम सह फसली खेती करें, यानी कि जैसे हमारा क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसमें भैया गन्ने की फसल मुख्य नकदी फसलों में आती है। यदि हम अक्टूबर में गन्ना बोते हैं तो उसमें आप सरसों की फसल बीच में लाइन से लाइन के बीच में आप लगा सकते हैं। भाई कुछ फसलें हमारे किसान भाई सह फसली में ऐसी लेते हैं कि भैया जो चार लाइनों के बीच में एक लाइन लगा दी, या भैया दो लाइनों के बीच में एक लाइन लगा दी। तो इस तरह से यदि आप खेती करेंगे तो आप अपनी खेती किसानी से एक समय में ही भैया दो फसलों का फायदा ले सकें। एक मुख्य फसल तो हमारे खेत में खड़ी खड़ी है, उसे तो भैया हमें लागत लगानी लगानी है, भाई दूसरी फसल उसके साथ में यदि हमें मिल जावा तो हमारे किसान भाइयों की जो आमदनी है भैया वो डोढ़ी हो जा। और इस तरह से यदि हमारे किसान भाई खेती करेंगे, क्योंकि आज आधुनिक युग है, और भाई दालों का, तेलों का, अन्न उत्पादन का भैया हमारे किसान भाइयों के ऊपर एक दबाव भी है कि भाई हमें अच्छा उत्पादन लेना है, चाहे भैया हमें अपना फसल चक्र अपनाना है या भैया लागत कम करनी है, और लागत जब हमारी कम होगी तभी हमारे किसान भाइयों को अपनी खेती किसानी से अच्छा लाभ होगा, और लागत हमारी तभी कम होगी जब हम अपने खेतों में दलहन की फसल उगाएंगे, क्योंकि भाई दलहन की फसल उगाने से भैया नाइट्रोजन के जो स्थिरीकरण वाले बैक्टीरिया हैं भैया वो हमारे खेत में ही रह जाएंगे, अवशेष रह जाएंगे, और हमारे खेत की मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ेगी और उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, तो हम भविष्य में अपने बच्चों को भैया एक अच्छी मिट्टी, स्वस्थ मिट्टी अपने बच्चों को भी देख कर जाएंगे, क्योंकि भाई हमारा जो है ना एक दायित्व भी है कि जब हम खेती कर रहे हैं जिस मिट्टी में, जिस खेत में, भैया वो हम अपने भविष्य यानी कि अपने बच्चों को एक वारिस के रूप में देनी है, तो भाई हम ये चाहते हैं कि भैया हमारे जो बालक हैं वो भैया अच्छे खेत में अच्छी फसल उगाएं, तो भाई हमारा दायित्व होता है कि हम अपनी फसलों को, अपने खेत की मिट्टी को स्वस्थ रखना है, ताकि भैया हम अपने बच्चों को मिट्टी स्वस्थ दे दें। तो भाई इस तरह से यदि आप दलहन तिलहन का उत्पादन करेंगे तो आप भैया अपनी खेती किसानी से अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, और भाई बात जब लाभ की होती है तो लाभ एक और चीज़ से होता है भाई, उसकी बात भी करेंगे, क्योंकि भाई हमारे किसान भाई सोच रहे होंगे कि भाई बात ही बात करो जाओ हो, कुछ गीत संगीत की बात भी करोगे, तो बिल्कुल भाई गीत संगीत के लिए भी आपको हम लेकर चलेंगे, लेकिन भाई पहले कार्यक्रम में सुनते हैं एक छोटा सा प्रोमो।
3: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
4: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
3: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
4: खुशहाली का नया प्रयोग।
5: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
2: तो भाई ये तो हमने प्रोमो सुना, और भाई इससे पहले हम बात कर रहे थे किसान भाइयों के मनोरंजन की, तो भाई बिल्कुल किसान भाइयों को बिना देर किए लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर, और सुनते हैं वीर सिंह शर्मा व साथियों से यो प्यारी सी रागनी।

सावित्री ना जोड़ मिले। अभी भाइयों ने ये रागनी सुनी सत्यवान सावित्री के किस्से से, और भाई उम्मीद करते हैं किसान भाइयों की दिन भर की थकान उतर गई होगी और भरपूर मनोरंजन हमारे किसान भाइयों का हुआ होगा। भाइयों देखो मौसम की जानकारी भी हमें जरूर होनी चाहिए। भाई देखो मौसम की चिट्ठी तो हमें मिलती रहती है, लेकिन भाई मौसम की चिट्ठी के अनुसार जो भैया हम मौसम बताते हैं, हो सकता है कभी कभी तूफानी बारिश हो जाए, क्योंकि भाई जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं वो बताते हैं कि भैया मानसून की गति थोड़ी धीमी है, तो भाई मानसून आने में थोड़ी देरी हो सकती है। लेकिन फिर भी भैया यदि आपकी फसल ज़्यादा पानी मांग रही है तो भैया आप उसको सिंचाई करते रहें समय के अनुसार, लेकिन भैया मौसम से आप अपडेटेड रहिए, क्योंकि भाई आजकल हमारे सभी किसान बहन भाइयों के पास बड़े फ़ोन हैं जो कि उंगली से चलते हैं, और भैया हमारे किसान भाई मौसम के हाल देखते रहते हैं कि भाई अब 90% बारिश होनी, अब 40% बारिश होनी है, उन्हें तारीख का दिन का सब जानकारी होती है। तो भाई अब देखो आप भी मौसम की जो जानकारी है वो अपने पास रखें समय के अनुसार, क्योंकि भाई मौसम का पता नहीं बारिश कब हो। तो भाई इस तरह से यदि आपको जानकारी होगी तो आप अपनी फसलों में यदि किसी खरपतवार नाशी का या किसी कीटनाशी का स्प्रे करना चाह रहे हैं तो भाई उससे आप थोड़ा सा परहेज करेंगे, क्योंकि एक दो दिन लेट अवेर सवेर तो हमारे किसान भाइयों का खेती किसानी का काम चलता रहता है। तो आप भैया मौसम को देखते हुए अपनी खेती किसानी के काम करें। साथ ही साथ भाई अब देखो घड़ी भी हमारी शोर इशारा कर रही है और बातचीत की इजाजत किसान भाई से बिल्कुल नहीं दे रही है। तो भाइयों आप हमें चिट्ठी पत्री लिखते रहें, और चिट्ठी पत्री लिखने के लिए उठाइए कागज और कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। भाई इस पते पर आप हमें चिट्ठी पत्र लिख सकते हैं, क्योंकि भाई आपके चिट्ठी पत्रों के अनुसार ही हम अपने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम के प्रति क्या सुझाव है, या भैया आप हमारे कार्यक्रम में कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप चिट्ठी पत्र के माध्यम से लिख सकते हैं। और आजकल चिट्ठी पत्र लिखने में आप कंजूसी करते हैं तो भैया आपके पास फोन है बड़े, तो आप उसमें भैया हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, भाई नंबर है 94-57-07-82-88। भाई नंबर एक बार फिर आपको बता दूं, 94-57-07-82-88। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं कार्यक्रम कृषि जगत, और जो भी आपका सुझाव है या कोई जानकारी चाहते हैं वो आप हमें लिख भेजिए इस नंबर पर। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया जितेंद्र कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज़ पर। शाम के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम में आज सुनते हैं कहानी निर्णय। कहानीकार हैं सुधा शर्मा।
1: सुबह 7:30 बज चुके थे। आरुषि ने जैसे ही मोबाइल का अलार्म सुना, उसका दिल धक धक करने लगा। आरव को जगाने में पूरा 1 घंटा लग जाता है। देर सबेर की चिंता से बेफिक्र आरव अपनी धुन में मग्न रहता है। अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से उठना, उसे अपने माता पिता की व्यस्तता से कोई लेना देना नहीं। हो भी क्यों, बच्चा होने के कारण ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। आखिर 3.5 साल का ही तो है आरव। आरुषि ने जल्दी से ही कमरे में चक्कर लगाकर देखा, आरव अभी भी हाथ पांव फैलाकर बेफिक्री से सो रहा था। खाना बनाने वाली ने सब्जी काटकर कुकर में चढ़ा दी। आरुषि को पता है काम वाली बाई भी आने वाली है। इतने में ही डोरबेल ने मेड के आने का संदेशा सुना दिया। उसने झट से बढ़कर दरवाजा खोल दिया। मेड अपनी नियमित प्रक्रिया में व्यस्त हो गई। दरवाजा खोलने के बाद आरुषि सीधे आरव के कमरे में गई। अरे बेटा उठो, आरव उठो, तुम्हारी बस छूट जाएगी। बस छूट जाएगी तो एक और पंगा हो जाएगा। मुझे या अतुल को तुम्हें छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा। आरव उठो, अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं। उठने के बाद तुम्हें पोटी जाना है, ब्रश करना है। ब्रश कराना कितना टेढ़ी खीर है ये तो मैं ही जानती हूँ। लेकिन आरव की टस से मस होने को तैयार नहीं था। एक मासूम मुस्कान उसके चेहरे पर खेल रही थी, लेकिन आरुषि का पारा बढ़ता ही जा रहा था। मन तो कर रहा था एक थप्पड़ आरव के गालों पर रसीद कर दे, लेकिन उसकी ममता ने उसे रोक लिया और नसीहत करने लगी। तुझे पता है घरेलू माँ कितना प्यार से बच्चे को जगाती हैं, गोद में लेती हैं, मिन्नतें करती हैं, बच्चे को सहलाती हैं, दुलराती हैं, गालों को चूमती हैं, सुंदर सुंदर नामों से बच्चों को बुलाती हैं। बड़े बड़े दार्शनिकों ने भी कहा है समय बच्चे का बचपन माँ के चुंबन और बाप के प्यार से ही संवरता है। तभी अतुल स्विमिंग करके आ गए। अतुल को देखते ही आरुषि भड़क गई और आरव को सांत्वना, संभालना केवल मेरी जिम्मेदारी है क्या? सुबह सुबह का टाइम तो इतना हैक्टिक हो जाता है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। अरे भड़क क्यों रही हो यार, स्विमिंग भी जबरदस्ती तुमने ही ज्वाइन कराई है। तुम ही कहती थी तुम्हारी तोंद निकल आई है, स्विमिंग करो या साइकिलिंग करो। अब आ गया हूँ, सब मिलकर कर लेंगे, और इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? आज सैटरडे है, रिलैक्स माय डियर रिलैक्स। तुम समझते क्यों नहीं अतुल, हमें आरव के स्कूल जाना है, उसकी मैडम के कई नोटिस आए पड़े हैं। अब तो वो बच्चा है, हमें ही सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। घर का सामान भी खत्म हो गया है, शॉपिंग के लिए बाजार भी जाना है, और हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गई, मुझे 1-2 घंटे के लिए ऑफिस भी जाना है। अब तुम सारी चिंता छोड़ दो यार, मैं आज फ्री हूँ। अपनी कार से चलेंगे, स्कूल से लौटते समय शॉपिंग कर लेंगे, और सब कुछ ऑफिस ही है क्या? घर, बच्चा, रिश्ते नाते, दोस्त भी तो जरूरी है। आरुषि सुनकर चुप हो गई, उसका मूड भी थोड़ा फ्रेश हो गया। आरुषि जैसे ही आरव को जगाने के लिए गई, आरव ने बिस्तर पर पड़े पड़े ही गोद में आने के लिए अपनी बाहें फैला दी। आरुषि ने जैसे ही आरव को गोद में उठाया तो देखा उसने बिस्तर गीला कर रखा है। आरुषि फिर झल्ला पड़ी, आरव तुमने मम्मा का काम फिर बढ़ा दिया, कैसे मैनेज करेगी मम्मा?

0: तुम तो बहुत दिनों से ऐसा कुछ नहीं करते थे, अब मुझे रात को डायपर पहनाना पड़ेगा, कहते हुए झिंझोड़कर गुस्से से आरव को नीचे खड़ा कर दिया। आरव सहम गया। पहले तो वह गुमसुम खड़ा देखता रहा, फिर जोर जोर से रोने लगा। रोना सुनकर अतुल भी कमरे में आ गए। पहले तो वह आरुषि पर नाराज हुए, लेकिन स्थिति देखकर उसने भी आरव को डांटा। आरुषि ने बेडशीट हटाई और बड़बड़ाते हुए दूसरी बेडशीट बिछा दी। आरव अब भी सुबकता हुआ खड़ा था, तभी वह आरव को झिझोड़ते हुए बाथरूम में ले गई। लेकिन आरव भी जिद पर अड़ गया, वह न पोटी करने के लिए तैयार न ब्रश करने के लिए तैयार था। एक घंटे में सारा काम निपटाकर आरुषि और अतुल आरव के साथ स्कूल पहुंच गए। अब तक आरुषि का क्रोध और मन शांत हो चुका था। उसने आरव को गोद में उठाया और आगे वाली सीट पर बैठ गई। बेटे का सानिध्य का लाभ उठाते हुए बोली, आरव बेटा देखो, आज मम्मी पापा के साथ स्कूल जा रहे हो ना, आज आपने बिस्तर गीला कर दिया, ऐसा करना शेम शेम होता है ना, आपकी टीचर से कहूँ? नहीं नहीं नहीं, टीचर से मत कहना, प्लीज टीचर से नहीं कहना, मैं नहीं जाता स्कूल, नहीं जाता मैं स्कूल, कहकर रोते हुए आरव गोद से निकलने के लिए मचल उठा। क्यों डरा रही हो यार, हर समय बच्चे की कमी की बातें करती रहती हो, बच्चा है वो भी 3 साल का मासूम, वैसे भी ऑफिस के काम के पीछे बच्चे से बात करने का समय ही कहाँ मिलता है। अतुल ने आरुषि को प्यार भरी झिड़की दी, तभी आरव की ओर देखकर बोला, चुप हो जाओ बेटा, मम्मा मैडम से कुछ नहीं कहेगी। अतुल की शह पाकर आरव और अधिक मचल उठा, अपने टीचर से कहा तो आपसे कभी बात ही नहीं करूंगा, अर आपसे कट्टी कर दूंगा। सुनकर आरुषि भी मुस्कुरा उठी और कान पकड़कर बोली, नहीं बाबा नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, मम्मा तो आरव से मजाक कर रही थी। आप मजाक कर रही थी मम्मा, आप मैडम से नहीं कहेंगी, आरव ने बड़ी मासूमियत से कहा। आरुषि ने भी तोतली जुबान में कहा, नहीं बाबा नहीं, टीचर से नहीं कहूंगी। सुनकर आरव हंस पड़ा, फिर बोला, आपने रात मॉल घुमाने का मुझसे प्रॉमिस किया था मम्मा, और मम्मा इतनी सॉरी, आइसक्रीम लूंगा और आपको भी नहीं दूंगा। आरव ने हाथ फैलाते हुए कहा, थोड़ी सी भी नहीं दोगे? नहीं, मम्मा तो आपको बहुत प्यार करती है, कितना सारा इतना सारा, कहकर आरुषि ने दोनों बाहें फैला दी। आइसक्रीम से बहुत ज्यादा, मैं चॉकलेट भी खाऊंगा। हाँ बाबा हाँ, बिल्कुल खाना, कहते हुए आरुषि ने आरव के बालों में हाथ फेरना शुरू कर दिया। इतने में ही स्कूल आ गया। ऑफिस पहुंचकर आरुषि और अतुल ने नमस्ते कहते हुए हाथ जोड़ दिए। प्रिंसिपल ने भी अभिवादन स्वीकार कर सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठने का संकेत किया। औपचारिक व्यवहार समाप्त होते ही प्रिंसिपल मुख्य बात पर शीघ्र ही लौट आई। आरुषि ने भी डायरी का हवाला देते हुए कहा, कहिए मैडम, आपकी अदालत में पेश है, आपने बुलाया था। हाँ आरुषि जी, आप दोनों से आरव के विषय में बात करनी थी। एक्चुअली आरव की मैडम आरव की कई बार शिकायत कर चुकी हैं। उन्होंने आपको भी कई बार मिलने के लिए नोटिस भेजा है, लेकिन आप आए ही नहीं, इसलिए मैंने आज आपको बुलवाया है। आरुषि ने भी स्वीकृति में गर्दन हिला दी। आरुषि जी, यह बताइए, आप करती क्या हैं? आप वर्किंग वुमेन हैं या हाउसवाइफ? मैं एक प्रोजेक्ट लीड हूँ। ओह कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन आज मैम घर में बच्चा संभालने के लिए कौन होता है? न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चा क्रेच में ही रखना पड़ता है, दूसरे कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। लेकिन बच्चा बहुत सफर करता है आरुषि जी, क्योंकि क्रेच सुविधाओं का भंडार होता है, प्यार का नहीं, जो प्यार दादा दादी नाना नानी दे सकते हैं कोई और नहीं, और माता पिता के प्यार का तो कोई मुकाबला ही नहीं। मैडम मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन जॉब तो आप भी करती हैं और मैं भी, अब बच्चे के कारण जॉब कैसे छोड़ी जा सकती है? इतनी महंगाई है, बच्चों का करियर बनाना है, जॉब तो करनी ही पड़ेगी, न चाहते हुए भी। आरुषि की बात का प्रिंसिपल के पास कोई जवाब नहीं था। आज की व्यवस्था को देखते हुए उसकी बात सत्य थी, फिर भी उसने तर्क दिया, माँ का सानिध्य टॉनिक के समान होता है, माँ के प्यार की छाव में बच्चा अपने को सुरक्षित अनुभव करता है, बच्चे तो अविकसित नाजुक मासूम फूल हैं, इनको यदि लाड प्यार की पर्याप्त खाद न मिले तो ये मुरझा जाते हैं और बचपन बर्बाद हो जाता है। इन सब बातों को अतुल और आरुषि बड़े लगन और ध्यान से सुन रहे थे, जैसे पूरी तरह दिल और दिमाग में उतारना चाहते हों। इन दिनों आरव का व्यवहार असामान्य है, देखिए, ड्राइंग शीट दिखाते हुए पुनः प्रधानाचार्य बोली, वो अपनी ड्राइंग शीट पर पेंटिंग बनाता है, माता पिता को चिल्लाते हुए और स्वयं को रोते हुए दिखाता है, वह अपने सहपाठियों से भी मम्मी पापा के झगड़े की बात करता है या गुमसुम रहता है, वह अपने को कान पकड़े हुए कोने में खड़ा हुआ दिखाता है। आप जानते हैं आपका बच्चा प्यार के लिए तरस रहा है, मैं जानती हूँ आपके बच्चे की दुनिया में खिलौनों का अंबार है, लेकिन प्यार का नितांत अभाव है, आपने सुविधाओं का अंबार लगा रखा है लेकिन अपनेपन का अभाव है, आप आपको ऑफिस जल्दी जाना है, अतः आप उसे डांट कर सुलाते हैं, लोरी देकर नहीं। आप उसे खाना डांट कर खिलाते हैं, प्यार से नहीं। आप उसे खाना भी मोबाइल देकर ही खिलाते हैं, आपसे उसका सानिध्य ही नहीं। वो क्रैच में, आप ऑफिस में, शाम को वो अकेला हॉल में, आप मीटिंग में, रात को वो आपसे बात करने के मूड में, आप अगले दिन की दिनचर्या की जल्दी में। आपका जब भी उससे सामना होता है, आपसे केवल झिड़की मिलती है। कभी चुप रहने के लिए, कभी डिस्टर्ब ना करने के लिए, कभी जल्दी खाना खाने के लिए, कभी सुबह उठने के लिए, कभी होमवर्क पूरा करने के लिए। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को अधिक से अधिक सुविधाएं देना चाहता है, लेकिन प्यार नहीं। लाड प्यार से बड़ी कोई सुविधा है ही नहीं। आप अपने बच्चे को प्यार दीजिए। मनोविज्ञान कहता है, बच्चे को जब घर में प्यार नहीं मिलता तो वह बाहर प्यार ढूंढता है। आप अपने बच्चे को कभी अकेले में बड़बड़ाते हुए सुनिए, आरुषि जी, आरव आपको कॉर्नर में खड़े हो जाओ, कान पकड़ कर खड़े हो जाओ, बस ऐसी सजाएं देने वाली माँ मानता है। उसका नाजुक मन, मासूम मन इन सजाओं को स्वीकार नहीं करता। बच्चा अभी छोटा है, विरोध करने का उसमें सामर्थ्य नहीं। निरंतर आपकी उपेक्षा उसे विद्रोही बना देती है या फिर कुंठित, और उसका विकास रुक जाता है। आरुषि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। वह नीचा मुंह करके चुपचाप रो रही थी। वो तो तब पता चला जब उसकी जोर से रुलाई फूट पड़ी। अतुल भी नीचा मुंह किए बैठे थे। आरव सबसे विमुख कुर्सियों के इधर उधर आसपास घूमकर कविताएं गा रहा था। उसका प्रिंसिपल और माता पिता के मध्य होने वाली वार्ता से कोई सरोकार नहीं था। वह तो अपनी दुनिया में विचर रहा था, मस्त था। सारी मैडम, आपने हमारी आंखें खोल दी। मैं अब अपने गुस्से पर कंट्रोल रखूंगी। ऑफिस के टेंशन घर में नहीं आने दूंगी। आरव का बचपन खोने नहीं दूंगी। आरव को साथ लेकर दोनों घर लौट आए। आरुषि की प्रार्थना पर सास ससुर उनके साथ रहने लगे। आरुषि का व्यवहार अब सास ससुर के साथ बेटी वाला हो गया। सास ससुर आरव के दोस्त बन गए। तीनों मिलकर हाइड एंड सीक खेलने लगे। कभी दादा कभी दादी पार्क में ले जाते। दादी बड़े प्यार से गोदी में बच्चे को सुलाती, कहानी सुनाती। कहानी सुनते सुनते आरव को भी कहानियां याद हो गई। वो अपनी तुतलाती भाषा में दादा दादी को कहानी सुनाता। अब आरव मोबाइल देखने की, टीवी देखने की जिद नहीं करता। दादा दादी आरव के साथ कभी बच्चा बनकर कैरम खेलते, कभी लूडो खेलते। चारों तरफ घर और बाहर खुशियों की रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगी। प्यार को जुगनुओं की रोशनी टिमटिमाने लगी। मन की कोकिला गीत गुनगुनाने लगी। चारों तरफ खुशियां थी, बसंत बहार थी। वातावरण में पंछी चहचहाते थे। घर के हर बालकनी में, हर दीवार पर, खिड़की दरवाजे पर प्यार की रिमझिम बरसात होने लगी। आरुषि टेंशन फ्री थी। न चीखना था, न चिल्लाना था तो बस काम और हंसना खिलखिलाना, समय पर खाना, समय पर पीना, समय पर सोना। समझो जिंदगी पटरी पर आ गई, क्योंकि सब एक दूसरे का महत्व समझ गए। न सास की ताने थे, न बहू की उपेक्षा, न अधिक पढ़ी लिखी होने का भ्रम था, न कमाऊ होने का अहम था, तो केवल अपनापन, एक दूजे का ध्यान। ससुर समय पर आरव को स्कूल छोड़कर आते, स्कूल से ले आते, होमवर्क कराते, सास सुबह का नाश्ता बना देती, शाम को आरुषि के आने से पहले ही शाम के खाने की पूर्ण तैयारी कर देती। 2400 घंटे की रेदमपेल, होच पोच खत्म, पूरा घर व्यवस्थित। आरुषि के एक निर्णय ने तीन पीढ़ियों के जीवन को संवार दिया। दादा दादी पोते के संग खेलते तो मानो उनका जीवन भी संवर गया।
1: श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुधा शर्मा की लिखी कहानी निर्णय सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म महल से, शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और आशा भोसले।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम छाया गीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं आशा भोंसले के स्वर में वो कौन थी, इस फिल्म का गीत। शब्द रचना है राजा मेहंदी अली खान की, संगीत मदन मोहन का।

जाग उठी है आरजू जैसे चराग जल पड़े, अब तो वफा की राह में हम तेरे साथ चल पड़े।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के युगल स्वर में, फिल्म वो 7 दिन से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। न पूछो हमसे हाले दिल, ये खुद ब खुद हो जाता है। न पूछो हमसे हाले दिल, ये खुद ब खुद हो जाता है। तुमसे नजरें क्या मिली, हमें तुमसे प्यार हो जाता है।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के गाए फिल्म वो सात दिन के इसी गीत के साथ कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं संपन्न करते हैं। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम अपने श्रोताओं को कार्यक्रमों के बारे में कुछ जानकारियां दे दें। आज रात्रि 9:30 पर नेशनल साइंस मैगजीन कार्यक्रम रेडियो स्कॉपी और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, ये कार्यक्रम रात्रि 10:00, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज संध्या 7:32 पर आप सुन सकेंगे गजलें, कलाकार होंगे सनवर अली खां। कल प्रातः है 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्मियों में गुणकारी सत्तू, इस विषय पर हमारे श्रोता सुन सकेंगे जानकारी। किसान भाई सुनेंगे खेती की बातें क्रम में खेतों में मेड़बंदी का महत्व, इस विषय पर जानकारी। समय याद रखिए कल प्रातः है 7:10 पर। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम प्रसारित होता है प्रतिदिन प्रातः है 7:31 पर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित होगा कल दिन में 11:30 पर। पब्लिक स्पीक, ये कार्यक्रम कल रात्रि 9:30 हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत कल संध्या 7:32 पर श्रोता सुन सकेंगे भजन, कलाकार होंगे आदित्य कुमार शर्मा। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत कल शाम 6:45 पर वार्ता प्रसारित होगी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय महिलाओं का योगदान, वार्ताकार रहेंगी रश्मि कुमारी। भूले बिसरे गीत हमारे श्रोता सुनेंगे कल रात्रि 10:00। और रात्रि 10:30 पर पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम, आपकी फरमाइश प्रसारित किया जाएगा। कल दिन में 1:15 पर परिवार जगत कार्यक्रम में क्रम होगा कुछ माटी की कुछ कुम्हार की। गढ़वाली लोकगीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत कल दिन में 1:45 पर, कलाकार होंगी भगवती देवी पोखरियाल। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियां। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, कुछ ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
3: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आगरा में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या में मातृ शक्ति कॉन्क्लेव में कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक। और प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, कल से घर घर जाकर बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
8: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी चर्चा की जिसे 21 जून को दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
8: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
7: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
8: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
7: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। वहीं जल संरक्षण के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। प्रदेश भर में आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं के साथ ही आम जनता ने सुना और सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर देश की मिट्टी से निर्मित भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को अपनाने तथा स्थानीय कुम्हारों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित प्रतिमाओं को प्राथमिकता देने की अपील कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन से जोड़ने का कार्य किया है। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ सुना। श्री पाठक ने प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेख किए गए सकारात्मक कार्यों से प्रेरणा लेने की बात कही।
4: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो विभिन्न गांवों में, शहरों में नवाचार है, अलग अलग ढंग से लोग काम कर रहे हैं, विशेष रूप से चर्चा जिसमें जो वैश्विक संकट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, हम लोग कारपूल करके चले। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया एक वैवाहिक समारोह में किस ढंग से अतिथियों को उपहार के रूप में सामूहिक दुर्घटना बीमा का लाभ हर अतिथि को दिया गया। ये ऐसे आयोजन है, ऐसे कार्यक्रम है जिससे आदमी अपने आप को जुड़ा महसूस करता है।
7: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हाथरस जनपद में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर लाभार्थियों को आवास की चाबी, स्मार्टफोन और चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज अयोध्या त्रेतायुग की स्मृतियों को साकार करती दिखाई दे रही है। राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से अयोध्या विश्वभर के श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की खुशहाली के लिए कई प्रभावकारी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि हाथरस में जल्द ही प्रोसेसिंग सेंटर बन जाएगा जिसका लाभ यहां के आलू उत्पादक किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी और व्यापारियों के लिए सुरक्षित माहौल है।
9: अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ अब उद्यम यहां पर आ रहे हैं। यहां पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना, प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है उसके कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा।
7: इसके बाद मुख्यमंत्री ने आगरा में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनता से जुड़े कार्यों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या दौरे के दूसरे दिन आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति कॉन्क्लेव अयोध्या 2026 में शामिल हुई। कार्यक्रम में मां बेटी संवाद के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विषयों पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में मातृशक्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 200 बालिकाओं को SPV वैक्सीन लगाई गई और 10 बच्चों को पल्स पोलियो खुराक भी पिलाई गई। अयोध्या में श्री राम मंदिर दान मामले में आज पुलिस तथा प्रशासन की टीम ने गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों के घरों पर छापेमारी कर तलाशी ली और उनके परिजनों से पूछताछ की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की। कल पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में फिर से पेश करेगी। इससे पहले कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कल ये जानकारी दी। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। आज से शुरू हुए राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश के सभी जनपदों में बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। इसके बाद कल 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी क्रम में अमरोहा में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत सीएमओ डॉक्टर रमाकांत सागर ने एक समारोह में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर की। देवरिया जिले के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5,68,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं हापुड़, कौशाम्बी और महोबा सहित विभिन्न जिलों में भी अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। प्रदेश में आगामी 7 दिनों में पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कई जिलों में बिजली गिरने के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आगरा में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या में मातृ शक्ति कॉन्क्लेव में कहा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक। और प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, कल से घर घर जाकर बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: खो गया इंतजाम।
11: किसका?
10: गुड्डी की फीस का।
11: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
12: आरबीआई कहता है,
13: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
14: मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आईसीसी विमेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जा रहे टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल जानने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
15: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं सुनते हैं गजलें। कलाकार हैं सनवर अली खान।

0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत गजलें सुन रहे हैं। कलाकार हैं सनवर अली खान।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

0: अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत गजलें सुन रहे थे। कलाकार थे सनवर अली खान। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:50 होने को हैं। श्रोताओं, अदबी दुनिया कार्यक्रम में आज कला में शायर हैं विजारत नबी। सुनते हैं इनका कलाम।
1: आइए सामीन, आपके सामने एक मतले के साथ मैं ऐसे रुजू होता हूं। तेरी गली का यूं ही एहतराम हो जाए, तेरी गली का यूं ही एहतराम हो जाए, इधर से गुजरा तो सोचा सलाम हो जाए। आ लीजिए, आपके सामने एक गजल पेश करता हूं, तवज्जो फरमाइएगा। हम अपना गम जमाने से छुपा लेते तो बेहतर था, हम अपना गम जमाने से छुपा लेते तो बेहतर था, खामोशी से मोहब्बत का मजा लेते तो बेहतर था, हम अपना गम जमाने से छुपा लेते तो बेहतर था, खामोशी से मोहब्बत का मजा लेते तो बेहतर था। जफा करता है जो हरदम वफा से उसका क्या मतलब, जफा करता है जो हरदम वफा से उसका क्या मतलब, हमारा इम्तहां, हमारा इम्तहां अहले वफा लेते तो बेहतर था, हमारा इम्तहां अहले वफा लेते तो बेहतर था, जो मंजिल पर कभी अपने नक्शे कफे पा छोड़ आए थे, जो मंजिल पर कभी अपने नक्शे कफे पा छोड़ आए थे, उन्हीं लोगों से मंजिल का पता लेते तो बेहतर था, उन्हीं लोगों से मंजिल का पता लेते तो बेहतर था। वो अहले जर हैं इनसे क्या कोई उम्मीद रखें, वो अहले जर हैं इनसे क्या कोई उम्मीद रखें, किसी दुखते हुए दिल की दुआ लेते तो बेहतर था, किसी दुखते हुए दिल की दुआ लेते तो बेहतर था। वजारत या खुर्द भटका रही है राह से हमको, वजारत या खुर्द भटका रही है राह से हमको, जुनू को राह बरे मंजिल बना लेते तो बेहतर था, हम अपना गम जमाने से छुपा लेते तो बेहतर था, खामोशी से मोहब्बत का मजा लेते तो बेहतर था। आइए दूसरी गजल आपके सामने पेश करता हूँ।

चला गया, फुर्कत का यूं ही बोझ उठाता चला गया, फुर्कत का बोझ यूं ही उठाता चला गया, तिरछी नजर से अपनी शबो रोज वे मेरे, तिरछी नजर से अपनी शबो रोज वे

0: चला गया, मैं था कि वह मुझको याद आता चला गया। एक बेवफा था वह भी वजारत मियां मगर, एक बेवफा था वह भी वजारत मियां मगर, राहे वफा में मुझको बुलाता चला गया, राहे वफा में मुझको बुलाता चला गया।
1: आइए हजरत एक गजल और आपके सामने पेश करता हूँ, तो वो जो फरमाइएगा। ये सिला मिला हमको तुमसे दिल लगाने का, ये सिला मिला हमको तुमसे दिल लगाने का, आ गया सलीका अब बारे गम उठाने का, आ गया सलीका अब बारे गम उठाने का, ये सिला मिला हमको तुमसे दिल लगाने का, आ गया सलीका बारे गम उठाने का, यूं फरेब खाकर भी फिर फरेब खाने का, यूं फरेब खाकर भी फिर फरेब खाने का, ये है यही इरादा अब तुमसे दोस्त आने का, है यही इरादा अब तुमसे दोस्त आने का। हम तो चोट खाते हैं और मुस्कुराते हैं, हम तो चोट खाते हैं और मुस्कुराते हैं, हौसला भी रखते हैं रुद भी ये सुहानी है, हौसला भी रखते हैं रुद भी ये सुहानी है, आ जा के यही पल है, आ जा के यही पल है सिर्फ लुत्फ उठाने का, आ जा के यही पल है सिर्फ लुत्फ उठाने का, हमको है यकीन तुम पर तुमको हो न हो हम पर, हमको है यकीन तुम पर तुमको हो न हो हम पर, आपको तो हक भी है हमको आजमाने का, आपको तो हक भी है हमको आजमाने का, खित्ता मोहब्बत का दोस्तों खुदा हाफिज, खित्ता मोहब्बत का दोस्तों खुदा हाफिज, हो गया है कब्जा अब फितरतन जमाने का, हो गया है कब्जा अब फितरतन जमाने का, शाख गुल जो रहती है बर्क के निशाने पर, शाख गुल जो रहती है बर्क के निशाने पर, शौक है हमें इस पर अपना घर बनाने का, शौक है हमें इस पर अपना घर बनाने का, रहे इश्क में हक वाले बातिलों के खंजर से, रहे इश्क में हक वाले बातिलों के खंजर से, हौसला भी रखते हैं अपना सर कटाने का, हौसला भी रखते हैं अपना सर कटाने का, उतना ही वजारत वो याद हमको आएंगे, उतना ही वजारत वो याद हमको आएंगे, जितना भी जतन कर ले उनको हम भुलाने का, उतना ही वजारत वो याद हमको आएंगे, जितना भी जतन कर ले उनको हम भुलाने का, ये सिला मिला हमको तुमसे दिल लगाने का, आ गया तरीका अब बारे गम उठाने का, आ गया तरीका अब बारे गम उठाने का। एक गजल और आपके सामने पेश करता हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। मुझे देखकर अब जरा मुस्कुरा दो, मुझे देखकर अब जरा मुस्कुरा दो, मुझे देखकर अब जरा मुस्कुरा दो, मेरी चाहतों का मुझे तुम सिला दो, मेरी चाहतों का मुझे तुम सिला दो, मुझे देखकर अब जरा मुस्कुरा दो, मेरी चाहतों का मुझे तुम सिला दो, चला आऊंगा सर के बल मैं यकीनन, चला आऊंगा सर के बल मैं यकीनन, अगर मुझको अपना पता तुम बता दो, अगर मुझको अपना पता तुम बता दो, तुम्हारे ही दर से मैं मांगू हमेशा, तुम्हारे ही दर से मैं मांगू हमेशा, मुझे अपने दर का भिखारी बना दो, मुझे अपने दर का भिखारी बना दो, न छत है न दीवार और दर है मेरी अब, न छत है न दीवार और दर है मेरी अब, कहीं दिल की दुनिया मेरी तुम बसा दो, कहीं दिल की दुनिया मेरी तुम बसा दो, वजारत क्या इनकी खबर है तुम्हें भी, वजारत क्या इनकी खबर है तुम्हें भी, अगर है तो इनका पता तुम बता दो, मुझे देखकर अब जरा मुस्कुरा दो, मुझे देखकर अब जरा मुस्कुरा दो, मेरी चाहतों का मुझे तुम सिला दो। एक गजल और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। वो अदब से मुझको अपने रूबरू करने लगी, वे अदब से मुझको अपने रूबरू करने लगा, और फिर वे बेतकल्लुफ गुफ्तगू करने लगा, मेरे अपने ही मुखालिफ हो गए जब दोस्तों, मेरे अपने ही मुखालिफ हो गए जब दोस्तों, मुझ पे ये हर जुल्म और सितम मेरा उदू करने लगा, मुझ पे ये हर जुल्म और सितम मेरा उदू करने लगा, जिसका अंदेशा था मुझको उसने वैसा ही किया, जिसका अंदेशा था मुझको उसने वैसा ही किया, मेरे सर इल्जाम अपने फिर उदू करने लगा, मेरे सर इल्जाम अपने फिर उदू करने लगा, कामयाबी की तरफ बढ़ने लगे इसके कदम, कामयाबी की तरफ बढ़ने लगे इसके कदम, दुश्मन को सामना अब जंगजू करने लगा, दुश्मन का सामना अब जंगजू करने लगा, जिनकी रग रग में वजारत है फरेबो खुद सरी, जिनकी रग रग में वजारत है फरेबो खुद सरी, उनसे दिल मेरा वफा की आरजू करने लगा, उनसे दिल मेरा वफा की आरजू करने लगा, वो अदब से मुझको अपने रूबरू करने लगा, और फिर वह बेतकल्लुफ गुफ्तगू करने लगा।
2: अदबी दुनिया कार्यक्रम में कलाम शायर थे विजारत नबी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे नेशनल साइंस मैगजीन रेडियो स्कॉपी, और रात्रि 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। एक ही फिल्म से कार्यक्रम हमारे श्रोता रात्रि 8:30 पर सुन सकते हैं। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियां। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:00 हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर, भूपेंद्र और साथियों के स्वर में। शब्द रचना है इस गीत के लिए मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत SD वर्मन का है। फिल्म का नाम है ज्वेल थीप।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी
1: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय कार्यक्रम गीत संध्या सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में फिल्म कसमे वादे का ये गीत। गीत गुलशन बावरा का है और संगीत

फिल्म कसमे वादे में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम गीत संध्या सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अब सुनते हैं महेंद्र कपूर को फिल्म अनमोल मोती में। गीत राजेंद्र कृष्ण का है और संगीत रवि का है। तुझको बनाने वाले अभी 100 कोशिशें करें, तुझको बनाने वाला भी 100 कोशिशें करें, ला ना सकेगा ढूंढ के तेरा कोई जवाब।

महेंद्र कपूर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनमोल मोती में। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय कार्यक्रम गीत संध्या सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म लैला मजनू का एक गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल सुर में। गीत साहिल लुधियानवी का है और संगीत मदन मोहन और जयदेव का है। उसकी पायल की खनक में कोई जादू जरूर है, उसकी पायल की खनक में कोई जादू जरूर है, वो पास न होकर भी मेरे कितने करीब है। तुम्हारी पायल की छनछन दिल का चैन चुराती है ये हवा भी, अब तुम्हारे खोने का गीत।

श्रोताओं, अभी आपने फिल्म लैला मजनू का ये गीत सुना। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम गीत संध्या सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत फिल्म नूरी से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, गीत जान निसार अख्तर का है और संगीत खयाम का है। मीठी बातों का जादू ऐसा छा गया, बिन कहे ही दिल का कोई हाल अपने आप बना गया।

चोरी चोरी कोई दिल में उतर आता है, खामोशियों से ही वो सब कुछ कह जाता है। आंखों में आंखें डाल के क्या पूछते हो तुम, बस इन नजरों को पढ़ लो तो सब जान जाओगे।

श्रोताओं, फिल्म नूरी के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं संपन्न करते हैं। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है, नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का एक ही फिल्म से कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमने चुना है फिल्म एक दूजे के लिए। तो सुनते हैं इस फिल्म के गीत। कार्यक्रम का ये गीत लता मंगेशकर और अनूप जलोटा के युगल स्वर में। शब्द रचना इस गीत के लिए आनंद बख्शी की है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर और अनूप जलोटा के स्वर में अभी आपने ये गीत सुना। श्रोताओं, 954 किलो हर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट, मोबाइल फोन या अन्य डिवाइस पर इस समय ट्यून किया है आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र, और आप इस समय सुन रहे हैं अपना फिल्मी गीतों का पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। और कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त लोकेंद्र। श्रोताओं, कार्यक्रम में सुनते हैं लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम के स्वर में ये गीत। कुछ इस तरह से पिरोया है खुदा ने हमें, कुछ इस तरह से पिरोया है खुदा ने हमें, कि अब तुम में हम हैं और हम में तुम हो। जमाने की कोई भी दीवार तोड़ न सके, हम तो बस एक दूजे के लिए ही बने हैं।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के युगल स्वर में अभी आपने ये गीत सुना। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्म एक दूजे के लिए के कुछ गीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में एक और गीत लता मंगेशकर के स्वर में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चले आएगा।

0: कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप समाचार संध्या सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में UPI भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
1: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीप

0: यूरोपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीपराष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने

0: ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया। मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही, इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7.5 लाख करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटना स्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1,000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में

0: incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heatwave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का समंदर बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी कुव्वतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में खवातीन के T20 आलमी कप के अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन्स का जीत का निशाना रखा है और मर्दों की क्रिकेट में बेलफास्ट में फाइनल T20 बैनुल अक्वामी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीतने के लिए 155 रनों का निशाना मुकर्रर किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत बहिरे हिंद को एक ऐसा खित्ता समझता है जहां इक्तिसादी खुशहाली के साथ साथ समंदरी तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाता है, ने जहां शराकत दारी साइज पर मबनी नहीं बल्कि बाहमी इज्जत और एतमाद पर मबनी है। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का एक समंदर बनाता है।
2: मेरी सेशेल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: जनाब मोदी विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मनी के साथ वक्त की सतह की बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी तआवुन के तमाम शोबों का जायजा लिया और बाहमी मफाद के इलाकाई और बैनुल अक्वामी मामलात पर तबादले ख्याल किया। दोनों ममालिक ने ज़राअत मालियात खला और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में बहुत से समझौतों का तबादला भी किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इजहार मसर्रत किया कि सेशेल्स में UPI का आगाज करने के लिए एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशेल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
1: उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में भारत सेशल्स शराकतदारी वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी है। उन्होंने कहा कि आज जन औषधि से मुतालिक जिस मुफाहमत नामे पर दस्तखत हुए हैं वो सेशल्स के अवाम को मेयारी और किफायती अदविया फराहम करने में मदद करेगा। इज्तिमा से खिताब करते हुए सेशल्स के सदर हर्मनी ने कहा के बाहमी ताल्लुकात में बहिरे हिंद का खित्ता मरकजी हैसियत रखता है। दोनों मुल्कों ने समंदरी कज़ाकी मनशियात की नाजायज तजारत गैर कानूनी माहीगीरी और सरहद पार के जरायम के तई अपने अहद का एदा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को माहौलियाती तहफ़ और पायदार तरक्की में क़्यादत के लिए सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। सेशेल्स के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को यह पुरवकार एजाज दिया। वज़ीर-ए-आज़म को यह एजाज उनकी माहौलियात साजगार क़यादत और तरक्की याफ्ता ममालिक के बढ़ते हुए मफादात नीज नीलमू मईशत आबो हवा से मुतल्लिक कार्रवाई समंदरी वसाइल के पायदार बंदोबस्त और इस्माल आईलैंड तरक्की पजीर ममालिक की तरक्याती ख्वाहिशात के तई उनकी कोशिशों को तस्लीम करते हुए

0: दिया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने इस एजाज को उन तमाम ममालिक से मंसूब किया जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहदबंद हैं, नेज़ आबो हवा की तब्दीली के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। बाद में दिन में वज़ीर आज़म मोदी ने सेशेल्स की कौमी असम्बली से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और सेशेल्स दोनों एक ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जहां तरक्की मजीद शमूलियाती हो और जहां बैनुल अक़वामी इदारे हम असर हकायक की अक्कासी करते हों। उन्होंने आलम जुनूब के मफादात को आगे बढ़ाने के तई अपने अहद का इरादा किया।
1: सेशेल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively and fairly.
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत का विजन महासागर के नजरिए में पिन्हा है जो इस बात को तस्लीम करता है कि हमारा मुस्तकबिल एक दूसरे से मुंसलिक और एक दूसरे पर मुनहसिर है।
1: We believe the Indian Ocean is our shared home, its security, sustainability and prosperity. आरवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है।
0: वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी असेंबली से खिताब करने वाले पहले भारतीय वज़ीर आज़म होने की हैसियत से सबके सामने खड़ा होना एक खुसूसी एजाज है। इससे कबल दिन में सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजने के लिए उन्होंने सेशेल्स के सदर और अवाम का शुक्रिया अदा किया। जनाब मोदी मशरिकी अफ्रीका के इस जज़ीरा नुमा मुल्क के 3 रोजा दौरे पर गुज़िश्ता रोज विक्टोरिया पहुंचे हैं। इसी दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, अमित शाह, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और जितेंद्र सिंह समेत बहुत से मरकजी वज़रा ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की में क़यादत के लिए वज़ीर आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज से नवाजे जाने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने आज कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के सदर पैट्रिक हेरमिनी के दरमियान बातचीत में बाहमी ताल्लुकात के तमाम शोबों का अहाता किया गया। विक्टोरिया में मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने सेहत, तालीम, सलाहियत साजी, डिजिटल तब्दीली, पायदार तरक्की, समाजी बुनियादी ढांचे, काबिले तजदीद तवानाई, समंदरी तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के शोबों में तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने से इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क की तामीर में अवाम की शमूलियत की ताकत भारत के लिए एक बड़ा एहसासा है। जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के तनाजुर में कुछ नुकात के सिलसिले में जब उन्होंने हम वतनों से अपील की तो ये अवामी शमूलियत फिर से देखी गई। जनाब मोदी ने लोगों से कहा था कि वो कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने से गुरेज करें, गैर मुल्की सफर पर न जाएं और कार पूल का इस्तेमाल करें।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: वज़ीर आज़म ने अपनी अपील के सिलसिले में लोगों की हिमायत और हर तरह से सरगर्मी के साथ तआवुन करने पर मुल्क के हर शहरी के तई तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि ये इज्तिमाई जज्बा कौम को मजीद मुस्तहकम करेगा और उसे कामयाबी की तरफ ले जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जामात को वाजह तौर पर मुस्तरद कर दिया और उन्हें बेबुनियाद करार दिया। मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों की जानिब उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अंदरून मुल्क देखना चाहिए और अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर इन्हिसार करने के अपने रुझान को तर्क करना चाहिए जिसे वो मुल्क की पॉलिसी के एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल करता है।

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित सुधीर पांडे का एकल तबला वादन। पंडित सुधीर पांडे का नाम देश के अग्रिम पंक्ति के सर्वश्रेष्ठ तबला वादकों में लिया जाता है। आपने तबले की शिक्षा अपने पिता सहगुरु स्वर्गीय पंडित अर्जुन पांडे और दादा गुरु पंडित भागवत सिंह जी से बनारस, दिल्ली और अजराड़ा घरानों में प्राप्त की। तीनों घरानों का खूबसूरत गुलदस्ता सजाकर एक नई शैली गुरु द्वारा प्रदान की गई, जिसे लडंत का बाज नाम दिया गया। आप इस शैली के प्रमुख प्रतिनिधि वादक हैं। दाएं बाएं की सघन भूमिका, बोलों की शुद्धता, रचनाओं में लय का सुंदर विन्यास, प्रयोग धर्मिता और विरासत में मिले पुराने दुर्लभ बोलों की पांडित्यपूर्ण प्रस्तुति आपके वादन में सहज रूप से मिलती है।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू अ तबला रिसाइटल बाय पंडित सुधीर पांडे। Pandit Sudhir Pandey is recognized as one of India's foremost tabla virtuoso. He received his rigorous training from his revered father and guru, late Pandit Arjun Pandey, and his dada guru, Pandit Bhagwat Singh. Inheriting the rich traditions of the Banaras, Delhi and Ajrada Gharanas, drawing upon the finest elements of these three illustrious traditions, his gurus evolved a unique style of tabla playing known as Ladant Ka Baj, of which Panditji is among the leading exponents today. His artistry is characterized by the balanced and powerful use of both hands, crystal clear articulation of bowls, intricate rhythmic architecture, innovative presentation, and the scholarly rendering of rare traditional compositions preserved through the sacred Guru Shishya Parampara. Through his performances at prestigious festivals and concerts, he has earned immense admiration from musicians, connoisseurs, and music lovers alike.
0: आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं घनश्याम सिसोदिया। पंडित सुधीर पांडे अपने कार्यक्रम का आरंभ तीन ताल से कर रहे हैं।
1: In tonight's program, he is accompanied on sarangi by Ghanshyam Sisodia. He is presenting tabla recital in taal, teen taal.

கட்டுதா தட்டு தட்டு கட்டுதா கட்டுதா தகடா.

Then not again,

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन। अभी आप सुन रहे थे ताल तीन ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे घनश्याम सिसोदिया। और इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यही संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: यू जस्ट हर्ड ताल तीन ताल प्लेड ऑन तबला बाय सुधीर पांडे। ही वॉज अकम्पनीड ऑन सारंगी बाय घनश्याम सिसोदिया। With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री एन एस कल्याण रामन द्वारा मृदंगम पर लय विन्यासम।
3: This is Akashwani. In tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha, we present Laya Vinyasam on Mrudangam by Sri N.S. Kalyanaraman.
2: Paramparik Sangeet Parivar mein janme, Sri N.S. Kalyanaraman, Andhra Pradesh ke suprasiddh mrudangavadak hai. Unhone balyavastha se hi mrudangavadan par gahri ruchi dikhai aur apna prarambhik prasikshan Sri M.K.R. Prasad se prapt kiya. Baad mein unhone vikhyat mrudangavidwan श्री दंडमूड़ी राममोहन राव और श्री के वीरभद्र राव से उच्च प्रशिक्षण पाया।
3: श्री एन एस कल्याण रामन इज अ रेनाउंड मृदंगम आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश बिलोंगिंग टू अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल फैमिली। ही शोड कीन इंटरेस्ट इन मृदंगम फ्रॉम अ वेरी यंग एज एंड रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्री एम के आर प्रसाद। ही लेटर अंडरवेंट एडवांस्ड ट्रेनिंग अंडर द रेनाउंड गुरुज श्री दंडमूड़ी राममोहन राव एंड श्री के वीरभद्र राव।
2: श्री एन एस कल्याण रामन ने डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण, श्री टी वी शंकर नारायण, श्री टी एन शेषगोपालन, हैदराबाद ब्रदर्स और हैदराबाद सिस्टर्स जैसे अनेक प्रख्यात संगीतज्ञों के साथ संगत किया। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित मंच जैसे मद्रास म्यूजिक एकेडमी में कई प्रदर्शन दिया।
3: श्री एन एस कल्याण रामन हैज अकम्पनीड सेवरल एमिनेंट म्यूजिशियंस इंक्लूडिंग डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण, श्री टी वी शंकर नारायण, Sri T. N. Seshagopalan, Hyderabad Sisters and Hyderabad Brothers. He has performed in prestigious sabhas across the country including Madras Music Academy.
2: Sri N. S. Kalyanaraman Akashwani ke top grade kalakar raha. Aapne Chennai aur Vijayawada Akashwani kendra mein 36 varsh ki visisht seva pradan kiya. Aapne Akashwani aur Doordarshan ke kai rashtriya sangeet karyakram mein bhag liya. आप कंची कामकोटि पीठम का आस्थान विद्वान रहा और आपको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार भी प्राप्त हुई।
3: He is a top grade artist of Akashwani and has also participated in national programs of music and Doordarshan programs. He rendered 36 years of distinguished service to Akashwani at Chennai and Vijayawada. He was honored as Astana Vidwan of Kanchi Kamakoti Peetam and also received the prestigious Ugadi Puraskar from the government of Andhra Pradesh.
2: आज के कार्यक्रम में श्री एन एस कल्याणारामन मृदंगम पर अपने लय विन्यास का प्रारंभ मिश्र जाति झंपे ताल के साथ कर रहा है।
3: Tonight, श्री एन एस कल्याणारामन begins his लय विन्यासम on मृदंगम with मिश्र जाति झंपे तालम।

0: आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: You have been listening to Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanuraman in the Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. This program was recorded in the studios of Akashvani Vijayawada and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ

0: बुद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
0: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
0: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke saath aarthik samruddhi bhi badhe, jahan hamari saajedari आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले. Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
2: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles President conferred the prestigious honour on Prime Minister Modi. Prime Minister Modi dedicated the honour to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that India's vision is captured in the idea of Mahasagar, which recognizes that our futures are interconnected and interdependent. On the sidelines of the Seychelles visit, Prime Minister Narendra Modi met Mauritius Prime Minister Dr. Navin Chandra Ramgoolam today. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Prime Minister Modi underscored the importance attached by India to the development and progress of Mauritius, noting that the ongoing bilateral projects will contribute to Mauritius' healthcare, connectivity, sustainable development and blue economy. India today categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inward and take credible action against the terror infrastructure on its territory. He said Pakistan should rid itself of its proclivity to rely on terrorism as an instrument of state policy. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today launched the pilot project of PM Family Care Tracker at Gandhinagar in Gujarat. The integrated digital platform will track the health, nutrition and education of beneficiaries from pregnancy until the age of 18 using a unique ID linked to birth registration number or ABHA ID. The anti-corruption branch, ACB, Delhi, has arrested the then Director General Health Services, DGHS, Dr. Vatsala Agarwal, and Deputy Controller of Accounts in the Central Procurement Agency, CPA, Neeraj Chopra, in the case related to alleged large-scale irregularities in procurement of medicines, surgical consumables, and medical equipment. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram, SSBSK, during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi tomorrow. The Ministry of Health and Family Welfare said that it will carry forward the vision of Pehle Teen Saal Sampoorna Dekhbhal, recognizing the critical importance of the first 3 years of life for child survival, growth, nutrition and early brain development. In the ICC Women's T20 World Cup, Australia defeated India by 6 wickets in their final Group A match at Lord's, London. Earlier, opted to bat first, India posted 170 runs, losing 4 wickets in the stipulated 20 overs. In reply, Australia scored 172 runs for 4 wickets in 19 overs. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं. रात्रि के 11:10 और 10 सेकंड हुए हैं. हमारी आज की इस सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं. अपनी कल प्रातःकालीन सभा के साथ कल